0: समाज को अच्छा देखना चाहते हैं तो शुरुआत हमें अपने जीवन से करनी होगी। यही होगा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि। श्रोताओं, आज जयंती है उस नेता की भी जिनकी सादगी और ईमानदारी आज भी मिसाल है, लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुगलसराय में जन्मे शास्त्री जी ने राजनीति में सादगी और जनता के प्रति समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने हमें दिया नारा जय जवान जय किसान। यह नारा आज भी हम भारतीयों के हृदय को प्रोत्साहित करता है। शास्त्री जी का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व त्याग, अनुशासन और जनता की सेवा से ही बनता है।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं मातृवंदना संवेद स्वरों में।

श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं भाई हरजिंदर सिंह व साथियों के स्वरों में शब्द।

0: श्रोताओं, भाई हरजिंदर सिंह व साथियों के गाए इस शब्द के साथ ही भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें भूमि की उर्वरा शक्ति को कैसे कायम रखा जाए इस संदर्भ में। ऊंची नीची व ढालू भूमि को सीढ़ीदार खेत के रूप में बनाकर सफलतापूर्वक उसमें खेती कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाते समय भूमि की ढाल, मिट्टी की किस्म, वार्षिक वर्षा आदि पर ध्यान देना जरूरी है। सीढ़ीदार खेत बनाने से हम भूमि का सही उपयोग कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेत कम वर्षा एवं अधिक वर्षा के क्षेत्रों में अलग अलग विधि से बनाए जाते हैं। सीढ़ीनुमा खेत 8% से अधिक के ढाल पर बनाए जाते हैं। अधिक वर्षा के क्षेत्रों में खेतों का ढाल अंदर की ओर किया जाता है, जिससे कि बारिश का अधिक पानी सफलतापूर्वक खेतों से बाहर जा सके और मिट्टी का कटाव कम से कम हो। खेत में अंदर की ओर एक नाली बना दी जाती है, जिससे कि बहता पानी सफलतापूर्वक बाहर निकल सके। कंटूर का तात्पर्य है समान ऊंचाई पर, अर्थात किसी पहाड़ या फिर किसी भूमि पर एक ऊंचाई के स्थानों को एक पंक्ति में मिला देना। ट्रेंचिंग का अर्थ है नाली बनाना। अतः एक ही ऊंचाई पर नाली बनाने को कंटूर ट्रेंचिंग कहते हैं। पहाड़ी जमीन पर जहां ना तो खेत बनाना संभव है और ना कोई फसल लेना, वहां पर हम कंटूर ट्रेंचिंग पद्धति से बागानी फसलें व घास आदि सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। जंगल साफ करने के बाद 8 से 10 मीटर की दूरी पर कंटूर पर खूंटी लगा दें। ये दूरी लगाए जाने वाले पौधे के अनुसार तय की जाती है। पंक्ति के नीचे एक जैसी पंक्ति मिल जाए और नाली पौधे से 2 से 15 मीटर ऊपर रहे। नाली बनाने से निकाली गई मिट्टी को नाली के नीचे की ओर एक मेड़ के रूप में रख देते हैं। पहाड़ी जमीन पर पानी को भूमि के अंदर जाने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि पहाड़ों में पानी ठहर नहीं पाता है। अतः नाली बनाने से पानी को भूमि में ले जाने में सहायता मिलती है। पेड़ पौधे लगाते समय भूमि की ऊपरी परत खुल जाती है। नाली बनाने से ऊपर की अच्छी उपजाऊ मिट्टी नाली में आ जाती है। बेकार भूमि में कंटूर ट्रेंचिंग विधि द्वारा पानी रोककर भूमि का लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। कंटूर बंडिंग का अर्थ है समान ऊंचाई के स्थानों पर मेड़ बनाना। ये एक ऐसा उपाय है जिससे ढालू भूमि पर मिट्टी का कटाव कम करके

0: खेती किया जा सकता है। कंटूर बंडिंग 6% ढाल तक की भूमि पर की जाती है। ये प्रायः शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ इसे अधिक बारिश के क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है, जिसे हम ग्रेडेड बंड कहते हैं। दो मेड़ों के बीच की दूरी 40 से 50 मीटर, मेड़ की ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर तथा मेड़ के नीचे की चौड़ाई 3 से 4.5 मीटर एवं ऊपर की चौड़ाई 1 मीटर तक रखना चाहिए। कंटूर बंडिंग से भूमि का संरक्षण होता है और साथ ही साथ ढालू भूमि में जल प्रबंध भी आसानी से किया जा सकता है। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी में दलहनी फसलों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन फसलों का प्रयोग खाद, भोजन तथा चारे के रूप में होता है। दाल की खेती सिंचाई की असुविधा वाले स्थानों में भी आसानी से की जा सकती है। दलहनी फसलों की जड़ों में एक प्रकार की गांठें होती है, जो कि वायुमंडल से 40 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर खींच लेती है। इस फसल के बाद नाइट्रोजन वाली खाद का अधिक प्रयोग न करने पर भी खेत से अच्छी फसल मिलती है। हमारे इन द्वीपों में बारिश अधिक होने के कारण मिट्टी कटाव की समस्या भी ज्यादा है। दलहनी फसल मिट्टी कटाव को रोकती है या कम करती है। इसका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी किया जा सकता है, जो कि खेत की मिट्टी की भौतिक व रासायनिक गुणों में सुधार लाती है। किसान भाइयों, इस प्रकार भूमि का सही प्रयोग और सही फसल के चुनाव से हम भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स। आज की जानकारी का विषय था भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे कायम रखें, और आपको जानकारी दे रहे थे शिबू जॉर्ज।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। विदेशों में भी भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास का लाभ किसी भी नागरिक से न छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 125वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किए हैं। कार्यक्रम की सुगमता तथा यातायात सुचारू एवं सुरक्षित रखने के लिए राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है, ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with the principles of pro-people, pro-active and good governance. He said the country is progressing rapidly on the reform express and institutions conducting examinations must also undertake reforms in line with the country's needs. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi, the Prime Minister stressed the need to bring young people into public services who are driven not by public office, but by public service. The nation is paying homage to Father of the Nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. In her message on Gandhi Jayanti, President Draupadi Murmu said, Mahatma Gandhi's message of peace and non-violence has become even more relevant amid wars and conflicts in several parts of the world. She paid tribute to Mahatma Gandhi and said his life and ideals are widely respected across the world. She expressed confidence that India is advancing towards the goal of Vikasit Bharat by 2047. A Sarv Dharma Prarthana Sabha will be held at Mahatma Gandhi Samadhi at Rajghat in New Delhi

अक्टूबर को रात्रि 8 बजे। एमवी कैमल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज रात 9 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल सुबह 9 बजे लिटिल अंडमान से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कैमल बे की अगली यात्रा होगी इसी मार्ग के लिए 9 अक्टूबर को रात्रि 9 बजे। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कानिकुबार जाने के लिए 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और 6 अक्टूबर को शाम 4 बजे कानिकुबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कालीघाट की अगली यात्रा होगी इसी मार्ग के लिए 11 अक्टूबर को सुबह 7 बजे। एमवी सेंटिनल कैंपबेल बे जाने के लिए 8 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और 11 तारीख को रात्रि 9 बजे कैंपबेल बे से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। जाते और आते वक्त ये जलयान लिटिल अंडमान कानिकुबार चावरा तेरेसा कचाल नानकौरी माकाचुआ और आफ्रा बे में भी रुकेगा। नालंदा जलयान नानकौरी होते हुए कैंपबेल बे के लिए 6 अक्टूबर को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे कैंपबेल बे से चलकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। नालंदा जलयान की अगली यात्रा होगी इसी मार्ग के लिए 13, 20 और 27 अक्टूबर को सुबह 9 बजे।

इक्यानवे बम्बू का शहीद द्वीप के लिए आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी वंडूर स्वराज द्वीप जाने के लिए आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और अगले दिन प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाने के लिए कल शनिवार 3 अक्टूबर को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप के लिए कल 3 अक्टूबर को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा।

एमवी बम्बू का स्वराज दीप जाने के लिए कल 3 अक्टूबर को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज दीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी वंडूर शहीद द्वीप, स्वराज दीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाने के लिए कल सवेरे 7 श्री विजयपुरम से चलेगा और परसों सुबह 7 रंगत से चलकर इन्हीं बंदरगाहों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। श्रोता, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब सुनिए इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष।

इंद्रधनुष कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गीता का प्यार भरा नमस्कार। आज कार्यक्रम में बातें सत्य की। दोस्तों, सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इसीलिए तो कहते हैं सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। सत्य कभी शोर नहीं करता, उसे अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी सत्य को संघर्ष करना पड़ता है, कभी उसे अकेले चलना पड़ता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अंततः सत्य की ही जीत होती है।

सत्यम शिवम सुंदरम ये केवल तीन शब्द नहीं है बल्कि जीवन का एक गहरा दर्शन है। सत्य अर्थात जो शाश्वत और वास्तविक है, शिव अर्थात कल्याण और मंगल, और सुंदरम अर्थात सौंदर्य जो मन और आत्मा को आनंद से भर दे। सच्ची सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, वह हमारे विचारों में होती है, हमारे व्यवहार में होती है, हमारे कर्मों में होती है। इसीलिए तो कहा जाता है जहाँ सत्य है वहीं शिव है, और जहाँ शिव है वहीं सुंदरता का वास है। सत्यम शिवम सुंदरम।

भारत केवल एक देश का नाम नहीं है, बल्कि ये उस विचारधारा का नाम है जहां सत्य को शक्ति और अहिंसा को साहस माना गया है। हमारी धरती ने दुनिया को ये संदेश दिया है, बिना हथियार उठाए भी परिवर्तन लाया जा सकता है, बिना किसी घृणा किए भी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई जा सकती है। सत्य हमें सिखाता है कि सही बात के लिए दृढ़ रहना चाहिए, और अहिंसा हमें सिखाती है कि विरोध करते हुए भी मानवता और करुणा को बनाए रखना चाहिए। सत्य और अहिंसा का प्रतीक भारत देश है मेरा।

सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे प्राप्त करने का साधन है। इन विचारों के साथ अपना जीवन जीने वाले सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर दुनिया को नई दिशा देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को आज हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। आज यानी 2 अक्टूबर का दिन हमारे लिए केवल एक स्मरण का दिन नहीं है बल्कि आत्मचिंतन का भी दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि महान परिवर्तन की शुरुआत हमारे अपने विचारों और कर्मों से होती है। इसलिए दोस्तों आइए मिलकर प्रण ले, सत्य की राह पर चलेंगे, अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे और गांधी जी के सपनों के भारत के निर्माण में अपना भरपूर योगदान देंगे। इसी प्रण के साथ दीजिए अब कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार। इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रही थी गीता। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 369वीं कड़ी।

काग भुशंडी से श्री राम अवतार की कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ के मन का संशय मिट गया। नागपाश में एक साधारण मनुष्य की भांति बंध जाने के कारण गरुड़ को यह संदेह हुआ कि जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वो मायापाश में किस प्रकार बंध सकता है। लेकिन इस संदेह रूपी मोह के कारण ही गरुड़ को कागभुशुंडी का सत्संग प्राप्त हुआ। गरुड़ के उद्गार सुनकर कागभुशुंडी ने कहा, हे पक्षीराज, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं। प्रभु ने आपको यहां भेजकर मेरा मान बढ़ाया है, मुझे बढ़ाई दी है। आपने मोह होने की बात कही, सो हे नाथ, जब नारद स्वयं शंभु और ब्रह्मा भी इससे नहीं बच सके तो सामान्य प्राणी की क्या बिसात। त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिसे काम क्रोध मोह ने नहीं नचाया? परम ज्ञानी योद्धा कवि विद्वान कोई भी तो इससे नहीं बच सका है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान की 379वीं कड़ी। गायक कलाकार थे ए हरिहरन तथा संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गांधी चर्चा।

नमस्कार श्रोताओं, गांधी चर्चा में बातें शांतिदूत गांधी की। गांधी जी को भारत से और अपने देशवासियों से बड़ा स्नेह था। मनुष्य द्वारा मनुष्य को अछूत माने जाने की समस्या उनके सामने प्रमुख थी। ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति उच्च वर्ण में जन्म ले और दूसरा मनुष्य को स्पर्श भी न करे। उन्होंने तय किया कि आदमी की बनाई गई इस समस्या को सुलझाना ही होगा। एक दिन दोपहर में जब वह अपनी डाक छाट रहे थे, उन्हें एक हरिजन परिवार का पत्र मिला। प्रार्थना सभा में उन्होंने आश्रमवासियों से कहा, एक हरिजन परिवार आश्रम में रहना चाहता है। मैं उन्हें पत्र लिख रहा हूँ कि यहाँ उनका स्वागत है। आश्रमवासी चुप रहे। कुछ दिन बाद वह हरिजन पति पत्नी अपनी नन्ही मुन्नी बच्ची लक्ष्मी के साथ आश्रम में आ गए। गांधी जी ने लक्ष्मी को गोद में उठा लिया। बस तभी से लक्ष्मी उनकी प्रिय बन गई। वह आश्रम में स्वच्छंद होकर घूमती रहती। कस्तूरबाई भी उसे बहुत प्यार करने लगी। एक हरिजन परिवार आश्रम में रह रहा है, ये बात अहमदाबाद के अमीर लोगों तक पहुंची। उन्होंने आश्रम के लिए चंदा भेजना बंद कर दिया। गांधी जी के लिए आश्रम का संचालन कठिन हो गया। वे सोच में पड़ गए। तभी एक दिन सुबह सुबह एक बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास आया। बापू बापू, एक मोटर आई है, उसमें एक सेठ जी बैठे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। गांधी जी शांत भाव से बाहर गए और सेठ जी से पूछा, कहिए श्रीमान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अमीर आदमी बाहर आया और गांधी जी के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़ा हो गया और बोला, बापू क्या आप कल भी यहीं होंगे, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। हाँ, गांधी जी ने कहा। दूसरे दिन सुबह ही सुबह सादे कपड़े पहने एक व्यक्ति गांधी जी की कुटिया में आया। उसने नमस्ते करके एक थैली गांधी जी की ओर

बढ़ा दी और बोला, बापू इसमें आपके आश्रम के लिए कुछ पैसे हैं, मेरी ही कमाई की हैं। गांधी जी ने मुस्कुराकर थैली ले ली, फिर रुपए गिने, पूरे 13,000 थे। गांधी जी का मन सुखद आश्चर्य से भर गया। उसी समय लक्ष्मी दौड़ती हुई आई, उसने गांधी जी की धोती पकड़ ली और गांधी जी ने उसे गोद में उठा लिया। लक्ष्मी आश्रम में खेलती रहती और उसकी माँ दानी बहन रसोई में खाना बनाने में हाथ बटाती। वह हरिजन परिवार आश्रम परिवार का अभिन्न अंग बन गया था। वर्षों बीत गए, गांधी जी के बेटों के विवाह हो गए, उनके बच्चे भी हो गए, गांधी जी के कुछ पोते पोती भी आश्रम में रहने लगे। उन सबकी आश्रम में रहने वाले बच्चों से बड़ी दोस्ती हो गई। गांधी जी आश्रम के सभी निवासियों के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। एक बार रात में कुछ चोर आश्रम में घुस आए और कस्तूरबाई का संदूक चुरा कर ले गए। गांधी जी को पता चला, उन्होंने कस्तूरबाई को बुलावा भेजा। जब वो आई, उन्होंने पूछा, बा क्या वो संदूक सचमुच तुम्हारा था? हाँ हाँ वह मेरा ही था, कस्तूरबाई शर्मा कर बोली। गांधी जी ने आश्चर्य से पूछा, संदूक में क्या था? मेरे पोता पोती के कपड़े थे। भला तुम्हें उनके कपड़े रखने की क्या जरूरत थी? वे सब तो काफी बड़े हैं, उन्हें अपने कपड़े अपने आप रखने चाहिए। कस्तूरबाई उनकी बात से सहमत हो गई। इसके बाद से उनकी संदूक पिटारी सबसे छोटी होती थी। एक दिन गांधी जी आश्रम के किसी मामले पर विचार कर रहे थे, तभी एक छोटे से कद का आदमी वहां आया। वह बड़ा थका हुआ लग रहा था, लंबा सफर करके आया था। उसने नमस्ते करके अपना परिचय दिया, बापूजी मैं बिहार से आया हूँ, मेरा नाम राजकुमार है। बापूजी कृपया करिए, बिहार के नील के खेतिहरों को बचाइए। और वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गांधी जी ने उससे पूछा, परेशानी क्या है, मुझे भी तो पता चले। बापू चंपारण में ब्रिटिश सरकार किसानों से जबरदस्ती अनाज की जगह नील की खेती करवाती है। इन खेत मजदूरों को बहुत कम पैसे मिलते हैं, रात दिन काम करके भी वे भूखे रहते हैं। गांधी जी फौरन बोले, मैं अभी तुम्हारे साथ चंपारण चलकर स्वयं उनकी हालत देखूंगा। गांधी जी व कस्तूरबाई राजकुमार के साथ चंपारण पहुंच गए। वे नील के खेतिहरों से मिलने गांव-गांव गए। उन्होंने देखा कि एक छोटे कमरे में कई कई लोग रहते हैं, शौचालय की सुविधा भी नहीं है, चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हैं, दुर्गंध उठ रही है, अधिकतर मजदूर कर्ज में दबे हैं। उनकी दुर्दशा देखकर गांधी जी ने वहीं रुकने का निश्चय कर लिया। गांधी जी के आने से अधिकारियों के कान खड़े हो गए। वहां के मैजिस्ट्रेट ने उन्हें एक छोटा सा पत्र भेजा, उसमें लिखा था, आप तुरंत चंपारण छोड़कर चले जाइए। गांधी जी ने कह दिया, चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा। गांधी जी के साथ मजदूर और पूरा शहर था। मैजिस्ट्रेट ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा और कहा कि वे अदालत में पेश हो। गांधी जी ने आदेश का पालन किया और अदालत पहुंच गए। गांधी जी शांत थे, पर मैजिस्ट्रेट कुछ घबरा कर उनसे बोला, गांधी अगर तुम अभी शहर छोड़कर चले जाओ और वादा करो कि यहाँ फिर कभी नहीं आओगे, तो मैं तुम्हारे खिलाफ इस मुकदमे को वापस ले लूंगा। गांधी जी ने मैजिस्ट्रेट की ओर देखा, फिर बोले, मैंने सोच लिया है कि अब मैं चंपारण में ही रहूंगा और कष्ट भोग रहे लोगों की सेवा करूंगा। मैजिस्ट्रेट और घबराया। कचहरी के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। उसे डर था कि कहीं बलवा ना हो जाए। गांधी जी उसकी परेशानी समझ गए और उन्होंने कहा, अगर आप मुझे इन लोगों से बात करने दें, तो मैं उन्हें शांत करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, आप कोशिश कर देखें। गांधी जी अदालत से बाहर आए, उन्होंने हाथ जोड़कर भीड़ से नम्रता पूर्वक कहा, मैं जानता हूँ आप सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, यदि आपकी सचमुच मुझ में आस्था है, तो इस समय आप सब शांत रहकर मेरा साथ दीजिए। रही मेरे गिरफ्तार करने की बात, उन्हें पूरा अधिकार है कि मुझे गिरफ्तार करें। मैंने मैजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन किया है, अगर उन्होंने मुझे जेल भेजा वह न्यायोचित है, हमें शांतिपूर्वक ढंग से काम करना चाहिए, कोई भी हिंसात्मक कार्य हमारे उद्देश्य को हानि पहुंचाएगा। तो श्रोताओं, गांधी चर्चा में आज बस इतना ही।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। आज दोपहर तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की वर्षा होगी। तो ये थी मौसम की जानकारी। और अब एक नज़र डालते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देशरागनी कार्यक्रम। ठीक इसी समय विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे वन्य प्राणी सप्ताह 2026 पर विशेष वार्ता, आवास संरक्षण वन्य जीव संवर्धन। वार्ताकार होंगी सहायक वन संरक्षक श्रीमती आर बरखा। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे कविता पौडवाल और जसवंत सिंह। सवेरे 8:40 पर आप सुनेंगे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग। सुबह 9 बजे सुनिए कुछ फिल्मी गीत। सवेरे 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन सेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:45 पर सुनिए कुछ फिल्मी गीत। सुबह 9 बजे सुनिए कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1385वीं कड़ी। दिन के 11:30 पर निकोबारी कार्यक्रम में सूचनाओं के अलावा गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर चर्चाएं होंगी। साथ ही आप सुनेंगे कुछ देशभक्ति गीत। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और वन्य जीव सप्ताह पर चर्चाएं होंगी। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में रूपक प्रसारित किया जाएगा गांधी जी द वॉइस ऑफ एन एरा। दोपहर 1:10 पर गांधी जयंती के अवसर पर आज सुबह गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम की दैनिक रिपोर्ट आप सुनेंगे। दोपहर 1:10 पर सुनिए कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर सभा का समापन होगा, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय सभा जारी रहेंगी लाइव फोन और कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। दोपहर बाद 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम के साथ, जिसमें गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर चर्चाएं होंगी। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुविचार के साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, वन्यजीव सप्ताह, लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर चर्चा होगी। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमती बेबी चौधरी की वार्ता, सत्य और

अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी तथा गांधी जयंती और अहिंसा दिवस पर चर्चाएं होंगी। संध्या 6:30 पर समाचार तरंगनी, 6:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे। 6:55 पर सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। संध्या 7:30 पर युवानी के तहत सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स और गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तथा वन्य जीव सप्ताह पर चर्चाएं होंगी। रात्रि 8:00 चित्रपट संगीत कार्यक्रम, 8:30 पर रोजगार समाचार और गौरवगान कार्यक्रम। रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। रात 10:20 पर कुछ फिल्मी गीत आप सुनेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर करंट अफेयर्स का कार्यक्रम और रात 10:00 जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 9.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 97% तथा न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.2 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय आज 5:08 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:09।

और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। तो ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, आज सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे वन्य प्राणी सप्ताह 2026 पर विशेष वार्ता, आवास संरक्षण वन्य जीव संवर्धन। वार्ताकार होंगी सहायक वन संरक्षक श्रीमती आर बरखा। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे कविता पौडवाल और जसवंत सिंह। सवेरे 8:40 पर आप सुनेंगे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग।

सवेरे 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन सेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

सुबह 10 बजे सुनिए कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। दिन के 11:30 पर आप सुनेंगे निकोबारी कार्यक्रम में गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर चर्चाएं होंगी और साथ ही आप सुनेंगे कुछ देशभक्ति गीत।

0: दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और वन्य जीव सप्ताह पर चर्चाएं होंगी। जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस ब्रेक के बाद।
1: मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901701 पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मना रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर द्वीपों में मुख्य समारोह सुबह 8:14 पर गांधी पार्क में आयोजित किया जा रहा है। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आज से 8 अक्टूबर तक 72वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है और DCSP कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज शाम 4 बजे से खेला जाएगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 177वीं जयंती के पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ किसी भी नागरिक से ना छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 157वीं जयंती के अवसर पर उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, शांति और निस्वार्थ सेवा के अपने आदर्शों के माध्यम से हमें निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। उनका अहिंसा का दर्शन न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मार्गदर्शक बना, बल्कि ये शांति, सद्भाव और मानवीय गरिमा का एक सार्वभौमिक संदेश भी बना हुआ है। इस अवसर पर सांसद विष्णुपद रे ने भी द्वीपवासियों को संदेश देते हुए कहा कि हमें सत्य, स्वच्छता, करुणा और सेवा को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हुए एक स्वच्छ, शांतिपूर्ण, एकजुट तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मनाई जा रही है। मुख्य समारोह सुबह 8:14 पर गांधी पार्क में आयोजित किया जा रहा है, जहां उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा प्रार्थना

0: और रामधुन का गायन किया जाएगा। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। सभी सरकारी विभागों, संस्थानों, स्वायत्त निकायों, निगमों, पंचायत प्रधानों, स्वयंसेवी संगठनों और ग्रामीणों से स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस महीने श्रमदान करने और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाने और आम जनता से पशु वध, पक्षियों के शिकार, मछली पकड़ने और शराब का सेवन करने से परहेज करने का अनुरोध किया गया है। प्रशासन ने आज ड्राई डे घोषित किया है। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन विशेष ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान 2026-27 सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएँ तैयार करेंगी। उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने लोक निवास में उद्योग एवं शहरी विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग को औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और निर्माण से संबंधित कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस बैठक में मुख्य सचिव, अंडमान लोक निर्माण विभाग के आयुक्त सह सचिव, शहरी विकास आयुक्त सह सचिव, APWD सचिव और उद्योग सचिव उपस्थित थे। इसके अलावा चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ लोक निवास में उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान उन्होंने उपराज्यपाल को मिशन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं।
1: अब श्री विजयपुरम में हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलीघट लेकर आया है। महिलाओं के लिए विशेष स्त्री रोग एवं आधुनिक अल्ट्रासाउंड सेवाएं एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग एवं निसंतानता संबंधी परामर्श के लिए उपलब्ध है गायनेकोलॉजिस्ट एवं इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। माहवारी की समस्या PCOS, गर्भावस्था की देखभाल, गर्भधारण में कठिनाई तथा महिलाओं की अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध है। साथ ही आधुनिक अल्ट्रासाउंड एवं डॉपलर सेवाएं, प्रेगनेंसी स्कैन, एनोमली स्कैन, एब्डोमेन पेल्विस अल्ट्रासाउंड एवं डॉपलर स्टडीज। तो देर न करें, अपने स्वास्थ्य को दें विशेषज्ञ देखभाल। आज ही अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9933219444 या 89000914124। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, अनन मार्ग रोड, जुंगलीघाट, श्री विजयपुरम।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज से 8 अक्टूबर तक 72वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है आवासों को जोड़ना, समृद्ध वन्य जीव। उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और हमारी समृद्ध जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमारे वनों, मैंग्रोव आर्द्र भूमियों, प्रवाल भित्तियों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। अंडमान निकोबार प्रशासन इन संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी से प्रकृति के रक्षक बनने, वन्य जीवों का सम्मान व संरक्षण करने और भावी पीढ़ियों के लिए उनके आवासों को बचाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। गांधी जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे स्वच्छ भारत दिवस के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत विषय पर एक रील मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। प्रतिभागियों को स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता से जुड़े व्यवहारिक व नवोन्मेषी विचारों के साथ अधिकतम 90 सेकंड की एक ओरिजिनल रील बनानी होगी। ये प्रतियोगिता 2 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। प्रतिभागी अपनी रील को YouTube, Facebook, Instagram या LinkedIn पर अपलोड कर Google फॉर्म लिंक तथा QR कोड के माध्यम से अपना विवरण 9 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। प्रतिभागियों को रील के अंत में या क्रेडिट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति का उल्लेख करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए विभाग के मेल पर संपर्क किया जा सकता है। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन

0: खेल एवं युवा मामले निदेशालय के सहयोग से आयोजित DCSP का बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग मुख्य अतिथि जबकि पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगातन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। मैच नेताजी स्टेडियम के बहुद्देशीय हॉल में शाम 4 बजे से आरंभ होगा। जीबी पंत अस्पताल के अपने हालिया दौरे के दौरान उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने प्रतीक्षालय में बुनियादी सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द पर्याप्त एयर कूलर लगाने के आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल के निर्देशों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रतीक्षालय में एयर कूलर लगा दिए गए हैं। अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल और प्रबंध निदेशक ने मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती से मुलाकात कर बैंक की वित्तीय स्थिति और समग्र प्रदर्शन की जानकारी दी। बैठक के दौरान बैंक की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और पहलों पर चर्चा की गई। निदेशक मंडल ने द्वीप समूह में सहकारी बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने तथा सहकारी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी रेखांकित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मना रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर द्वीपों में मुख्य समारोह सुबह 8:14 पर गांधी पार्क में आयोजित किया जा रहा है। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष में आज से 8 अक्टूबर तक 72वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है और DCSP का बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज शाम 4 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं और अब सुनिए कार्यक्रम

नमस्कार श्रोताओं, देशरागनी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, हमारा देश हमें बहुत कुछ देता है, पहचान, सम्मान, संस्कृति और अपने सपनों को उड़ान देने का अवसर। अब बारी हमारी है कि हम भी अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखें और अपने कर्मों से भारत को और मजबूत बनाएं।

श्रोताओं, अपने देश की मिट्टी के अलग ही अपनापन है। यही मिट्टी हमारी पहचान है, हमारी जड़ों से जुड़ी वह भावना है जो हमें अपने वतन से जोड़े रखती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश रागनी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब सुनिए गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: नमस्कार सुप्रभात, एक नई सुबह, नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 2 अक्टूबर सन 2026। श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में होगी वार्ता और साथ ही गीत, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वन्य प्राणी सप्ताह 2026 पर विशेष वार्ता के साथ, आवास संरक्षण वन्य जीव संवर्धन। वार्ताकार है सहायक वन संरक्षक श्रीमती आर बरखा।
1: नमस्कार दोस्तों, अक्टूबर का यह पहला सप्ताह आते ही एक अलग सी ऊर्जा और ताजगी महसूस होने लगती है। वजह आप जानते ही हैं, पूरा देश मना रहा है राष्ट्रीय वन्य प्राणी सप्ताह। और जब भी वन्य जीवों और प्रकृति की बात आती है तो मैं बड़ी गौरवान्वित महसूस करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसी प्राकृतिक संपदा, ऐसी समृद्ध जैव विविधता पूरे भारत में ही नहीं अपितु दुनिया में कहीं और नहीं है। हमारा यह द्वीप किसी जन्नत से कम नहीं है। जहां एक तरफ आसमान छूते सदाबहार वर्षावन है तो दूसरी ओर दूर दूर तक फैला यह अनंत नीला समंदर। हमारा यह द्वीप जैव विविधता का एक अद्भुत और अनमोल खजाना है। यहाँ जीव जंतुओं के साथ साथ पेड़ पौधे भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के उन राज्यों में से है जहाँ जैव विविधता अत्यंत समृद्ध है। अंडमान निकोबार वन विभाग में 9 राष्ट्रीय उद्यान, 96 वन्य जीवन अभयारण्य तथा अनेक संरक्षित क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण का मजबूत आधार है। विभिन्न संरक्षण कार्यक्रमों में अनेक प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए वन विभाग का बड़ा योगदान है। लेकिन संरक्षण केवल संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह सकता। वन्य जीवों को सुरक्षित रहने के लिए जुड़े हुए जंगलों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस साल के वन्य जीव सप्ताह की जो थीम है वह है जुड़े आवास और वन्य जीव का विकास, यानी कनेक्टिंग हैबिटेट्स थ्राइविंग वाइल्ड लाइफ। अब आप सोच रहे होंगे कि मुख्य भूमि पर तो जंगलों

वो आपस में जोड़ने की बात समझ में आती है ताकि बाघ हाथी आदि आ जा सके। किंतु हमारे अंडमान में जहाँ चारों ओर समंदर का पानी है वहाँ जुड़े आवास का क्या मतलब है? तो दोस्तों, हमारा द्वीप बेहद अनोखा है। यहाँ जुड़े आवास का मतलब है जंगल, मैंग्रोव और समुद्री कोरल रीफ का आपसी अटूट रिश्ता। ये तीनों अलग अलग घर नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। अगर जंगल से बहने वाला पानी साफ होगा तो तटों पर लगे मैंग्रोव सुरक्षित रहेंगे। अगर मैंग्रोव तंदुरुस्त रहेंगे तो वह समुद्र के पानी को छानकर हमारे कोरल रीफ्स तक पहुंचाएंगे, जिससे समुद्री जीवों का विकास होगा। यानी कि जंगल से लेकर समुद्र की गहराई तक सब कुछ आपस में जुड़ा है और किसी एक आवास को क्षति पहुंचने पर पूरा पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित होता है। इसलिए दोस्तों, जब वन्यजीव अपने प्राकृतिक मार्गों से सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं तो उन्हें भोजन, पानी और प्रजनन के बेहतर अवसर मिलते हैं। इससे वन्य प्राणी की विविधता बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, आज जब हम तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे इन अनोखे जीवों के घर टूट रहे हैं। हमारे द्वीपों पर कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलते, जैसे हमारा राजकीय पशु डुगोंग, जिसे हम प्यार से समुद्री गाय भी कहते हैं। इसके अलावा अंडमान वाइल्ड पिग, निकोबार मेगापोड, अंडमान वुड पिजन, विशाल काय, समुद्री कछुए एवं नाना प्रकार के एंडेमिक जीव जंतु। हमारे द्वीपों में बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। सड़कें चौड़ी हो रही है, रिजॉर्ट्स और होटल्स बन रहे हैं, जिसका सीधा असर इन बेजुबान जीवों के आवासों पर पड़ रहा है, जिसे हम हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन यानी आवासों का विखंडन कहते हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। जब हम तटीय इलाकों में पेड़ों को काटते हैं तो बरसात के दिनों में मिट्टी का कटाव होता है। यह मिट्टी या सिल्टेशन नदियों और नालों से बहकर सीधे समंदर में चली जाती है और हमारे सुंदर कोरल रीफ और समंदर की गहराई में उगने वाले सी ग्रास को पूरी तरह ढक लेती है, जिससे वह नष्ट हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर समुद्री घास ही नहीं बचेगी तो हमारी सी डुगोंग क्या खाएगी? उसका तो घर और भोजन हमने छीन लिया। तो दोस्तों, जमीन पर काटे गए पेड़ों का सीधा असर समंदर के भीतर रहने वाले जीव पर पड़ता है। इसी प्रकार हमारे द्वीपों में पूरी दुनिया से लेदरबैक और ओलिव रिडली टर्टल जैसे विशाल समुद्री कछुए अंडे देने के लिए आते हैं। परंतु यदि इन तटों पर इंसानी दखल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कछुए रास्ता भटक जाते हैं और अंडे दिए बिना ही लौट जाते हैं। उनके आने का प्राकृतिक रास्ता ही टूट जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक आवास का संरक्षण पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हम अपने द्वीपों का विकास रोक दें, सड़कें, होटल्स आदि ना बनाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकास हमारे द्वीपों के युवाओं के लिए, कनेक्टिविटी के लिए अत्यंत ज़रूरी है। लेकिन हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति के साथ तालमेल बैठा कर रखे, जिसे हम सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ऐसा विकास जिससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो, सड़कें बने, पर्यटन बढ़े, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए यह द्वीप उतना ही सुंदर और सुरक्षित रहे जितना आज है। यानी विकास ऐसा हो जो विनाश का कारण ना बने। और इसी सतत विकास को ज़मीन पर उतारने के लिए हमारे द्वीपों में इको सेंसिटिव जोन बनाए गए हैं। पर्यावरण मंत्रालय हमारे राष्ट्रीय उद्यानों जैसे महात्मा गांधी मैरन नेशनल पार्क, मणिपुर पर्वत नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क आदि संरक्षित क्षेत्रों के बफर एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह हमारे पर्यावरण का एक सुरक्षा कवच है। यह इंसानी आबादी और जंगलों के बीच एक ढाल की तरह काम करता है ताकि हमारे वन्य प्राणियों का आवास सुरक्षित रहे। दोस्तों, प्रशासन और वन विभाग की ओर से कई बेहतरीन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम और आप पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे नहीं आएंगे तब

कोई बदलाव मुमकिन नहीं है। श्रोताओं, हम सीधे प्रकृति के गोद में रहते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी मुख्य भूमि के लोगों से दुगनी हो जाती है। वन्य जीवों का संरक्षण केवल सरकार या वन विभाग का काम नहीं है, बल्कि यह हर एक नागरिक का कर्तव्य है। आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहे, समुद्र तटों और इको टूरिज्म साइट्स में प्लास्टिक ना फेंके, वन्य जीव के रास्तों में बाधा ना बने, द्वीपों के स्थानीय जीवों को नुकसान ना पहुंचाए, स्थानीय जैव विविधता का सम्मान करें, मैंग्रोव्स की रक्षा करें, क्योंकि ये समुद्र की लहरों से हमारे द्वीपों को बचाते हैं और वन्य जीवों को आश्रय देते हैं। दोस्तों, याद रखिए, यदि वन्य जीव है तो जंगल है, यदि जंगल है तो शुद्ध हवा और पानी है, और यदि ये सब है तभी हम द्वीपवासी सुरक्षित हैं। दोस्तों, 72वां वन्यजीव सप्ताह के दौरान द्वीपवासियों को जागरूक और जोड़ने के लिए 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर

सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहे, समुद्र तटों और इको टूरिज्म साइट्स में प्लास्टिक ना फेंके, वन्य जीव के रास्तों में बाधा ना बने, द्वीपों के स्थानीय जीवों को नुकसान ना पहुंचाए, स्थानीय जैव विविधता का सम्मान करें, मैंग्रोव्स की रक्षा करें क्योंकि ये समुद्र की लहरों से हमारे द्वीपों को बचाते हैं और वन्य जीवों को आश्रय देते हैं। दोस्तों याद रखिए, यदि वन्य जीव है तो जंगल है, यदि जंगल है तो शुद्ध हवा और पानी है, और यदि ये सब है तभी हम द्वीपवासी सुरक्षित हैं। दोस्तों 72वां वन्यजीव सप्ताह के दौरान द्वीपवासियों को जागरूक और जोड़ने के लिए 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कई शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिनमें आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। तो उठाइए अपनी डायरी और नोट कीजिए इस पूरे हफ्ते का धमाकेदार शेड्यूल। इस वन्यजीव सप्ताह की शुरुआत 2 अक्टूबर फिटनेस के साथ होगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए सुबह मिनी मैराथन का आयोजन सलूला जेल से कार्बाइन स्कोप बीच तक, जहां हम अपने समुद्र किनारों को साफ करने के लिए बीच क्लीनिंग का अभियान। इसी दिन का मुख्य आकर्षण होगा वन्यजीव सप्ताह झांकी प्रदर्शन, जो हमारी अनमोल प्रकृति की झलक दिखाएगा। अब बढ़ते हैं 3 अक्टूबर की तरफ, जहां चिड़िया टापू बायोलॉजिकल पार्क में सुबह सुबह प्रकृति प्रेमियों के लिए बर्ड वॉचिंग और ट्रैकिंग का आयोजन होगा। इसी दिन स्कूल के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 5 तक पेंसिल चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही वन्यजीव कानूनों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी कार्यशाला भी रखी गई है। इसके अलावा वन विभाग के आधुनिक तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू होगा और बेहद ज़रूरी क्रोकोडाइल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप का भी आयोजन किया जा रहा है। 4 अक्टूबर की सुबह अबडीन जट्टी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप तक एक रोमांचक सेलिंग मिनी मैराथन होगी और शाम 4 बजे टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑडिटोरियम में रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम सजेगा। 5 अक्टूबर सोमवार की सुबह मणिपुर पर्वत नेशनल पार्क में बर्ड वॉचिंग एवं ट्रैकिंग होगा। साथ ही फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित विम्बरलीगंज में फील्ड स्टाफ के लिए लीगल वर्कशॉप और नेचर पार्क इंटरप्रिटेशन सेंटर हैडो में कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार 6 अक्टूबर को महात्मा गांधी मैरिन नेशनल पार्क मंडूर में नेचर गाइड ट्रेनिंग होगी और नेचर पार्क इंटरप्रिटेशन सेंटर हैडो में स्कूली बच्चों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में निबंध प्रतियोगिता रखी गई है एवं शाम को एक विशेष वन्य प्राणी अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन फ्लैग पॉइंट एवं मैरीना पार्क में रखा गया है। 7 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक हेल्थ कैंप कम ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होने जा रहा है और अंत में 8 अक्टूबर को NPIC हैडो में इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन एवं शाम को टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑडिटोरियम में इस शानदार 72वें वन्य प्राणी सप्ताह का समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस वन्यजीव सप्ताह की रूपरेखा से यह स्पष्ट है कि यह 7 दिनों का एक उत्सव ही नहीं अपितु हमारे दैनिक जीवन की आदतों को बदलने की एक शुरुआत है। यह द्वीप हमारा घर है और समंदर इसकी जान, जीवों की रक्षा करके ही बढ़ेगी इसकी शान। अंडमान की असली खूबसूरती कंक्रीट की ऊंची इमारतों में नहीं अपितु द्वीपों की असली दौलत यहाँ की ठंडी साफ हवा, घने जंगलों, नीली लहरों और इनमें आज़ादी से सांस लेते हमारे वन्य जीव हैं। अगर ये आवास आपस में जुड़े रहेंगे तभी हमारा अंडमान सुरक्षित रहेगा, क्योंकि प्रकृति की एक भी कड़ी टूटी तो पूरा ताना बाना बिखर जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। तो आइए इस राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह में हम सब मिलकर यह शपथ ले कि जंगल से समंदर तक जब जुड़ेगा संसार तभी वन्य जीवन होगा खुशहाल और साकार। आइए हम सब मिलकर ऐसे अंडमान एवं निकोबार का निर्माण करें जहां जंगल जुड़े रहें, वन्य जीवन सुरक्षित रहे और विकास तथा पर्यावरण

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वन्य प्राणी सप्ताह 2026 पर विशेष वार्ता, आवास संरक्षण वन्य जीव संवर्धन। वार्ताकार थी सहायक वन संरक्षक श्रीमती आर बरखा। श्रोताओं, आज की सुबह है बेहद खास, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, एक ऐसी तारीख जो हमें देश के 2 महान सपूतों की याद दिलाती है। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया और पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। साथ ही आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। उनका दिया हुआ मंत्र जय जवान जय किसान आज भी देश के प्रति हमारे सम्मान और जिम्मेदारी का एहसास कराता है। तो आइए इस पावन सुबह में गांधी जी के सत्य और अहिंसा के संदेश तथा लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी और देशभक्ति को स्मरण करते हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: दादाजी, आपकी सेहत कैसी है?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। मैं 65 साल का हूँ, लेकिन अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता हूँ। संतुलित आहार खाता हूँ, अच्छी नींद लेता हूँ और रोज थोड़ा शारीरिक गतिविधि और योग करता हूँ।
1: वाह, बहुत बढ़िया। और समय पर दवाइयाँ लेते हैं?
2: हाँ हाँ, समय पर दवाई लेता हूँ और नियमित स्वास्थ्य जाँच के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भी जाता हूँ। साथ ही परिवार और दोस्तों के साथ व्यस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ। यही मेरी सेहत का राज है।
1: बहुत अच्छा दादाजी। अंडमान और निकोबार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनहित में जारी।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: आरबीआई कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में। श्रोताओं, जैसा कि आज हम स्मरण कर रहे हैं उस महान व्यक्तित्व को जिन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। गांधी जी के विचार हमें याद दिलाते हैं कि बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर से होती है। तो आइए इस पावन अवसर पर उनके आदर्शों को नमन करें।

श्रोताओं, वन्य प्राणी हमारे जंगलों की जान है और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह हमें याद दिलाता है कि धरती केवल इंसानों से नहीं बल्कि अनगिनत जीव जंतुओं पक्षियों का भी साझा घर है। कभी कभी मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इंसान और जानवर में फर्क क्या है। जानवर भूखा तो है, सिर्फ अपनी भूख मिटाता है, लेकिन इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी लालच खत्म नहीं होती। शायद इसीलिए कभी कभी लगता है कि जिन जीवों को हम बेजुबान कहते हैं उनके भीतर इंसानियत का भाव हमसे भी ज़्यादा है।

0: श्रोताओं, और इसी के साथ ही आज का हमारा गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार, सुप्रभात।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार हैं। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके उपरांत श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन

0: भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है, ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांवों के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: गुजरात में इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने खादी और पॉली वस्त्र के उत्पादन पर 30% विशेष बाजार प्रोत्साहन की घोषणा की है।
2: यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के संकल्प को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रोत्साहन सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अधिकृत खादी बिक्री केंद्रों पर छूट के रूप में मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष खादी प्रदर्शनी सह बिक्री मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाएं आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। मंत्रालय ने बताया कि ब्यूरो ने सुरक्षा मंजूरी के तरीके को आसान बना दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी किसी विशिष्ट वर्ग या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि विमानन संस्थाओं की 9 पहचानी की श्रेणियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सुधार इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट को कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और सेवा के निरंतर संकल्प से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है ऐसा ही एक उदाहरण, जिसमें इस सोच को पंबन पुल के जरिए धरातल पर उतारा गया।
4: रामेश्वरम में नया बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसका उद्घाटन पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
5: द न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st century engineering wonder. For many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
4: पुराना ऐतिहासिक पंबन पुल श्रीलंका के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 1870 के दशक में शुरू हुए इस पुल का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर तक फैला था।

0: जिसमें 143 पिलर थे और इसे 1914 में चालू किया गया था। नए पुल के वर्टिकल लिफ्ट में 72.5 मीटर का सेंट्रल स्पैन है, जो समुद्र में जहाजों के गुजरने के लिए 17 से 22 मीटर ऊपर उठ सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में मदुरे डिवीजन के रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पुल के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए 3000 टन से ज्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया था। IIT मद्रास और बॉम्बे के विशेषज्ञों ने नवम्बर 2024 में इसके डिजाइन की जाँच की थी। इस पुल से अरब सागर का शानदार नजारा भी दिखता है। खाड़ी के ऊपर बना यह सबसे लंबा पुल 1988 तक रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग था। पुराना पंबन पुल उन बड़े चक्रवातों से भी बच गया था जिन्होंने धनुषकोडी को नष्ट कर दिया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री चौहान पोंडा में एक कार्यक्रम में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे।
2: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा में गोवा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत गोवा में उत्पादित कृषि उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने गोवा के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से गोवा फ्रेश ब्रांड विकसित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर के किसानों और महिलाओं को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, किसानों के कल्याण, ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास से पूरा किया जाना चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।
3: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना जिसके द्वारा जो CBG प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी 2 करोड़ की। क्रेडिट गारंटी भी है MSMEs के लिए, और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोत की भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। इस पदक के साथ ही भारत अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के कुल 57 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
4: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई के विमान में भारतीय पायलट स्मित मच्छार के अदम्य साहस की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने शौर्य गाथा शीर्षक से दिया है कॉकेट में जानलेवा हमले के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भारतीय पायलट स्मित मच्छार की सर्वत्र सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 9/11 जैसी साजिश नाकाम की। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है भारतीय पायलट स्मित को पूरी दुनिया ने किया सलाम, जनसत्ता के अनुसार फ्लाई दुबई विमान गिराने के प्रयास की जांच शुरू। दैनिक जागरण का शीर्षक है परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी, UPSC के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में दी थी सिविल सेवा परीक्षा। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा अब सरकार माई बाप नहीं, नागरिक देवो भव। पंजाब केसरी ने वित्त मंत्रालय का बयान दिया है वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान, GST संग्रह 2 लाख

0: 3,000 करोड़ रुपए के पार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के उच्च स्तर पर। लोकसत्य की सुर्खी है, महानदी विवाद पर दिल्ली में बड़ा मंथन, समाधान की राह में बनी सहमति। गृह मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान पत्रिका ने तरंग शक्ति 2026 शीर्षक दे दिया है तेजस संग उड़ान। फ्रांसीसी मेजर जनरल बोले, याद आया मिराज 2000। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस के एयरक्रू ने साझा किए ऑपरेशनल अनुभव। रफाल की हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया भी देखी। एशियाई खेलों पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ग्रीको रोमन कुश्ती में 64 साल बाद रजत पदक। कभी दूध बेचते थे पानीपत के सिवाच, आज चांदी से चमके। सेलिंग में प्रिंस और मनु ने जीता रजत। बाढ़ में पिता को खोया, अब पानी पर ही रचा इतिहास। पत्र के अनुसार, हॉकी में पाकिस्तान को हराकर भारत की नजरें गोल्ड पर। क्रिकेट में पाक से होगा फाइनल मुकाबला।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay, the headlines. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on the birth anniversary today. Special Gram Sabhas to be convened across the country on the occasion of Gandhi Jayanti. Civil Aviation Ministry initiates series of reforms to make aviation security processes simpler and quicker. Saudi Arabia hands over to UAE Omani co-pilot who made abortive attempt to crash fly Dubai's Tel Aviv-bound plane. Brave Indian pilot Smith Machar airlifted to Abu Dhabi for treatment, India closely following his health condition. Russian President Vladimir Putin says Prime Minister Narendra Modi has very good ideas to find mutually acceptable solution for Ukraine conflict. And India bags gold medal in the women's recurve archery team event at the Asian Games in Japan. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A series of functions have been organized across the country and by Indian missions abroad. A Sarva Dharma Prarthana Sabha was organized at his Samadhi Rajghat in the national capital.

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8:40 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: बीसवें एशियाई खेलों में आज के कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, नमस्कार। सबसे पहले आज की सुर्खियां। नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन कुश्ती में इतिहास रचा, पाया रजत पदक। सेलिंग में फ्रांसिस मनु और प्रिंस नोबेल ने रजत पदक हासिल किया। कंपाउंड आर्चरी में गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक पर निशाना साधा। स्क्वैश में महिला और पुरुष टीम दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक। और हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पहलवानी के मैट पर आज भारतीय लिहाज से एक अनोखी उपलब्धि आई। सोनीपत हरियाणा के लाल ने कमाल कर दिया। 1962 के बाद पहली बार कोई भारतीय ग्रीको रोमन स्पर्धा के इवेंट में फाइनल में पहुंचा। खुलासा शाहिद आजमी से।
3: भारतीय पहलवान नितेश कुमार ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीतकर 64 साल का इंतजार खत्म कर दिया। शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक पहुंचे नितेश भले ही स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन उनका रजत पदक भारत की कुश्ती के इतिहास में एक नया अध्याय लिख गया। पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में नितेश ने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमान बर्दी अगामेदेव को 7-1 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में मंगोलिया के गंगखुयाग गनबातार को 9-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उन्हें जापान के यूरी नकाजातो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रजत पदक जीतकर नितेश ने इतिहास रच दिया। वह 1962 के बाद ग्रीको रोमन वर्ग में एशियन गेम्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। हालांकि इससे पूर्व 2 और ग्रीको रोमन मैच खेले गए, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। 60 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित को ईरान के अब्बासपुर रागानी के खिलाफ मुकाबला गंवाना पड़ा। वहीं 77 किलोग्राम में अमन ने शानदार शुरुआत करते हुए मंगोलिया के बोरगिल तोशिन बातार को 8-6 से हराया। हालांकि अगले मुकाबले में कतर के शाहीन बदागी मुफराद ने अमन को 9-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही भारत का ग्रीको रोमन कुश्ती अभियान 2 पदकों के साथ समाप्त हो गया। वहीं महिला वर्ग में आज एकमात्र वजन वर्ग में भारतीय पहलवान मानसी अहलावत 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। मानसी का कांस्य पदक मुकाबले में मंगोलिया के अल्तजिन तोकतोक से सामना हुआ। रोमांच से भरपूर इस मैच में मानसी ने आखिरी दम तक जोर लगाया, लेकिन 4-2 से हारकर कांस्य पदक से चूक गई। इससे पहले मानसी ने प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की इरीना कुज़निसोवा को 6-1 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की जो सुबिन को विक्ट्री बाई फॉल से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हालांकि सेमीफाइनल में जापान की नोनोका ओजाकी के खिलाफ मानसी को 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। अब कल 2 अक्टूबर को पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में सुजीत कलकल और 125 किलोग्राम में रुहाल चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम में दीपांशी और 76 किलोग्राम में प्रिया मलिक मैट पर उतरेंगी।
2: नौकायन के नाविक कई दिनों से समंदर की लहरें गिन रहे थे। आज कई स्पर्धाओं में उनकी नाव किनारे पर जा लगी। स्किफ में प्रिंस नोबेल और फ्रांसिस मनु की नाव तो चांदी से भर गई, और इस चांदी की पूरी कहानी साक्षी मंडवाल से।
4: इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल विनिंग सिल्वर इन द मेंस स्किफ इवेंट। द इंडियन पेयर फिनिश्ड सेकंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 net points. India recorded 2 race wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China claimed the gold while Hong Kong took the bronze medal.
2: कंपाउंड आर्चरी में युवा होनहार गणेश रत्नम और चिकिता तानीपार्थी थे आर्चरी रेंज में, पदक एक ही आया। रिपोर्ट शाहिद आजमी से।
3: एशियन गेम्स के 12वें

0: के रैकेट विपक्षी कौशल और दमखम को पार नहीं कर सके, लेकिन उनके हौसले और अभियान की दाद दीजिए जिसने दोनों को दिलाए कांस्य पदक। रिपोर्ट धर्मेंद्र से।
1: स्क्वाश में भारत को आज 2 कांस्य पदक मिले। पुरुष टीम को मलेशिया के हाथों सेमीफाइनल में 1-2 की हार से ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। पहले मैच में अभय सिंह को एनजी इयान ने 0-3 से शिकस्त दी। स्कोर 8-11, 8-11, 8-11 रहा। लेकिन दूसरे मैच में वीर चोटरानी ने भारत को वापसी कराई। इस मैच को चोटरानी ने 3-0 से अपने नाम किया। उन्होंने मलेशिया के खिलाड़ी संजय जीवा को 11-4, 11-8, 11-5 के स्कोर से शिकस्त दी। लेकिन वी सेंथिल कुमार निर्णायक मैच में पराजित हो गए। उन्हें ए चंद्रन ने 4 सेट में 12-10, 6-11, 8-11, 9-11 से हराया और भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। भारतीय महिला स्क्वाश टीम को भी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत भारतीय महिला स्क्वाश टीम के लिए अच्छी नहीं रही। ये अलग बात है कि अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ अच्छी शुरुआत की और पहले 2 गेम जीते। अनाहत ने पहला गेम 11-9 और दूसरा गेम 11-8 से अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद चान सिन ने शानदार वापसी की और उन्होंने अगले 3 गेम जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया। तीसरा गेम चान सिन ने 11-6 से जीता तो चौथे गेम को 13-11 और पांचवें गेम को 12-10 से जीता। इस जीत के साथ हांगकांग ने मैच में 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि इसके बाद तन्वी खन्ना ने भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। उन्होंने अपने से ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ी ली का यी को बेहतरीन वापसी करते हुए हराया। पहले गेम में तन्वी को 4-11 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने अगले 3 गेम जीतकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। तन्वी ने दूसरा गेम 13-11, तीसरा गेम 11-9 और फिर 13-11 से जीता। निर्णायक मुकाबले में जोशना चिनप्पा ने निराश किया और वह होजे लोक के खिलाफ हार गई। होजे ने पहला गेम 11-4 से अपने नाम किया। इसके बाद दूसरे गेम में भी हांगकांग खिलाड़ी का दबदबा रहा और उन्होंने गेम को 11-7 से जीता। होजे तीसरे गेम में भी हावी नजर आईं और उन्होंने 11-9 से जीतकर हांगकांग को फाइनल का टिकट दिलाया।
0: हॉकी में परंपरागत विपक्षी भारत और पाकिस्तान थे आमने सामने और क्या मैच हुआ, लोमहर्षक, सांसें थाम देने वाला। भारत ने करीब 1 दशक से पाकिस्तान पर चली आ रही अपनी बादशाहत बनाए रखी, मैच 4-3 से जीत लिया। किसी बेहतरीन थ्रिलर की तरह था ये मैच। 3-3 की बराबरी, खेल समाप्त होने वाला था, सीटी बजने वाली थी, लग रहा था मामला शूट आउट में जा रहा है। तो हूटर बजने के ठीक 40 सेकंड पहले भारतीय हमला होता है, गेंद डी में पहुंचती है, पाकिस्तानी डिफेंडर के स्टिक से टकराकर फ्लेक्ट होती है और अभिषेक ने फुर्ती के साथ गेंद को गोल मुहाने के भीतर कर दिया। भारत फाइनल में पहुंच गया। लेकिन इस मैच के रंग कई बार बदले थे। पहले दोनों क्वार्टर्स भारत के नाम और अगले दोनों में भारतीय रक्षण की चूक और पाकिस्तान के पलटवार। पहले क्वार्टर में ही 5वें मिनट और फिर 13वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर हिट्स का जादू चलाया, भारत 2-0 से आगे। हाफ टाइम के बाद सुखबीर ने एक बेहतरीन फील्ड गोल कर भारत को 3-0 से आगे कर दिया। भला किसने सोचा था कि पाकिस्तान अभी भी मैच में वापस आ सकता है। लेकिन लगा भारतीय रक्षण की धार अचानक कुंद सी हो गई है। पहले पेनल्टी कॉर्नर में अल महमूद और फिर हनान शाहिद का फील्ड गोल और उसके बाद चौथे क्वार्टर में राणा वहीद का भी लेफ्ट फ्लैंक से मारा गया करारा शॉट जिससे गोलकीपर कोसों दूर थे। बहरहाल अभिषेक के गोल ने भारत की जीत पक्की कर दी। अब स्वर्ण पदक के लिए भारत मलेशिया से भिड़ेगा 3 तारीख को और कहने की जरूरत नहीं, हॉकी का स्वर्ण पदक और सभी पदकों से ज्यादा प्यारा होता है हमें। क्रिकेट में आखिरकार भारतीय टीम सचमुच मैदान में उतरी और शानदार मैच खेला। इस शानदार जीत की शानदार कहानी धर्मेंद्र से।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने जापान के निशिन में खेले गए सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के 6 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट भारत के लिए लिए। भारत ने श्रीलंका पर 2020 क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। पिछली सबसे बड़ी जीत 93 रन की थी जो 2017 में कटक में मिली थी। अब शनिवार को गोल्ड के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये पहला मौका है जब ये दोनों टीमें एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले में आमने सामने होंगी। ईशान ने बताया कि भारतीय टीम फाइनल मैच के लिए तैयार है। ईशान किशन ने इस मैच के बारे में कहा,
2: आई थिंक जस्ट कीपिंग इट सिंपल, यू नो, यू डोंट थिंक सो मच। वी प्लेड टुडे, वी नो द कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू बी सो इजी, स्पेशली दे आर आल्सो स्पिनिंग स्पिनर फ्रेंडली टीम। एट द सेम टाइम, यू नो, यू जस्ट डोंट थिंक लाइक व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर 2 डेज, यू जस्ट कीप काम, यू प्ले योर

0: shots, you be in the moment and just enjoy those crunch moments.
1: सिपक टॉकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में अरुण और बॉबी कुमार के खेल ने उम्मीदें जगाए रखी। जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
2: इंडिया सिक्योर्ड अ मेडल इन मेंस क्वाड्रेंट सिपक तकरो आफ्टर बीटिंग म्यांमार 2-1 इन देयर फाइनल ग्रुप मैच। द विक्ट्री सेंट इंडिया इनटू द सेमीफाइनल्स एंड कीप्स देयर अनबीटन रन इंटैक्ट अक्रॉस 3 ग्रुप मैचेस। इंडिया फिनिश्ड टॉप ऑफ देयर ग्रुप एंड आर अश्योर्ड ऑफ अ प्लेस ऑन द पोडियम। अर्लियर इन द डे वी सॉ इंडिया डिफीट वियतनाम इन द मेंस क्वाड्रेंट ग्रुप ए मैच ऑफ द सिपक तकरो इवेंट। दे वन इन स्ट्रेट सेट्स बाय अ मार्जिन ऑफ 15-12, 15-7, थेरबाय डिफीटिंग वियतनाम 2-0।
1: शूटिंग की स्पर्धाएं आज समाप्त हो गई। अंतिम स्पर्धा भी कल से जारी पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश भानवाला फाइनल तक तो पहुंचे, लेकिन पदक पे निशाना नहीं साध पाए। आज की स्पर्धा पर शाहिद आजमी का विवरण।
3: एशियन गेम 2026 में शूटिंग स्पर्धा में आज भारत की आखिरी उम्मीद अनीश भानवाला का सफर 25 मीटर रैपिड पिस्टल के फाइनल में सातवें स्थान पर रहते हुए खत्म हुआ। क्वालिफिकेशन में अनीश ने 576 का स्कोर कर नवा स्थान हासिल किया। हालांकि एक देश से अधिकतम दो निशानेबाजों के फाइनल में पहुंचने के नियम के तहत उन्हें फाइनल में जगह मिली। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया के 3 निशानेबाज क्वालिफाई हुए थे, लेकिन नियम के तहत उनके 2 निशानेबाज ही फाइनल में पहुँच सके। फाइनल में अनीश ने एक अहम दौर में 15 में से 11 सटीक निशाने लगाए, लेकिन टाई ब्रेकर में पीछे रह गए। इस तरह अनीश सातवें स्थान पर रहे और उनके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान समाप्त हो गया। अब एक नजर डालते हैं एशियन गेम 2026 में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर। भारतीय शूटरों ने एक बार फिर अपनी सटीक निशानेबाजी का दम दिखाया। हालांकि कुछ नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। ओवरऑल भारत ने कुल 15 पदक अपने नाम किए, जिनमें 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही नीरू ढांडा का प्रदर्शन। उन्होंने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने के साथ ही कायनन चेनई के साथ मिक्स ट्रैप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। और अगर पिछले एशियन गेम्स की तुलना करें तो हांगझाऊ 2022 एशियन गेम्स जो 2023 चीन में आयोजित हुए थे, वहाँ भारतीय निशानेबाजों ने 22 पदक जीते थे, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।
1: वॉलीबॉल में टीम दमखम तो पूरा लगाती है, लेकिन 1986 के बाद से पदक नहीं आ पा रहा। लेकिन आज क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को वो ब्लॉक नहीं कर पाए। विवरण धर्मेंद्र से।
4: वॉलीबॉल में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से 0-3 से हार गई। पाकिस्तान ने मुकाबला 25-19, 25-23, 25-18 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ये मैच 1 घंटे 20 मिनट तक चला। भारत को सबसे ज्यादा 10 अंक अंशवाल राय ने दिलाए। पाकिस्तान के मुराद खान ने 22 अंक बनाए। इस हार के साथ भारत का एशियन गेम्स में वॉलीबॉल अभियान खत्म हो गया।
1: जूडो में उम्मीदें यामिनी मौर्य से थीं, लेकिन मन मोह लिया मणिपुर की एक लड़की ने। कांस्य पदक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। जूडो का विवरण साक्षी मंडवाल से।
2: In judo, Yamini Maurya's campaign ended with a defeat in the women's 57-kilogram repechage at the Asian Games. While India's Inanganbi Taklambam first beat Nepal's Poonam Shrestha by IPO to qualify for the quarterfinals. However, she lost by IPO to North Korea's Song Hui Moon in the quarterfinals. Song's reaching the final opened up the repechage route for Taklambam. The Indian was scheduled to face China's Jing Tang in the repechage round. However, the Chinese judoka was disqualified before the bout. Consequently, Taklambam was awarded a walkover victory by a fusion gachi. India's Inanganbi Taklambam lost the bronze medal bout in the women's 70-kilogram event, getting defeated by Anujin Ulzi, who won the bout by Waza Ari.
1: इन एशियाई खेलों में टेनिस ने जरूर कई दिल तोड़ दिए, मायूस किया। 40 साल बाद टेनिस में भारतीय दल बिना पदक के रह गया। सुमित नागल भी अपना मैच आज हार बैठे क्वार्टर फाइनल का। लेकिन गोल्फ की बात करें तो उसमें उम्मीदें जगी हुई हैं। कल आरंभ हुआ था, भारतीय टीम चुनौती देने की स्थिति में लग रही थी, और आज क्या हुआ इसका विवरण दे रही हैं साक्षी मंडवाल।
2: इंडियाज प्रणवी उर्स वाज इन द सेकंड प्लेस इन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले आफ्टर 2 राउंड्स कार्डिंग 11 अंडर 129 टू सेट 2 स्ट्रोक्स बिहाइंड लीडर शैनन जुआन जिन टैन ऑफ सिंगापुर। Diksha Dagar was tied 21st at 4 over 144, while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are third in the team standings behind China and Singapore.
1: Cycling track mein aaj

0: स्प्रिंट ओमनियम, महिला स्प्रिंट और मेडिसिन की प्रतियोगिताएं थीं। ओमनियम में हर्षवीर सिंह सैकड़ों नवे स्थान पर पहुंचे। महिलाएं मेडिसिन स्पर्धा समाप्त ही नहीं कर सकी और स्प्रिंट में साइकिलों के चक्के रिपेचेस तक पहुंचकर ही थम गए। तो ताइक्वांडो में क्या हुआ, आइए जानते हैं साक्षी मंडवाल से एक बार फिर।
1: इंडिया कैंपेन इन द वुमेन्स इंडिविजुअल पॉम्से इवेंट इन ताइक्वांडो एंडेड एज रूपा बेयर बाउड आउट ऑफ द सेमीफाइनल। शी फिनिश्ड विद 7.6100 पॉइंट्स। दिस वाज नॉट इनफ टू फिनिश अमंग द 8 स्टार्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल।
0: रग्बी सेवन के मुकाबलों में भारत पूल ई में है। हांगकांग से पहला मैच ही बहुत मुश्किल साबित हुआ भारत के लिए। इस स्पर्धा का पूरा विवरण साक्षी मंडवाल से।
1: इंडियाज वुमेन्स रग्बी सेवन्स टीम कंप्राइजिंग शिखा यादव, दुमुनी मारंदी, संध्या राय, मामा नाय, वैष्णवी पाटिल, कल्याणी पाटिल, अमनदीप कौर, आरती कुमारी, भूमिका शुक्ला, गुरिया कुमारी, निर्मल्या राउत, संध्या रानी टुडू एंड उज्ज्वला घुगे हैड अ टफ स्टार्ट ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द आईची नगोया 2026 Asian Games, suffering two heavy defeats in Pool B, Pool E in some classifications at the Paloma Mizuho Rugby Stadium. In match number 1, India was handed a defeat by Hong Kong China 33-7, while in match number 2, India was handed a defeat by People's Republic of China 43-5.
0: और अब पदक तालिका की ताजा स्थिति शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारत के खाते में अब तक 10 स्वर्ण, 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदक हैं और भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं मेडल टेबल पर चीन 154 स्वर्ण समेत 288 पदकों के साथ पहले, जापान 59 स्वर्ण समेत 217 पदकों के साथ दूसरे और दक्षिण कोरिया 30 स्वर्ण समेत 113 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
0: ये एशियाई खेल अपने समापन की ओर बढ़ चले हैं। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अभी भी पदकों के लिए पूरी रस्साकशी जारी है। वो सवाल जो प्रतियोगिताएं उठाती हैं, जिनके जवाब होते हैं स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक पाना, उसके लिए जद्दोजहद जारी है और भारतीय खिलाड़ी भी इसमें लगे हुए हैं। कल का दिन बहुत खास रहने वाला है क्योंकि महिला हॉकी का फाइनल है। सारी निगाहें वहीं रहेंगी। भारत की लड़कियां चीन के विरुद्ध उतरेंगी हॉकी के मैदान पर। बहुत शानदार मैच रहेगा ये। इसके बारे में जानना हो तो हमारी अपडेट्स आकाशवाणी पे हमारे साथ रहिएगा। भारतीय लड़कियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार खेला है। सबसे पहले उज्बेकिस्तान को 19-0 से परास्त किया, उसके बाद इंडोनेशिया को 17-1 से, थाईलैंड को 20-1 से, जापान को 3-1 से, सिंगापुर को 7-0 से और सेमीफाइनल में कोरिया की मजबूत टीम को 2-0 से परास्त किया था। यानी पूरे जोश में होंगी लड़कियां और स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में आना चाहिए। कल और 3 स्वर्ण पदक हैं जिन पर भारतीय निगाहें रहेंगी। बॉक्सिंग के रिंग में उतरेंगे अंकुश पंघाल, परवीन हुड्डा और लवलीना बोरगोहेन। देखते हैं बॉक्सर्स भारत के लिए क्या करके दिखाते हैं। वैसे बॉक्सर्स ने अब तक के इन एशियाई खेलों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, पहले से कहीं बेहतर। अगर प्रदर्शन ऊंचा हुआ है तो बॉक्सिंग वो स्पर्धा है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा करके दिखाया है। कुश्ती में भी कल भारतीय पहलवान बहुत कुछ कर गुजरने की चाह लेकर मैट पर उतरेंगे। फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल होंगे 65 किलोग्राम भार वर्ग में, रजत होंगे 125 किलोग्राम भार वर्ग में, दीपांशी 50 किलोग्राम भार वर्ग में और प्रिया 76 किलोग्राम भार वर्ग में अपने दांव पेंच दिखाएंगे। तो आर्चरी में रिकर्व टीम की सेमीफाइनल स्पर्धाएं हैं। अंकिता भगत, कीर्ति और कुमकुम खेलेंगी चीन के विरुद्ध। इसके अलावा केनो स्लालोम में महिला और पुरुष के क्रॉस इंडिविजुअल हैं। साइकिलिंग में महिला ओमनियम, पुरुष काइरिन और पुरुष मेडिसन की प्रतियोगिता होगी। गोल्फ में पुरुष टीम राउंड 3 में खेलेगी और इसके अलावा इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले महिला और पुरुष का जारी रहेगा। रग्बी सेवन में मलेशिया के विरुद्ध मैच होगा। सेपक टॉकरा में महिला क्वाड्रेंट के मुकाबले होंगे। ताइक्वांडो में कशिश मलिक उतरेंगी। और अब समय आ पहुंचा है विदा लेने का। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, कल सुबह 9:30 बजे से FM रेनबो पर नियमित अपडेट्स सुनना मत भूलिएगा और रात 10 बजे हमारा ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो फिलहाल मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग। इस समय सुबह के 9 बजे हैं।
5: सीमा,
6: सीमा
5: उठो।
7: क्या हुआ?
5: चेकअप के

0: やないな。
1: それどな。
0: उठो।
1: अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा?
2: गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके।
1: समय का मोल
3: HIV पे कंट्रोल।
2: गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं।
1: पुलिस?
4: मिस सीमा
1: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, अब सुनिए कुछ फिल्म गीत। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी, अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वरों में 1920 फिल्म का गाना बोल अमित खन्ना के तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज सवेरे 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिन के 11:30 पर आप सुनेंगे निकोबारी कार्यक्रम।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:10 होने ही वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 15वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पर्यावरणविद आनंद कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: नमस्कार, विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में आप सभी का स्वागत। विकास की दौड़ में आज दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक ओर ऊर्जा की बढ़ती मांग और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से पर्यावरण और मानव जीवन की रक्षा करना। भारत ने इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, सौर शक्ति, जैव ईंधन, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और जलवायु अनुकूल विकास को अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों के दौरान गुजरात में जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और मिशन लाइफ जैसी पहलों तक हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव सामने आए हैं। गुजरात का चारण का सोलर पार्क देश में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए भारत वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विस्तार में सहयोग कर रहा है। और आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की सौर क्रांति किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कहां तक पहुंची है, ऊर्जा सुरक्षा में स्वच्छ ऊर्जा की क्या भूमिका है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विज्ञान तकनीक नीतियों और जनभागीदारी का किस प्रकार समन्वय किया जा रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक श्री अरुण त्रिपाठी और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक श्री आनंद शर्मा। आप दोनों मेहमानों का आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: और आइए सुनते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत क्या कुछ कर रहा है और अभी तक क्या कुछ किया जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से।
4: भारत में सौर ऊर्जा देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। बड़े सोलर पार्क से लेकर घरों की छतों तक सौर ऊर्जा का विस्तार लगातार हो रहा है। भारत की इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और फ्रांस की पहल पर 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान शुरू किया गया ISA सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक सहयोग मंच है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की तैनाती को गति देना और तकनीक, निवेश, क्षमता निर्माण तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। देश के भीतर सौर ऊर्जा को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी पहल है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को इसे मंजूरी दी। योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में

0: रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है। इसके लिए 75,021 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में भी पिछले एक दशक में बड़ी वृद्धि हुई है। 31 जुलाई 2026 तक देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 164.59 गीगावाट हो चुकी थी। वर्ष 2014 में ये क्षमता लगभग 2.8 गीगावाट थी। सौर ऊर्जा का विस्तार केवल अधिक बिजली पैदा करने तक सीमित नहीं है, इसका संबंध ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने से भी है। साथ ही रूफटॉप सोलर के विस्तार से परिवार बिजली की लागत कम करने और कुछ मामलों में अतिरिक्त बिजली से आय अर्जित करने में भी सक्षम हो रहे हैं।
1: आनंद शर्मा जी, आपसे ही शुरू करते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहले बहुत चर्चा में रही है। गुजरात के इस अनुभव ने देश की जलवायु और ऊर्जा नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया है? क्या गुजरात का जो ये मॉडल था, ये देश के दूसरे राज्यों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है?
2: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ये विजनरी स्टेप था, और वो भी 2009 में, जब शायद इतनी ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही थी नेशनल और ग्लोबल लेवल पर। उस समय एक स्टेप लेना और एक ऐसे डिपार्टमेंट का गठन करना जो कि ग्लोबल वार्मिंग, मिटिगेशन, अडेप्टेशन मुद्दों पर जिसने एक लीड रोल निभाया, और एक उसी विभाग के अंडर जो है उन्होंने अपना एनर्जी का डिपार्टमेंट है, गुजरात एनर्जी डिपार्टमेंट, उसकी भी स्थापना की, और वो आज एक पूरे इंडिया के लिए रोल मॉडल है, वर्ल्ड के लिए रोल मॉडल है। करीब करीब वहाँ पर आप देखेंगे तो 100 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी आज जनरेट की जा रही है, और 2030 तक उसका टारगेट शायद 150 गीगावाट का है, और 2050 तक 300 गीगावाट का है। और उसी की देख रेख में, उसी की पहल को देखते हुए अन्य स्टेट जो हैं, केरल भी है, तमिलनाडु, राजस्थान, वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है भारत जिस तरह से सौर ऊर्जा में गुजरात ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी फिलहाल मोदी जी, उनके अंडर जो विजनरी स्टेप लिया था, वो एक मतलब कि इस समय जो दिख रहा है कि उस समय जो स्टेप लिया था, आप सोचिए कि इस समय जब लड़ाइयाँ शुरू हुई खासकर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और हमारी एनर्जी जो है पेट्रोल डीजल ये सब प्रभावित हुआ है, तो अब समझ आ रहा है कि देखिए उस समय जो लिया हुआ स्टेप है कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। तो वो एक बहुत ही विजनरी स्टेप था, और मुझे लग रहा है आज इसको हम और मतलब जैसे कहते हैं गति लानी होगी, और उसके लिए भी सरकार जो है पूरा सब्सिडी दे रही है, के साथ साथ जो उसके लिए इंटरेस्ट जो है 5 और 6% पे इंटरेस्ट पे पैसा भी मिल रहा है सोलर पैनल लगाने का। और आपने जैसे कहा पीएम सूर्य घर, करीब करीब 10 लाख घर जो हैं वो इसको लगा चुके हैं, और मुझे लगता है टारगेट शायद 1 करोड़ जी से ज़्यादा घरों का है आने वाले दिनों में। और उसके साथ साथ सोलर पंप्स, वो एक बहुत फ़ायदा होगा किसानों को। कई बार क्या होता है आपके ग्राउंड में पानी तो है मगर आपके पास डीजल नहीं है उसको निकालने के लिए पानी के, सोलर पंप है तो आप खासकर सिंचाई कर पाएंगे फसल को उस समय जब आपकी लंबे समय से बारिश नहीं होती है। तो आपको ये देखिए ये जो एनर्जी सिक्योरिटी मिली उससे आपको फूड सिक्योरिटी में भी फायदा हो रहा है
1: जी।
2: तो ये एक बहुत अच्छी पहल है मैं कहूँगा, और अन्य कंट्रीज को एग्जाम्पल दिया जा रहा है जहाँ यूरोप और चाइना इवन उनकी पूरी इकोनॉमी कोल बेस्ड है, और खासकर लड़ाई के बाद उन्हें पूरा कोल पे आ गए, और वहीं इंडिया जो पहले शायद 5-7 साल पहले हम भी यही बात कर रहे थे, पर अब हमने शिफ्ट होके सोलर पे आ गए, तो जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात होगी ये, क्योंकि हमें 0 कार्बन पे आना है मिनिमम, और नेचुरली कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो आपकी तो क्लाइमेट चेंज में मिनिमम होगा या कम हो जाएगा, तो और यदि वो होता है तो हैजार्ड्स कम होंगे तो आपके जो पैसा और उससे जो नुकसान होता है और वो रिलीफ में जो पैसा आता है वो बचेगा, और वो पैसा फिर डेवलपमेंट में जाएगा। तो ये अल्टीमेटली लिंक्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से,
1: और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ये फुल साइकिल आपने चर्चा की। आनंद शर्मा जी, 25 सालों का अनुभव सार्वजनिक जीवन में बहुत लंबा अनुभव होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और जो अनुभव वहां से उन्होंने इकट्ठा किए उसे प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी दूरदृष्टि को देखते हुए उन्होंने लागू किया, और उसके जो परिणाम हैं आज हम वो देख रहे हैं। हम कई देश में, शहरों में, कई राज्यों से जब गुजरते हैं तो घरों की छतों पर लगा हुआ सोलर पैनल इस बात की गवाही देता है। आज कई राज्य हमारे, कई शहर जो हैं, जितनी अपनी ज़रूरतें हैं उससे कहीं ज़्यादा बिजली उत्पादन कर रहा है। और आपने अभी जिस पूरी एक साइकिल की बात की देश के विकास में किस तरीके से लोगों की बिजली की बिल में जो बचत हो रही है वो पैसा अल्टीमेटली जीडीपी में बढ़ावा दे रहा है और हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहना है आपका कि ये क्या जो सोलर पैनल हैं घर घर में कहाँ तक हम पहुँचे हैं, और आगे 5 से 10 साल में हम कहाँ तक पहुँच

0: वाले हैं। नहीं देखिए, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यदि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर चले तो इंडिया की प्रोग्रेस सराहनीय है। और कुछ स्टेट जो है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये पहला स्टेप गुजरात में लिया गया, तो गुजरात तो बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। आपने अभी एक वो पार्क की बात करी, वो उसके अलावा खेवड़ा, खेवड़ा जो है सोलर पार्क है वो तो बहुत ज़बरदस्त, उसके कहते हैं 30 गीगावाट, जो कि एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट या कोई थर्मल पावर उतनी एनर्जी जनरेट करने वाला है, और जो कि करीब करीब मुझे लगता है 5,300 एकड़ में फैला हुआ है। और आपने आप में शायद ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर एक जनरेशन वाला रीजन होगा। तो एक ये बहुत बड़ी पहल है, और आपने भी सही कहा, कुछ दिनों में ये गुजरात जो होगा सरप्लस स्टेट में होगा। और वो यही नहीं कर रहे, उसके साथ साथ उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ शुरू कर दिया है, मतलब कि पानी भी होगा आपके पास, ऊर्जा भी हो सकता है, और वो सब ये मार्जिनल लैंड में
1: जी
0: जहाँ कुछ ग्रो नहीं करता था। तो ये भी बड़ा अच्छा है कि वो वाली कोई अच्छी वाली, कई बार लोग कहते हैं ना उपजाऊ भूमि खराब हो गई, वो भी नहीं, ये तो मार्जिनल लैंड थी, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाया है। और हु नोस कि कल को उसी के नीचे कुछ और पानी हार्वेस्ट हो जाएगा तो कुछ और लगने लग जाएगा। तो ये सोलर पैनल बड़ी अच्छी प्रयास है, और मुझे लग रहा है इसको जिससे वार फुटिंग पे मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये क्राइसिस को अभी जो हाल ही में एनर्जी क्राइसिस हुआ है, तो हर घर पे हर बिल्डिंग पे ये जरूर देखने चाहिए, और वार फुटिंग पे ये काम होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये होता है तो हम लोगों की GDP भी बढ़ेगी, जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों से डीजल पेट्रोल की वो करने के लिए, वो भी खत्म होगी। और जब एनर्जी सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी तो आपकी फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, और आप एक सुपर पावर भी बन पाएंगे।
1: बिल्कुल, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक अरुण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी, पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में जो सौर ऊर्जा की क्रांति हुई है, काफी घरों की छतों पर अब हम देखते हैं सोलर पैनल लगा हुआ है, और हर घर लगभग बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। अब ये नहीं है कि बिजली आएगी गांव में पोल लगेगा तब होगा, लोग बड़े आराम से उसको लगा रहे हैं और सरकार सहयोग कर रही है। तो इन 12 वर्षों में अगर सिर्फ सोलर पैनल की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, तो आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं, कहां से कहां हम पहुंचे हैं?
0: एक समय ऐसा आ रहा था कि नेचुरली आपको मालूम होगा कई प्रदेशों में तो बिजली आती ही नहीं थी, और आती भी थी तो मात्र 3-4 घंटे रहती थी। अब खैर लोग इंडिविजुअल अपने यहाँ जब से लगाने लगे हैं तो उनके पास अब घर में बिजली भी आ रही है, और नेचुरली बिजली होगी तो पढ़ाई लिखाई भी बढ़ेगी आपकी, और साथ साथ आपके सोलर पंप हैं, आप पानी भी निकाल पाएंगे, तो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी आपका बढ़ रहा है, बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन। अच्छा, एक समय भी ये बात हो रही थी कि ऑफ द ग्रिड, मतलब आपको मेजर ग्रिड से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सोलर पैनल लगाइए और अपनी बिजली खुद पैदा कीजिए। और अब जिस तरह से ये बढ़ रहा है, तो फिर बात हो रही है कि ये वाली जो ग्रिड है ऑफ ग्रिड नहीं, इसको मेन ग्रिड से, मतलब आप खुद तो अपने घर का खर्चा निकालेंगे ही बिजली का, और बेचेंगे भी सरप्लस को। तो अब ऐसी स्थिति आ रही है कहीं जहां ज्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द मेन ग्रिड,
1: मतलब आप अपनी जरूरत तो पूरी कर ही रहे हैं निःशुल्क, और साथ ही पैसे भी कमा रहे हैं।
0: पैसे भी कमा रहे हैं,
1: बिल्कुल। आनंद जी, आपसे एक सवाल और है कि जलवायु परिवर्तन जो है आज केवल पर्यावरण का विषय ही नहीं रहा, बल्कि कृषि, जैसा भी आप बता भी रहे थे, कृषि है, स्वास्थ्य है, जल संसाधन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये हमारे आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है।
0: जी,
1: भारत में बदलते मौसम के पैटर्न और चरम मौसमी घटनाओं को देखते हुए, कहीं बहुत तीव्र गर्मी है तो कहीं बहुत ठंडा है, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा है, इन सबको देखते हुए जलवायु अनुकूल विकास की क्या आवश्यकता है, और मौसम विज्ञान विभाग इस दिशा में किस प्रकार से योगदान कर रहा है?
0: देखिए, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की बात हो रही है, वो एक बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है जो कि कंबाइन करती है अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू रियलाइज द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ये दोनों चीजों को अलग अलग नहीं मानते हैं, कह रहे हैं क्लाइमेट एक्शन को प्रमोट करेंगे आप तो यू विल बी बिल्डिंग रेजिलियंस इन द सोसाइटी, मतलब कि अडेप्टेशन है एक तरफ आपका मिटिगेशन है, और ये साथ में जुड़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। तो बेसिक गोल तो क्या है कि हमें, यदि आपको क्लाइमेट एक्शन जो है उस पर मेजर फोकस है, और क्लाइमेट एक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है आपका अडेप्टेशन, एक है मिटिगेशन। मिटिगेशन में मीन्स है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है, नेचुरली आपको ये तो मालूम ही होगा, एस्पिरेशनल सोसाइटी है, सबको बड़े घर चाहिए, कारें चाहिए, रहन सहन की और सहूलतें चाहिए, तो जब आप ये प्रोवाइड करते हैं तो आप ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन करते हैं, और उसके चलते जो होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है, और वो ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज से नेचुरली जब क्लाइमेट जल्दी से बदलेगा और ज़बरदस्त बदलाव आएंगे, तो चरम सीमाएं, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी, कभी सूखा होगा, कभी फ्लड होंगे, कभी हीट वेव होगी, तो ये सब करने के लिए, इसको बचने के लिए हमें मिटिगेशन बड़ा ज़रूरी है कि हम कम से कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करें, यानी कि हमारा जीरो कार्बन इकोनॉमी की तरफ हमें आगे चलना है। मिटिगेशन आ गया ये पहला। दूसरा एस्पेक्ट हो गया इसका अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है कि जहाँ भी कोई रिस्क है, जैसे समुद्र के पास है, गुजरात की बहुत बड़ी कोस्ट है, या ज़्यादा पूरा इंडिया में इतनी, वहाँ पे सी लेवल राइज का खतरा लोग कह रहे हैं, साइक्लोन का खतरा रहे,

0: तो ये जो खतरे हैं उसमें कहाँ रिस्क है, वो रिस्क को जानना, और उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके लिए मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। यदि आप सही समय पे, आपको रिस्क मालूम है और आप हजार्ड को प्रिडिक्ट कर देते हैं, उसकी वार्निंग जनता को देते हैं, उनको समय पे हटा देते हैं, तो जान माल आप बचा लेंगे। और यदि आप ये कर लेते हैं तो वही बात होगी, आपका पैसा बच गया, वही पैसा आप डेवलपमेंट में जाएगा जो कि रिलीफ में जा रहा था पहले। तो यही अडेप्टेशन और मिटिगेशन है, और जब अडेप्टेशन मिटिगेशन ढंग से होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज क्या होगा, हर बार हैजार्ड आएगा, आपने प्रिडिक्शन नहीं किया, हजारों जाने जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उजड़ेगा और आपका पैसा रिलीफ में जाता रहेगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और उसके साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखनी कि जब हम इतने सारे काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड हमारी चॉइसेस होनी चाहिए। यानी कि ये है कि ऐसा ना हो कि हम घर बना रहे तो वो उसके चलते क्या हुआ, घर ऐसी जगह पे बना दिया कि वो हैजार्ड बाढ़ में बह गया। तो आपस में इन सब में लिंक्स होने चाहिए अक्रॉस द पॉलिसी, मतलब हाउसिंग, एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक को फिक्स करते हुए हम दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो आपस में एक इंटेग्रेटेड वो रहना चाहिए, मगर साथ में ये भी ध्यान रखना है हमें कि क्लियर इंप्लीमेंटेशन जो है, गैप है, उसको क्लियर करना है। अभी क्या है कि कई चीज़ें तो हम बोल रहे हैं, कमिट कर रहे हैं उनको, उसको अभी शायद उसका कार्यान्वयन करने की बहुत स्कोप पड़ा है हमारे पास। और यदि वो हम करते हैं तो ये गैप जो है हमारे गोल में और एक्शन में अभी थोड़ा गैप है, उसको पूरा करना होगा।
1: आनंद शर्मा जी, सौर ऊर्जा उत्पादन और सौर उपकरणों का जो निर्माण है, इस क्षेत्र में भी भारत ने काफी प्रगति की है। पहले हम इसे आयात करते थे, अब उत्पादन तो हो ही रहा है, और इसके उत्पादन में जो सामान लगता है, जो उपकरण लगते हैं, उसका निर्माण भी हम घरेलू स्तर पर कर रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से आप अभी बात कर रहे थे, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है?
0: नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई, क्योंकि ऐसा था, अभी जब हम कुछ साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले, तो एक्चुअली जितने भी सोलर पैनल थे हम सब लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, और इम्पोर्ट कर रहे थे वो तो एक चीज़ थी। उसके बाद में जब से फिर ये चला आगे को, तो जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो अब सवाल आया कि भाई दिन में तो हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और रात को तो नहीं है, तो इसको स्टोर कहाँ करें एक्स्ट्रा को? तो उसके लिए बैटरीज की बात आई, लिथियम बैटरी, वो भी हम कहाँ से इम्पोर्ट कर, बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे, तो हमारा बहुत सारा पैसा उसमें लग जा रहा था। अब यह है कि बहुत लार्ज स्केल पे जो है, अब हमने ये सोलर पैनल्स इंडिया में बनने लग गए हैं, और ऐसे ही बैटरीज भी बनने लग गए हैं, मगर फिर भी आज बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लिथियम हमें जो है उसके लिए, और सिलिका जो कहते हैं हमें इसके लिए चाहिए सोलर पैनल्स की, इन दोनों पर आज भी हमें निर्भर होना पड़ रहा है चाइना के ऊपर। तो वो निर्भरता हमको कम करनी पड़ेगी, इनोवेटिव कहते हैं हमें टेक्नोलॉजीज और डेवलप करनी पड़ेंगी स्टोरेज के लिए, और पैनल्स बनाने के लिए भी हमें मतलब सिलिका से जो है, जो उस पर डिपेंडेंस है उसको खत्म करना पड़ेगा। यदि वो हम खत्म कर पाते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह की हमारी भारत सरकार की पॉलिसीज हैं, तो हम शीघ्र ही उसमें भी मतलब कि अच्छे रिजल्ट आएंगे हमारे सामने में। और ऊर्जा में तो डेफिनेटली आ ही चुके हैं, और ये तो बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे। सिर्फ हमें जो दो करने की जरूरत है वो यही है कि लिथियम की जो बैटरीज हैं वो भी हम पूर्ण अपने मतलब कि खुद ही सेल्फ रिलायंट हो जाएं उसमें भी, और पूरे पैनल को बनाने से लेकर उसके जो उसमें जो सिलिका जो भी पार्ट लगते हैं उसमें भी हम पूर्ण सेल्फ रिलायंट होना हमें जरूरी है अभी।
1: और आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में मिशन लाइफ क्या है।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियों और तकनीक के साथ साथ हमारी रोजमर्रा के जीवन शैली में बदलाव भी जरूरी है। इसी सोच के साथ भारत ने मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोगों और समुदायों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। मिशन के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं: ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, कचरा कम करना, ई कचरा कम करना, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, और टिकायु खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के एकता नगर में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था। मिशन लाइफ के तहत देश भर में अब तक 40 लाख से अधिक गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 7 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया है। बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए देश भर में 12 लाख से अधिक इको क्लब भी मिशन लाइफ के तहत काम कर रहे हैं। मिशन लाइफ का संदेश है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों और संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है। मिशन लाइफ इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल यानी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है, और टिकायु जीवन शैली को जन भागीदारी से जोड़ता है।
1: आनंद शर्मा जी, इसके माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, काफी बड़े पैमाने पर सरकार कर रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में आम नागरिकों की दैनिक आदतों, ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन और टिकाऊ उपभोग की कितनी भूमिका हो सकती है, और इस मिशन को जन आंदोलन का स्वरूप देने में मौसम विभाग,

0: और पर्यावरण जागरूकता की खास तौर पर क्या भूमिका आप देखते हैं?
1: बिल्कुल, सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो इनिशिएटिव था, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में जो आपका COP26 हुआ था ग्लासगो में, वहाँ ये इन्होंने ये इनिशिएटिव जो था लिया था, और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, और इसका बेसिकली जो मेन है टू प्रमोट माइंडफुल कंजम्पशन एंड रिड्यूस माइंडलेस कंजम्पशन। अभी समय क्या हो रहा है, माइंडलेस कंजम्पशन हो रहा है, जबकि होना चाहिए माइंडफुल कंजम्पशन, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और साथ में रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन भी। दूसरा है कि अभी तक हम कर रहे थे यूज एंड थ्रो, यूज करो और थ्रो करो, और उससे क्या हो रहा है, गार्बेज और बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है, तो उसको अब चेंज कर दिया है सर्कुलर इकोनॉमी में, यानी कि आप कचरा भी पैदा करेंगे तो उसको सेपरेट भी करेंगे और उसको आप रीयूज करेंगे। जैसे कि आपका वेस्ट निकल गया बायोमास, उससे आप बायोमास से आपने एनर्जी निकाल ली, आपने उससे आपने कहते खाद बना ली, आपने उसको मल्च की तरह यूज कर लिया खेती में, ये बहुत सारे बेनिफिट हो गए उससे, बायोगैस बना ली आपने, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी में सब आ रहा है। और उसमें पूरे एकदम जैसे कहते हैं ना SOP बनी है बड़े अच्छे ढंग से, कि हर चीज़ को मॉनिटरिंग भी हो रही है और उसमें जॉब भी क्रिएट होंगी और आपका वेस्टेज भी मिनिमम होगा, और ये प्रमोट करता है इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को। और इसमें फोकस क्या है, फोकस है आपका प्रो प्लैनेट पीपल, यानी कि हर जो नागरिक हो वो एक जिसे कहते हैं ना एक्टिवली प्ले करेगा कि भाई मैं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्रो प्लैनेट पीपल, वो इसका मेन फोकस है। तो उसमें आपने पूछा कि मौसम विभाग और पर्यावरण इनका क्या रोल हो सकता है इसमें, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आज की स्थिति आ रही है वो ये आ रही है कि जो ज़्यादातर लोग एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एयर कंडीशन
0: जी
1: ऑफिस है, एयर कंडीशन स्कूल है, एयर कंडीशन मॉल है, एयर कंडीशन घर है, एयर कंडीशन कार है, तो वो नेचर से जो है हमारी प्रकृति से कट ऑफ हो गए हैं। इसको मैं इसको कहता हूँ नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर हो
0: बिल्कुल
1: गया कि उसको प्रकृति में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है बाहर, तो जब वो पता ही नहीं तो वो उसको कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, उसको पता ही नहीं मेरी यमुना नदी खराब हो चुकी है, मेरे एक लैंडफिल इतने ऊंचे ऊंचे हो गए। पहले उसको कनेक्ट करना है, किताबी ज्ञान से ये लोग सीख नहीं पाएंगे पर्यावरण के बारे में, उनको फील्ड में ले जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एक चीज। दूसरी बात, जब कनेक्टेडनेस कैसे होगी, जब उनको समझाना पड़ेगा भी, देखिए आप जब एक्स्ट्रा कोई पॉलिथीन लेते हैं या आप AC को ही आप कहते हैं करना चाहिए, आपने 18 डिग्री पे लगा के रखा है, यदि आप उसको 24 डिग्री पे करके रखते हैं, बिजली बचा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए बिजली कहाँ से आ रही
0: और
1: है,
0: आप अपना स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं।
1: स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, एवरीथिंग इज लिंक्ड, बिल्कुल स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं आप। और जब आपने, और इसको ये मालूम होना चाहिए पॉलीथीन कहाँ जा रहा है, ये नदी में जा रहा है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो फिश वगैरह में जा रहे हैं, उसी को लोग खा रहे हैं, तो कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उनको ये सारा कनेक्टेडनेस जो है इकोसिस्टम की, इकोनेस आइसोलेटेड नहीं है, पूरा कनेक्शन है, ये जब हम समझाएंगे और बताएंगे वही पॉलीथीन को आप जला रहे हो तो फिर CO2 गैस निकल रही है, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है, और आप पिछड़ते रहेंगे क्योंकि आपका सारा पैसा तो कहते इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाएगा आपका, फिर आप उसी में पैसा लगाओगे तो नए स्कूल, नए कॉलेजेस, नए हॉस्पिटल, नई यूनिवर्सिटीज आप कैसे खोलेंगे।
0: बिल्कुल
1: ये कनेक्टेडनेस जब लोगों को ये समझ आ जाएगी सिंपल भाषा में कि भाई हाँ ये तो मुझे तो प्रो प्लैनेट पीपल बनना है,
0: बिल्कुल
1: मुझे है ना, मेरे को धरती पे अपना बोझ कम से कम करना है, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम कितना पानी डेली यूज कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आपका डेली वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो लोग नहीं बता पाते, कोई कहता 10 लीटर, कोई कहता 50 लीटर, जबकि वो 500 लीटर कर रहे हैं। तो
0: बिल्कुल
1: वही जो है
0: वो दे आर नॉट माइंडफुल, उसके बारे में
1: ना
0: माइंडफुल नहीं है।
1: माइंडफुलनेस, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि माइंडफुलनेस लेके
0: जी
1: आनी है उनमें, कि उनको को रियलाइजेशन हो कि भी हम कर क्या रहे हैं। आजकल के देखा होगा जो बच्चे हैं हर उठाते हैं फोन से, सामान पे सामान आ जा रहा है, और आप देखेंगे तो दिन भर में इतना कचरा इकट्ठा हो जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा वो कचरा, वो सारा फिर वो आप जला देंगे कहीं ले जाकर, सेग्रीगेट तो सब नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकारों ने बड़ा अच्छा कर दिया, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, तो वही उनको समझाना है ये फेंकना नहीं है, इसको रिसाइकिल करना है। और काफी इसमें पहल हो रही है, काफी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, आजकल तो कपड़े भी मिलते हैं आपको, बोलते हैं रिसाइकल्ड है ये कपड़ा, या ये बैग है जो रिसाइकल्ड हो रहा है, तो
0: बिल्कुल
1: मगर इसमें एक और भी ध्यान रखना कि ग्रीन वॉशिंग ना हो, कि बोल रहे हैं हम कर नहीं रहे हैं, करना है, करके दिखाना है, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: अदरवाइज जो है ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है।
0: आपने सही कहा, पॉपुलेशन बड़ी है क्योंकि भारत इतना विशाल देश है, इसकी टोपोग्राफी हर जगह अलग अलग है। कहां अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और नागालैंड, और कहां केरल, और कहां जम्मू कश्मीर, कहां गुजरात, कच्छ, इतना बड़ा देश है। अब ऐसे इतने बड़े भौगोलिक देश में एक्सट्रीम वेदर्स की भी समस्या है, कहीं हीट वेव है, कहीं अत्यधिक वर्षा है, बाढ़ है, कहीं चक्रवात है। लेकिन पिछले 12 वर्षों में सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और उनका सार्वजनिक जीवन में जो अनुभव रहा है उस पर चलते हुए उनके नेतृत्व में इन सब चीज़ों पर खास तौर पर ध्यान देना शुरू किया है। हमने ये भी देखा था एक वक्त पर कि IMD

0: वहाँ रहे हुए हैं एक बड़े पद पर। आईएमडी जब कहती थी कि बारिश होने वाली है, बारिश होती नहीं थी, और उनके कई सारे जो पूर्वानुमान होते थे वो या तो सटीक नहीं होते थे या कई बार गलत साबित होते थे। लेकिन अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कि पूर्वानुमान की सटीकता सही रही है, समयबद्धता में सुधार हुआ है, आम नागरिकों तक चेतावनी भी समुद्री इलाकों में बड़े समय से पहुंच रही है। आईएमडी ने ये कैसे किया, क्या रणनीति है?
1: इसमें बहुत सारी चीज़ें आप किसी से पूछेंगे मीडिया से, तो एक एक्सेलेंट फोरकास्ट मेरी, चाहे वो मैं कर्नाटका में था, चाहे मैं सिक्किम में था, चाहे मैं देहरादून में था, दिल्ली में था, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसके पीछे सब कुछ है कि निरंतर प्रयास। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी पिछले 15 साल में तो बहुत तेजी आई है इन प्रयासों में, पर पहले भी प्रयास हुए हम लोगों को, जो जिस तरह से मतलब सुपर कंप्यूटर 87 में आ गया था, और उसका एक मेजर रोल रहा, सबसे मेजर रोल रहा, क्योंकि उससे पहले अमेरिका में सुपर कंप्यूटर दे नहीं रहा था, फिर सुपर कंप्यूटर मिला, और उस सुपर कंप्यूटर के चलते जो है न्यूमेरिकल वेदर प्रोडिक्शन शुरू हुआ, उसने एक बहुत बड़ा रोल आया। दूसरा सैटेलाइट जो आए, सैटेलाइट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा
0: डॉपलर
1: किया,
0: रडार,
1: डॉपलर वेदर रडार आ गए, मगर इनके नंबर कम था डॉपलर वेदर रडार का, सैटेलाइट में भी कुछ इतने सेंसर्स नहीं थे जितने हम मौसम विभाग को चाहिए थे। फिर वो जब बोला गया और बीच में, तो ये पिछले 10-15 साल में इनमें बहुत भयंकर तेजी आई, यानी कि मतलब काफी पैसा इसमें गया, और नए सुपर कंप्यूटर्स लिए गए, नेटवर्क को बढ़ाया गया। डॉपलर वेदर रडार जो है मेरा ख्याल अभी 25-30 लग चुके हैं, और मेरा ख्याल 100 इनका नंबर पहुंचने की बात हो रही है अगले कुछ 1-2 साल के अंदर। तो इसमें निरंतर प्रयास हो रहे हैं, और बिल्कुल सही है कि आज से 25-30 साल पहले लोग बोलते थे ऐसा कि भाई मौसम विभाग जो बोलता है गलत, पर अब
0: जी
1: नहीं है, अब काफी सालों से 15-20 साल से ये धारणा बदली है, और रिजल्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं, और बहुत लोगों की जानें बच रही हैं, सबसे बड़ी बात। तो ये सारी जो प्रयास हैं, ये हमारे जो है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हमारी सोसाइटी को रेजिलिएंट बना रहे हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि और मानसून का कितना महत्व है ये कहने की जरूरत नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के वितरण, तापमान और मानसून के व्यवहार में होने वाले बदलाव किसानों के लिए क्या चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। कृषि, मौसम सेवाएं, जिला स्तर के पूर्वानुमान और समय पर सलाह किसानों को इन चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार से मदद कर सकती हैं, और क्या नई तकनीक और आईएमडी लेकर आ रहा है?
1: ये सवाल बहुत बढ़िया है आपको। एक तो मालूम है कि एक तरफ तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, और ये कहा गया कि भाई इससे क्या होगा, बीमारियां बढ़ेंगी पौधों में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी, वाटर सिक्योरिटी का भी इशू होगा, भाई नेचुरली जहां बारिश नहीं वहां सूखा पड़ेगा। मगर उसके विपरीत आप देखेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है ओवर द ईयर्स। आप देखिए, हालांकि इस साल थोड़ा प्रोडक्शन में कमी हो सकती है क्योंकि एल नीनो ईयर था, मगर उसके बावजूद भी मौसम विभाग ने जिस तरह से तरक्की की है, और जिस तरह से मौसम आधारित कृषि सलाह लोगों को मिल रही है, जिस तरह से कहते हैं आईसीआर ने ड्राउट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप करी हैं, तो इन सब का एक मेजर रोल रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल है, समय समय पर यदि किसान को मौसम आधारित सलाह मिल जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई अभी ये बारिश आने वाली है, तो हम किसान भाइयों को बोलेंगे देखो किसान भाइयों आपकी फसल जो तैयार पड़ी है 3 दिन में बारिश आने वाली है, तो आपकी तैयार फसल को काट के सुरक्षित स्थान पर रख लो, तो नुकसान बच गया उसका। ऐसा ही है, मान लीजिए किसान को इस समय फसल है उसमें फ्लावरिंग आ रही है जैसे महाराष्ट्र में, और बारिश मान लीजिए कि आने वाली है, तो आप कहोगे किसान भाइयों को देखिए भाई बारिश आने वाली है तो आप सिंचाई को टाल दीजिए, तो आपका सिंचाई का पैसा बच गया। सिमिलरली बारिश आने वाली है और आपने मान लीजिए आप फर्टिलाइजर और केमिकल लगाने वाले हैं, तो हम उन्हें कहेंगे नहीं भाई बारिश आने वाली है, आप फर्टिलाइजर और केमिकल अभी ना लगाएं नहीं तो वो पानी से बह जाएगा। तो ये जो मौसम आधारित कृषि सलाह है इसने बहुत फायदा किया है, और यही एक कारण है कि वी आर एबल टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चर यील्ड्स। नहीं तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही, तो यही कहा गया था कि भाई एपिडेमिक्स होंगे, और यही नहीं क्योंकि हम समय समय में उनको बता दे रहे हैं कि अब ये मौसम जो है अनुकूल हो गया है पौधे पे बीमारी आने का, तो आप मॉनिटरिंग शुरू कर दीजिए मगर स्प्रे मत करिएगा अभी,
0: जी
1: जब वो थ्रेशोल्ड से बढ़ जाएगा तो हम बताएंगे आपको जब स्प्रे करना है आपको, और हो सकता है कि मौसम पौधे के लिए अनुकूल हो जाए और बीमारी जो पेस्ट होता है उसके लिए विपरीत से हो जाए, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्प्रे करने की। तो केमिकल स्प्रे को भी बचा रहे हैं हम लोग, और वही स्प्रे जो केमिकल के पानी में जाते हैं, मच्छी में जा रहे हैं, फिर लोग उसको खा रहे हैं, तो हेल्थ खराब हो रही है, पर्यावरण खराब हो रहा है। मौसम आधारित जो कृषि सलाह है उससे हम किसान का पैसा बचा रहे हैं, लोगों की हेल्थ बचा रहे हैं, और साथ साथ पर्यावरण को भी बचा रहे हैं।
0: और देखिए, भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल पर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए की स्थापना हुई। आज ये सौर ऊर्जा के वैश्विक विस्तार और विकासशील देशों में निवेश और तकनीक सहयोग का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है, जिसका हम लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं। यूरोप के कई देश अगर आप देखें, जैसे डेनमार्क, तो वहां पर पवन ऊर्जा भी बेहद महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल में आ रहा है और उससे ऊर्जा पैदा की जा रही है। भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सौर, पवन, जैव ईंधन और परमाणु ऊर्जा जैसे जो विभिन्न स्रोत हैं, इनका संतुलित मिश्रण कितना

0: आ रहा है और उससे ऊर्जा पैदा की जा रही है। भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सौर, पवन, जैव ईंधन और परमाणु ऊर्जा जैसे जो विभिन्न स्रोत हैं, इनका संतुलित मिश्रण कितना जरूरी आप मानते हैं? क्या पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं?
1: नहीं, उसमें भी बिल्कुल बढ़ रहे हैं, मगर हम सोलर एनर्जी पे ज़्यादा हमने मतलब कि उसमें अचीवमेंट है हमारी। और बिल्कुल आपने सीखा कि हमें मिश्रित चाहिए, हमें सोलर एनर्जी भी चाहिए, हमको विंड एनर्जी भी चाहिए, हमको ओशन वेव से भी एनर्जी जनरेट करना है, जियो थर्मल एनर्जी को भी एक्सप्लॉइट करना है, बायोफ्यूल्स को भी एक्सप्लॉइट करना है। यदि हम ये सब कर पाते हैं, और ये बड़ा अच्छा है कि जैसे आपने कहा कि मोदी जी ने 2009 में गुजरात क्लाइमेट सेंटर से लेकर 2015 में जो हमारा COP 21 हुआ था
0: जी
1: पेरिस में, वहाँ ये इनिशिएटिव लिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो
0: जी
1: एक बहुत ही दूरदर्शिता थी उसके अंदर। और मुझे लगता है 140 कंट्रीज उसके मेंबर हैं, जिसे सनशाइन कंट्रीज कहते हैं। और बिल्कुल उससे काफ़ी बल मिला और हमें लीडरशिप एक मिली। और अब भारत सरकार जो है बिल्कुल बायोमास पे जो है पूरा फोकस है उनका, बायोफ्यूल्स। फिर वही मैंने कहा कि वो जो प्लांट्स लगाए जाएंगे मार्जिनल लैंड्स पे लगाए जाएंगे, और जो एनर्जी क्रॉप्स होंगी जहाँ पे कुछ नहीं उग रहा था, उसके साथ जो आपकी यूज कुकिंग ऑयल है आप उसको बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोमीथेन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो हमें मल्टी, जिसे कहते हैं प्रॉन्ग पॉलिसीज चाहिए, सिर्फ एक पे निर्भर नहीं होना है। सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, जितनी पॉसिबल है उसको एक्सप्लॉइट करना है और टू द मैक्सिमम करना है, क्योंकि क्लीन एनर्जी चाहिए, ग्रीन एनर्जी चाहिए, और हमारा टारगेट है टू अचीव एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेट जीरो इमिशन, ये हमारा गोल है।
0: सौर ऊर्जा में तो हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, क्या विंड एनर्जी के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं भारत में?
1: नहीं, चुनौतियाँ देखिए सोलर एनर्जी में तो एडवांटेज ये है कि क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री हैं, पूरे एक कोने से दूसरे कोने सनशाइन रहता है,
0: ब्राइट
1: ब्राइट सनशाइन रहता है,
0: जी
1: तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया, तो ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मगर विंड एनर्जी को हर जगह नहीं लगा सकते आप, उसके लिए आपको वहाँ पे विंड तेज चलेगी वहीं लगाया जा सकता है, या तो कुछ कोस्टल सिटीज हैं या फिर पहाड़ों के ऊपर आपको। और इसके लिए ये अगेन मौसम विभाग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे पास विंड एटलस है, सोलर एटलस है, जहाँ बताया जाएगा आपका कि भी कहाँ आपको लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। सोलर एनर्जी के लिए हमारे लिए प्लस पॉइंट है, विंड के लिए कोस्टल सिटीज पे लग सकता है, और कोस्टल सिटीज में भी हमें ध्यान रखना है कि हम लगाएंगे तो वहाँ साइक्लोन भी आते हैं, तो साइक्लोन आएगा तो वो नेचुरली बहुत तेज होगी स्पीड, 150-200, 250 की, तो उखाड़ भी सकता है। मगर हाँ, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम विंड स्पीड जो 250 आती है करीब, तो उससे जो है ज़्यादा की ताकत का हमें वो स्ट्रक्चर वहाँ खड़ा करना है, जिससे कि वो आ भी जाए तो रेजिलियंट होगा, वो टूटेगा नहीं।
0: विंड एनर्जी के लिए हवा की स्पीड एक आमतौर पर कितनी होनी चाहिए?
1: देखिए कम से कम 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो होनी ही चाहिए, तो
0: जी
1: वो आम ज़्यादातर जगहों पे आपको नहीं मिलती है, वो आपको कोस्टल सिटीज़ में मिलेगी, या हाइट, जैसे जब हाइट ऊपर जाते हैं हम लोग तो विंड स्पीड बढ़ती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता जाता है, और यदि आप 12 किलोमीटर पर चले जाएंगे तो हवाएं चल रही हैं 150 किलोमीटर की स्पीड से, जिसे
0: जी
1: हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, क्योंकि
0: जी
1: रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे तो पहाड़ है, पेड़ है, बिल्डिंग है, वो रेजिस्टेंस होता है तो विंड स्पीड कम हो जाती है, और जहाँ खुला इलाका होता है तो वहाँ विंड स्पीड ज़्यादा होती है।
0: तो
1: जी
0: हेडविंड और टेलविंड जो होता है वो 80-100 बहुत आम
1: आम
0: बात
1: बात
0: है।
1: है। और आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जेट स्ट्रीम का डिस्कवरी हुई थी, कि जब अमेरिकन प्लेन्स जब कहते हैं जा रहे थे कहते हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो वो फास्ट जा पा रहे थे, और जब वो ईस्ट से वेस्ट लौटते तो उनको ज़्यादा समय लगता था, तो उन्होंने देखा क्यों हो रहा है, क्योंकि विंड उनको जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट जाने में मदद करती थी उनको, और जब आते थे तो अगेंस्ट
0: जब
1: विंड
0: भी
1: मिलती थी।
0: हेडविंड होगा तो वो
1: बिल्कुल
0: ज्यादा वक्त लगेगा। आनंद शर्मा जी, विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगले दशक में भारत की हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? क्या नवीकरणीय ऊर्जा, आधुनिक मौसम पूर्वानुमान, जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे और जन भागीदारी को एकीकृत कर यानी इंटीग्रेट करके भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर सकता है?
1: नहीं, बिल्कुल कर सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात है, एक तो हमने लीडरशिप तो ली, और एक और भी ध्यान रखिए, आज से 1000 साल पहले भी भारत जो था, देश जो था, हमारा जिस तरह का कल्चर था, हम लोग कंजर्वेशन में, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन में लीडर थे,
0: जी
1: पर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है, और अब फिर दोबारा से हम एक इंटरनेशनल लेवल पे लीडरशिप का रोल अब निभा रहे हैं, और जिस तरह से हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, हम डेफिनेटली जो है इस, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की समस्या हो, चाहे सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ने का प्रयास हो, उस सब में हम बिल्कुल कहते हैं सक्षम हैं। मगर हाँ, प्रयास ये है कि लोगों को, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जब तक हम पर्यावरण से कनेक्ट नहीं करेंगे, उनको ये समझाएंगे नहीं पूरे साइकिल को कि किस तरह से काम करता है, और ग्रीन वॉशिंग ना हो, मॉनिटरिंग रेगुलरली हो और इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे उसके लिए आपको जितनी सब्सिडी देनी है सब्सिडी दीजिए, टैक्स रिलीफ देना है टैक्स रिलीफ दीजिए, मगर हर कॉस्ट पे हमको पर्यावरण को बचाना होगा, कि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, एनवायरमेंट सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी।
0: हर कॉस्ट पर पर्यावरण को बचाना होगा और तभी हम विकसित भारत 2047 की दिशा में बहुत

0: तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। आज की चर्चा में हमने जाना कि हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा केवल भविष्य की जरूरत नहीं बल्कि वर्तमान की अनिवार्यता भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद शर्मा जी, आप अतिरिक्त महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक श्री अरुण त्रिपाठी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 15वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पर्यावरणविद आनंद कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:46 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आपके लिए कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत रचना स्वानंद किरकिरे और विधु विनोद चोपड़ा की और संगीत दिया है शांतनु मोइत्रा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत महेंद्र कपूर और साथियों के आवाज़ों में सुनिए फिल्म उपकार का ये गीत। गीत रचना मनोज कुमार की और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए। AR रहमान की आवाज़ में फिल्म स्वदेश का गीत रचना जावेद अख्तर की और संगीत दिया है AR रहमान ने।

0: श्रोताओं, अभी आप कुछ फिल्मी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज आप सभी के समक्ष ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आपके लिए आपके शहर में आयोजित किया जा रहा है सेकेंड एडिशन ऑफ शेखो एफ इंडियन एयरफोर्स मैराथन, जिसको सिम के नाम से जाना जाता है, सिम 2026। और इस मैराथन के बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो हैं सेक्रेटरी एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, आप हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सेखो इंडिया एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स मैराथन, और आप ऑनररी सेक्रेटरी जनरल सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी भी हैं। तो हम तहे दिल से सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी का। सतेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गीतिका जी।
0: और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, अपने जो श्रोता हैं उन तक पहुंचाने वाले हैं कि कैसे भले ही इस साल नहीं अगले साल से ही वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाल ही में आपने सुब्रतो कप इसका आयोजन किया, 65th एडिशन था, 18 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक सुब्रतो कप चला। जिस तरह से सुब्रतो कप आयोजित किया जा रहा है, और आकाशवाणी के माध्यम से भी हम नित्य प्रति अपने श्रोताओं को बताते हैं कि किस तरह से टीम्स खेल रही हैं, कौन सी टीम्स हैं जो जीत रही हैं, और किस तरह से जोश का माहौल वहाँ बना होता है मैदानों में, यहाँ हम आकाशवाणी के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुँचाते हैं। आप ये हमें बताएं कि इस साल का जो सुब्रतो कप आपने आयोजित किया, यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो हमेशा कार्यरत रहता है, स्पोर्ट्स को जन जन तक पहुँचाता है, किस तरह से रहा ये 65th एडिशन सुब्रतो कप का?
1: 65th एडिशन बहुत ही रोमांचक था। जैसा आपने कहा, 18 अगस्त को शुरू हुआ। हम ये फुटबॉल टूर्नामेंट 3 कैटेगरी में कराते हैं, अंडर 17 गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज़ एंड अंडर 15 बॉयज़। तो अंडर 17 गर्ल्स 18 को अगस्त को शुरू हुआ था दिल्ली में, और उसका 27 अगस्त को समापन हुआ। झारखंड की टीम, जो एक रिमोट लोकेशन से आती है गुमला, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और वो जीती। जो अंडर 15 बॉयज़ था वो 1 से लेकर 9 सितंबर बेंगलुरु में हुआ, जब वेस्ट बंगाल की टीम जीती। और जो ग्रैंड फिनाले था अंडर 17 बॉयज़, वो 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक हुआ। ग्रैंड फिनाले हमारा अंबेडकर स्टेडियम में होता 25 सितंबर को, और सीआईएससी की टीम जीती। मैं सब श्रोतागणों को बताना चाहूँगा कि ये लगता एक महीने का हमारा टूर्नामेंट है, बट इसकी जो तैयारी है वो पिछले 6 से 7 महीने पहले शुरू हो जाती है। इसमें हर स्टेट की टीम पहले तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल के फाइनली स्टेट की एक टीम आती है, स्कूल की टीम, जो यहाँ परफॉर्म करती है। तो इस पूरे, अगर आप देखें, ये स्प्रेड जो है इस टूर्नामेंट का, वो एक महीने का नहीं, कम से कम 6 से 7 महीने का है। तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, और हम एज ऑर्गेनाइजर तो हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत रोमांचक था
0: जी। कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ जब आप बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज होता है, ऊर्जाओं का एक्सचेंज होता है, और हमारे युवा भी, बच्चे भी चाहते

0: कल चलकर फोर्सेस ज्वाइन करेंगे, इंडियन एयरफोर्स में हम पायलट बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, और इसी मुहिम के साथ इंडियन एयरफोर्स हमेशा कार्यरत रहता है। जैसे कि हमने कहा कि स्पोर्ट्स की दुनिया में तो बच्चे नाम कमा रहे हैं, और हमारे स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट कहीं ना कहीं हम फोर्सेस से ही सीखते हैं। अब बात करते हैं कि सीखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप कृपया करके हमें फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सखों के बारे में जरूर बताएं। निश्चित रूप से उनका इस मैराथन से ताल्लुक जरूर है, आप कृपया करके हमें बताएं कि उनका जो योगदान रहा भारतीय वायुसेना अगर उसकी बात की जाए अतुलनीय रहा, मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया, और आपके मुख से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपकी बात जन जन तक पहुंचे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो एक मिसाल हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, नहीं पूरे इंडिया के यूथ के लिए। वो बहुत ही यंग थे, 25-26 साल के थे जब उन्होंने 1971 की वॉर में हमारे दुश्मन के जहाज़ों को बड़ी बहादुरी से गिराया, उनसे लड़ाई करी, मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र मिला। वो अकेले ऐसे ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स के जिनको परमवीर चक्र से वो सम्मानित हैं। तो यही एक उनको यूनिक चीज़ बनाती है जिसके इनके नाम से और इनके जो इनकी पदवी है उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी याद में हमने ये सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन शुरू करी।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। अगर हम इस सेकेंड एडिशन की बात करें, और सेकेंड एडिशन अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी उम्मीद, और कहते हैं कि जब हम अंतिम छोर में होते हैं ना तो हम अगले की तैयारी करना शुरू करते हैं। अगर हम रेट्रोस्पेक्शन करें पहले एडिशन का, तो पहला एडिशन उसकी क्या खास बात थी और इस एडिशन में क्या कुछ खास होने वाला है आपके माध्यम से जानना चाहते हैं।
1: पहला एडिशन हमारा 2 नवंबर 2025 को हुआ था, दिल्ली मेन सेंटर था रेस के लिए, पर हमारे बाकी जो भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशंस हैं उनमें 45 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री, ये मैराथन ऑर्गेनाइज कराई गई थी सेम डेट पे सेम टाइम पे। और तो रनर्स की जो टोटल अगर आप नंबर्स बोलें दिल्ली में वो 12,000 थे, और ऑल ओवर इंडिया को अगर हम पूरा समअप करें तो अराउंड 45,000 People ran on that day.
0: क्या बात है, क्या बात है। और उसी उम्मीद को आप आगे, यानी कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना, उसे कहते हैं ना कि हम मिसाल कायम करते हैं, और फिर उस जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं फिर सोचते हैं इससे बेहतरीन आगे और किया जाएगा। लाइफ का यही दस्तूर है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। अगर अब सेकेंड एडिशन की बात की जाए, सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन जिसे हम सिम के नाम से भी जानते हैं, इस एडिशन में क्या कुछ खास है, अपने आप में परिपूर्ण है, मैराथन की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन एक सवाल और मन में मेरे जहन में आता है सेकंड एडिशन के बारे में बात करने से पहले, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है जो ये मैराथन हर साल कराई जा रही है?
1: ये कंसेप्ट जो था हमारे प्रेजेंट चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, वो अपने आप में एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं, तो उनका विजन था कि सेखो साहब बहुत यंग थे जब उन्होंने शहादत दी, तो चाहते कि जो एयरफोर्स का यूथ है और इंडिया का यूथ है वो कोलैबोरेट करें, इसलिए एयरफोर्स मैराथन लेके आए जिसमें डिफेंस पर्सनल भी भागते हैं और सिविलियंस भी भागते हैं। तो एक उद्देश्य है कि फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ इसको मूव करना है। एयरफोर्स में तो यूनो के एक सिस्टम है जहाँ पे आपको फिटनेस पैरामाउंट है, पर हम चाहते हैं कि ये अमेलगमेट करें हम सिविलियंस के साथ भी, एंड इसको एक यूनिक प्लेटफॉर्म देके इसको आगे बढ़ाएं।
0: जी, और कहीं ना कहीं एक सिविलियन लाइफ के साथ कहते हैं ना कम्युनिकेशन, संवाद, मुझे लगता है शायद इस मैराथन के माध्यम से आसानी से हो जाता होगा।
1: बहुत लोग जुड़ते हैं और जो जुड़ जाते हैं वो सिर्फ जुड़ के ही रहना चाहते हैं।
0: जी बहुत बढ़िया। अब अगर जब सेकेंड एडिशन की हम बात कर रहे हैं सिम के, तो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किन किन राज्यों में हो रहा है, इसके बारे में भी हमें जानकारी दें।
1: जैसे कि मैंने बताया सिम 4 अक्टूबर 2026 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली एडिशन होगा, और हमने कुछ मेजर सिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया जो हमने सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे डिफेंस पर्सनल भी और सिविलियंस भी भागे हैं। अगर आप नॉर्थ से स्टार्ट करें तो नॉर्थ में चंडीगढ़ मेजर सिटी है, ईस्ट में गुवाहाटी है, अगर आप वेस्ट साइड आएँ तो मुंबई और जोधपुर है, आप सेंट्रल साइड आएँ तो ग्वालियर है, और अगर डाउन साउथ इंडिया में जाएँ तो बेंगलुरु एंड तिरुवनंतपुरम है। ये हमारे मेजर लोकेशंस हैं जहाँ रन होगा, बट ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, और बड़े और छोटे एयरफोर्स स्टेशन में भी ये रन साइमल्टेनियसली कंडक्ट होगा, दिल्ली प्लस

0: और अक्रॉस इंडिया जैसा हमने पिछली बार किया था।
1: बहुत खूब। 8 अक्टूबर हम सभी के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए, ना केवल वायुसेना के लिए, हमारे लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मैराथन उसका प्री सेलिब्रेशन है?
0: आप बिल्कुल कह सकते हैं। हमारा एयरफोर्स डे है जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। इस बार हमारा 94th एयरफोर्स डे है एंड एयरफोर्स डे वीक इज़ गोइंग ऑन, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन है।
1: बहुत खूब, आपने बोला 94th हम एयरफोर्स डे मनाने जा रहे हैं, तो इस मैराथन से हमारी क्या उम्मीदें हैं?
0: देखिए, पिछली बार जैसा मैंने पहले भी कहा कि पिछली बार हमारे 45,000 रनर थे, तो इस बार हमारे हमें उम्मीद है कि नंबर डबल होगा और हम जो 94th का फिगर है, 94th एयरफोर्स डे, हम उसके उस नंबर को पाना चाहेंगे।
1: जब हौसले बुलंद हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, और भारतीय वायुसेना इसी बात की मिसाल है, और इस मिसाल को कायम कर रही है 2nd एडिशन ऑफ सेखों इंडिया एयरफोर्स मैराथन 2026, यानी कि सिम 2026 इसका आयोजन किया जा रहा है 4 अक्टूबर को। विंग्स ऑफ करेज, जी, जब हमारे ये जाबाज हवा में उड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय धरती से परचम लहराते हैं जीत का।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कन्याल, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो आपको जानकारी दे रहे हैं सेकंड एडिशन ऑफ सिखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026, जिसे आप सिम 2026 के नाम से भी पुकार सकते हैं। और जब जब आप पुकारेंगे तब तक

0: भारतीय वायुसेना आपके साथ होगी और आपके लिए निरंतर अविरल बहती रहती है, जैसे कि हवा, जैसे कि परिंदे, और भारतीय वायुसेना की ये मुहिम आपके लिए ही है बस। हम जानना चाहते हैं आपसे सत्येंद्र जी कि बहुत से लोग सुनने के बाद आतुर हो रहे होंगे कि काश हम भी क्योंकि सिविलियंस के लिए ये भी मैराथन खुली हुई है, हम भी कैसे इसका हिस्सा बने। तो कैसे हिस्सा बन सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशंस अभी भी ओपन हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें।
1: ये जो मैराथन की रजिस्ट्रेशन थी वो हमारी वेबसाइट है seikhoifmarathon.in, आपको उस पे साइट पे जाके रजिस्टर करना होता है। वो हर साल ये साइट कांस्टेंट यही रहेगी, लास्ट ईयर भी यही थी, कंटिन्यू रहेगी। अगर इस बार एडिशन की बात की जाए सिम 2026 की, तो 1 जुलाई 2026 को रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी और 15 सितंबर को ये रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। तो हमें 10 दिन चाहिए होता है इस इवेंट को कराने के लिए, तो 15 सितंबर को हमने बंद करके अब वी आर फोकसिंग ऑन टू कंडक्ट द इवेंट, प्रिपरेशन ऑफ द इवेंट।
0: जी जी, तो कहते हैं कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह फर्स्ट एडिशन सफल रहा, हम कामना करते हैं कि सेकंड एडिशन, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो पूर्ण हो। और कहते हैं कि जब हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है तो हमें इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिंदगी यानी कि भारतीय वायुसेना आपको फिर मौका देगी, थर्ड एडिशन में आप ज़रूर हिस्सा ले पाएंगे। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि आप साइट पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अर्जित कर सकते हैं, तो अगले साल जब आप हिस्सा बनना चाहें तो आप साइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन कर अगले एडिशन का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जानकारी हमेशा काम आती है, आज नहीं तो कल ज़रूर। अब अगर बात की जाए वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंड एडिशन में, वो भी बहुत उत्सुक होंगे कि हम इस महाआयोजन का हिस्सा बन रहे हैं, क्या क्या हमारे लिए वहाँ फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, किस तरह से हम रुक करेंगे, तमाम बातें जहन में चलती हैं, उन लोगों के लिए क्या प्रावधान है?
1: हाँ, अब मैं आप जो करंट सिचुएशन है मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। आज हमारा एक्सपो स्टार्ट हो गया है मैराथन का, जो सुबह 11 बजे से लेकर 7 बजे तक होगा तेजस ग्राउंड रेस कोर्स में, और कल भी होगा 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो जिनकी बिप कलेक्शन और बाकी जो हमारे गुडी बैग्स हैं वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। रेस डे जो 4 अक्टूबर को है, उसमें एक तो इसमें यूनिक है, हमने दिल्ली मेट्रो से टाई अप किया हुआ है, तो सबको हर जो जितने भी रनर्स आ रहे हैं उनको हम एक फ्री टिकट दे रहे हैं दिल्ली मेट्रो की। वो येलो लाइन, वायलेट लाइन और ब्लू लाइन, इन तीनों को उसकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंच सकते हैं जहाँ पे इवेंट है। 4:30 फर्स्ट फ्लैग ऑफ, 5:30 है, तो 4:30 के आसपास आप वहाँ पहुंच जाएं। और एज़ फार एज़ फैसिलिटी इज़ कंसर्न, हम जैसे आप एंटर करेंगे आपके लिए एसी वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, सेंटर आपके लिए सारे हाइड्रेशन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल है। एन रूट आपको हाइड्रेशन, एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी बार एंड अ प्रॉपर मेडिकल कवरेज थ्रू आउट द रूट एंड विद इन द एरिना ऑफ JLN विल बी अवेलेबल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स।
0: जी, एक्सपो में और कुछ क्या खास होने वाला है, क्योंकि जब हम एक्सपो जाते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि शायद हम भारतीय वायुसेना से और भी ज़्यादा रूबरू हो पाएंगे, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अर्जित करने के लिए हम उस गंतव्य तक ज़रूर पहुँचते हैं। तो वो लोग जो एक्सपो का हिस्सा बनेंगे वो निश्चित रूप से मैराथन के बारे में जानकारी तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या और कुछ खास है जिसको देखने के लिए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पहुँचें?
1: बिल्कुल, एक्सपो एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अगर लास्ट टाइम गए हमने एक ओपन एरिया में रखा था, पर इस बार हमने एक ह्यूज स्ट्रक्चर, जर्मन टेंट्स लगाए हैं, एयर कंडीशनड है वो। अगर मैं आपको फ्लो के थ्रू ले जाऊं, आप जैसे एंटर करते हैं तो एक वॉल लगी हुई है जहां पे सारे पार्टिसिपेंट जो इस बार पार्टिसिपेट करें, एक एक इंडिविजुअल का नाम वहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ चेक कर सकते हैं आई एम पार्ट ऑफ दैट इवेंट और नॉट। अंदर स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट स्टॉल्स हैं, हमारा एयरफोर्स का स्टॉल भी है, हमारी बैंड की परफॉर्मेंस लाइव है, और क्राउड बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। मैं अभी 2 घंटे पहले की बात बताता हूँ, लोग इंडियन एयरफोर्स की ट्यून्स पे वहाँ डांस कर रहे थे, दे वर इन्जॉइंग द फुल फ्लो। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस है, यू मस्ट गो। दूसरा, एक इंडियन एयरफोर्स फैसिलिटी दे रही है, तेजस ग्राउंड इज जस्ट नियर टू लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम बस की फैसिलिटी दे रहे हैं। जो लोग अपना मेट्रो से आ रहे हैं तो वो बस से हम कम्यूट कराएंगे, उनको ड्रॉप करेंगे मेट्रो स्टेशन से टू द वेन्यू एंड बैक, तो इस फैसिलिटी को जरूर अवेल करें।
0: जी, एक प्रश्न और यहाँ उठता है कि क्या ये एक्सपो

0: सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए ही खुला हुआ है या आम जनमानस जो सेकेंड एडिशन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं पर उनके मन में जिज्ञासा है कि चलो तेजस ग्राउंड चलते हैं और इस एक्सपो के माध्यम से ज़्यादा जानकारी अर्जित करते हैं, क्या वो लोग भी वहाँ पहुँच सकते हैं?
1: इन्हें दिल बहुत बड़ा है, हम ओपन अपने दोनों ओपन हैंड से सबको वेलकम करते हैं।
0: आसमान जितना बड़ा
1: आसमान स्पेस तक हम आउटरीच करते हैं, तो आए और इस एक्सपीरियंस का मजा लें।
0: वाह क्या बात है, तो आपके लिए ये बहुत ही प्यारी सुखद जानकारी। भले ही आप सेको इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 इसका हिस्सा ना बन पाए हो, समय पर रजिस्ट्रेशन ना कर पाए हो, लेकिन जैसा कि विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना का दिल आसमान से भी कहीं ज्यादा बड़ा, कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट, जिसका कोई अंत नहीं वो अंतहीन है, वो है भारतीय वायुसेना। तो दिल बहुत बड़ा है, आप जाएं और कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा जरूर बनेगी, जरूर उठेगी कि काश मैं भी भारतीय वायुसेना में होता, या काश मेरे बच्चे भी कल भारतीय वायुसेना में अपनी सर्विसेज दें। और ये आचार व्यवहार का एक सुखद माध्यम है, जिससे मोहब्बत की जाती है उससे मिलने जरूर जाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे आप तेजस ग्राउंड इस एक्सपो को देखने के लिए

0: कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के आज के संग में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी से साझा करना चाहेंगे दोबारा सेकंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 यानी कि सिम 2026 इसका आयोजन किया जा रहा है 4 अक्टूबर को। और इसके संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो सेक्रेटरी हैं एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में। आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन और आप ऑनररी सेक्रेटरी जनरल हैं सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी के। तो आपका पुनः स्वागत करना चाहते हैं हम सतेंद्र साहब। अब बात ये उठती है कि हम ना कभी कभी बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कहीं जाने से पहले। वो सारे पार्टिसिपेंट्स जो इस मैराथन का हिस्सा बनने वाले हैं, एक दिन पहले ही ना मन में कहते हैं कि पेट में जो तितलियां हैं वो उड़ने लगती हैं,
1: बटरफ्लाइज
0: कि कल सुबह जल्दी उठना है, पहुंचना है, क्या होगा, कैसे होगा, उन तमाम लोगों के लिए क्या प्रावधान है?
1: अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी एक्सपो में अगर आप जाओ तो वहाँ पे हमने सारा लेआउट्स, टाइमिंग्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रहे हैं, पर नेवरदलेस उसके बाद भी हम एक ट्रिगर मैसेज थ्रू व्हाट्सएप एंड एन ईमेल सबको भेजेंगे बिफोर द इवेंट कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, क्या क्या एनरूट होने वाला है, पूरी जानकारी उसके अंदर होगी तो वो अपनी बटरफ्लाइज सेटल कर सकते हैं एडवांस में।
0: क्या बात है, और अपनी बटरफ्लाइज को वहाँ वहीं उड़ाएं मैदान जंग कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम फोर्सेस का हिस्सा बनते हैं, फोर्सेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो वो सारी तितलियाँ उड़ने के लिए आतुर हो जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब सवाल ये उठता है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो निश्चित रूप से 4 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे समय से पहले ही, लेकिन समय क्या है, किस वक्त रिपोर्ट करना है?
1: हाँ, पहला जो हमारा फ्लैग ऑफ है 21 किलोमीटर का, वो 5:30 बजे है, तो हमने जो रिपोर्टिंग टाइम नॉर्मली 1 घंटा पहले रहता तो 4:30 उनको रिपोर्ट करना है, वो रिपोर्ट करेंगे और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर आएंगे, उसके बाद उनका जुम्बा सेशन होगा, वार्म अप होगा और फिर 5:30 फ्लैग ऑफ होगा।
0: क्या बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जिनके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर कुछ है या अपने वेरिफिकेशन के लिए, उनको क्या दस्तावेज दिखाने होंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे भी पहुंचे गंतव्य पर जो ये कहें कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन आप भारतीय वायुसेना के परिसर, उस वक्त भारतीय वायुसेना का परिसर है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, या वो अन्य गंतव्य जो अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है ये मैराथन, तो वहाँ पर सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए क्या फैसिलिटी
1: हाँ,
0: है?
1: आज जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक्सपो चल रहा है, तो यहाँ बिब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें नाम और उनके डिटेल्स होते हैं, तो ये सब बिब सारे रनर्स को दी जाती है, और एक मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन है जो उनको उस दिन अपनी टी शर्ट के साथ पहन के दौड़ना है, तो जो उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो रीड करता है मूवमेंट्स के लिए, तो ये बिब जो पहन के आएंगे उनको ही जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होंगे अलाउ करेंगे, अदरवाइज बाकी लोग एंटर नहीं कर पाएंगे।
0: जी, तो आपके लिए प्रतिबंधित है अगर आपके पास, जैसा कि हमें सतेंद्र साहब ने कहा, विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर साहब ने, कि अगर आपके पास अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए बिब नहीं है तो आप अंदर एंट्री नहीं पा सकते हैं, लेकिन उम्मीद कायम रखिए अगले साल आपको फिर मौका मिलेगा। अगर आप इस मैराथन रेस की बात की जाए तो इसकी यूनिकनेस क्या है, क्या खास बात है?
1: ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक रेस, मैं इसलिए कहूँगा, मैराथन्स होती हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड होती हैं, पर ये मैराथन के साथ एक, इसको हम इवेंट काउंट करेंगे बिकॉज ये शोकेसिंग इंडियन एयरफोर्स की भी है। आज हम सिविलियन वर्ल्ड के साथ मिलके कदम से कदम बढ़ा रहे हैं, अगर हम उनको कुछ दें तो हम इंडियन एयरफोर्स की माइट भी उन्हें दिखाना चाहते हैं। तो नॉर्मली अगर आप कोई मैराथन देखो, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आउटर एरिया से हो जाती है, वहीं पे से शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है, लोग अपना मेडल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, थोड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम होता है और अपने घर चले जाते हैं, बट ये एक टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जब लोग दौड़ के वापस आएंगे, अपना मेडल लेंगे, अपनी रिफ्रेशमेंट्स लेंगे, तो उन सबको हम अशर करेंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे आपको इंडियन एयरफोर्स का एक्चुअल रौद्र रूप देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्काई डाइविंग। हमारी एयर वॉरियर ड्रिल टीम है वो परफॉर्म करेगी, हमारी बैंड है वो परफॉर्म करेगी, एंड मैनी मदर मोर एक्टिविटीज। तो आप एक इवेंट है जो आपको मिस आउट नहीं करना है, आपको सिर्फ रेस नहीं, रेस के पोस्ट रेस के जितने इवेंट्स हैं वो भी जरूर देखने।
0: मैं सोच रही हूँ कि मैंने कुछ मिस कर दिया है समय पर रजिस्ट्रेशन ना करवा कर।
1: जैसा आपने कहा कि हमेशा

0: मौका मिलता है।
1: बिल्कुल। और भारतीय वायुसेना, जैसा कि आपने कहा कि विशाल है और आसमां की तरह है, आसमां को छूने जैसी बात है, तो ये आपको मौके देती रहती है और निश्चित रूप से अगले एडिशन और भी स्वागत होगा। लेकिन इस एडिशन की अगर बात की जाए, और विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी ने कहा है कि बहुत यूनिक है, इसका हिस्सा बनिए और फिर देखिए जो अनुभूति आप अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे, आप ताउम्र उसको दोहराएंगे और कहेंगे कि अगले एडिशन में भी हम हिस्सा ज़रूर बनेंगे इस मैराथन का। अब बात आती है, जैसे कि आपने स्वयं बताया कि अलग अलग स्टेशन पर एक साथ ही कार्यक्रम होने वाला है, ये इवेंट होने वाला है, तो क्या सच में बताइए एक साथ होने वाला है?
0: ये बिल्कुल, ये वो तो आप कहते हैं ना, एयरफोर्स प्रिसीजन पे बिलीव करती है। जो हमारा मिशन है वो प्रिसीजन है, तो हमारा मिशन यही है कि एक ही टाइम पे शुरू होना, एक ही टाइम पे ख़त्म होना, एक ही दिन करना। तो ये हमारे प्रिसीजन को हम सबको, दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम इतना, हमारा जबरदस्त प्रिसीजन है कि हम उसको आउटरीच कर सकते हैं। बेशक हम कोलोकेटेड ना हो, अक्रॉस इंडिया स्प्रेड हो, पर हम उसको अचीव कर सकते हैं।
1: ठीक उस तरह जिस तरह से हमारा एक कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स है, जो ठीक 4 बजे अलग अलग केंद्रों पर सुनाई देता है, तो आपके और हमारे बीच में एक समानता तो यह हो गई कि हम प्रेसिशन यानी कि डिसिप्लिन, समय को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और फोर्सेस की यही खास बात है और आकाशवाणी की भी यही खास बात है कि समय हमारे लिए सर्वोपरि है, सही समय पर बड़ी बड़ी जंग जीती जा सकती हैं।
0: जब भी हम आई थिंक एक मंच पे एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे
1: वह
0: हैं।
1: क्या बात है। और हम चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, हम यूं ही एयरफोर्स भारतीय वायु सेना का परचम लहराते रहे। परचम आप लहरा रहे हैं, लेकिन उस परचम को हम अपने हाथों में लेकर दुनिया तक पहुंचाएं। अब एक बार फिर से बात आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा और अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो है मैराथन के लिए लोग भागेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे मन से तन से, और यही सोचेंगे कि हमें जीत हासिल करनी है। एक बार दोबारा से हमारे सभी सुनने वालों को ना इन कैटेगरीज के बारे में आप बताएं, और ये भी बताएं कि जब हम किसी प्रतिस्पर्धा में का हिस्सा बनते हैं तो जीत में हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, वो अवार्ड्स जो इस मैराथन के माध्यम से उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी जिक्र करें।
0: हाफ मैराथन्स नॉर्मली 3 कैटेगरी में होती है, 21,000, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। 21 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर टाइम रन होता है, कंपटीशन होता है, 5 किलोमीटर नॉर्मली फन रेस होता है। पर हमने ऐसा नहीं किया, हम चाहते हैं तीनों कैटेगरी में कंपटीशन हो। तो हमारे 21K, 10K और 5K तीनों कॉम्पिटिटिव हैं, और तीनों में जो भी ओपन कैटेगरी एंड डिफेंस कैटेगरी में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे सबको प्राइज़ मिलेगा। एंड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वहीं पे होगी JLN में, एंड एक अच्छा अमाउंट है, 25 लाख के आसपास हमने ईयरमार्क किया है फॉर द इवेंट। तो ऑल द बेस्ट फॉर द पार्टिसिपेंट।
1: डिफेंस पर्सनल सिविलियंस के लिए अलग अलग अवार्ड कैटेगरीज हैं।
0: हर हर रेस में डिफेंस के लिए अलग है और सिविलियंस के लिए अलग है। जो जिन्होंने जैसे डिफेंस ने रजिस्टर किया है तो वो उसमें कॉम्पीट करेंगे, और सिविलियंस का जो हुआ है उसमें कॉम्पीट करके दोनों को अलग अलग प्राइज मिलेंगे। कैटेगरीज दोनों के लिए अलग अलग है
1: जी, क्योंकि हमारे भारतीय वायुसेना के या डिफेंस पर्सन्स जो हैं वो तो सक्षम हैं, और किसी भी कहते हैं जंग पर लड़ना उनके लिए नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जहां हमने ये सोच लिया कि बस ये जीत हमारी है, वहाँ आधा काम खत्म, हमें हमेशा तैयार रहना है, हमेशा अपने आप को गियर अप करना है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं जानना चाहती हूँ, जब भी कोई पार्टिसिपेंट रजिस्टर करता है तो उस वक्त उसकी शारीरिक सक्षमता कितने मायने रखती है, क्या उसे कोई मेडिकल फिटनेस फॉर्म सबमिट करना होता है?
0: ये अगर आप फॉर्म देखें तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे मैराथन्स की, कि उसको ही और शी हैज़ टू टेल के ही इज़ मेडिकली फिट टू अंडरगो। उसको अपने सेल्फ डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, और हम उसको कंसिडर करते हैं, अगर कोई इंसान सेल्फ डिक्लेयर कर रहा है तो वो फिजिकली फिट है।
1: जी, सबसे पहले अपने शरीर को हम स्वयं जानते हैं, और जब हम ये मानते हैं कि हमें हमें कोई परेशानी नहीं, तो हम यही कहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं। अब यही सवाल मैं डिफेंस पर्सनल्स के संबंध में पूछना चाहूँगी, वो डिफेंस पर्सनल जो इस इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं उनका भी वेरिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस पर्सनल्स ऐसे भी होंगे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब भले ही सेवा में नहीं है, फोर्सेस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सेवाओं का हिस्सा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन किस माध्यम से होता है?
0: ये इसको स्मूथली हम ईज करने के लिए हमने एक्सपो में एक काउंटर्स बनाए हैं, वेरिफिकेशन काउंटर्स, जहाँ पे हमारे सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस वो आ सकते हैं। वो अपना अपना आईडी कार्ड दिखा के, वो अपने बिप

0: कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोसेस बहुत स्मूथ है, इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप जाएंगे वहाँ पे बहुत ईज है, डिफरेंट काउंटर्स हैं, आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं।
1: वाह क्या बात है, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लेकिन हम यही कहेंगे कि यहाँ आपको आसमां छूने का मौका दिया जा रहा है, आप बिल्कुल बिना किसी भय के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि भारतीय वायुसेना आपके साथ है, आपके लिए कार्यरत है और आपको ये सुनहरा मौका दे रही है कि आप हिस्सा बन सके सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026।

0: व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो आज मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी एयरफोर्स स्टेशन में बैठी हुई हूँ, और भले ही हमारे साथ यहाँ पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी यूनिफॉर्म में हैं, पर ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इस नीली पोशाक ने ना अपनी रंगत स्टूडियो के अंदर बिखेरी हुई है और मैं इस रंग में बहती चली जा रही हूँ और आसमान के किसी छोर को ना पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ. आपको दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं. और भारतीय वायुसेना जो हर साल, यूँ कहूँगी मैं कि हर वक्त यही कोशिश करती है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से सभी भारतवासियों को जोड़े, और इसकी पहल, इसकी मुहिम सुब्रतो कप और अब सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन के माध्यम से की जा रही है. ये सेकेंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन का आप खुद साक्षी रहे हैं, किस तरीके का माहौल होता है?
1: अगर मैं कहूँ, मतलब वो कहते हैं गूज़बम्प्स, तो ये एक पहला वर्ड होगा. अब मैं अपने श्रोतागण को बोलना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ के माध्यम से इमेजिन करें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की हरी घास, ओपन एरिना, वाइट फ्लड लाइट वहाँ पे है. हमारी जो टी शर्ट की थीम है वो वाइट कलर है विथ ट्राई कलर थीम. तो जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में तारे होते हैं ना, एक तारों की पूरी चादर बिछी हुई है, तो अगर कोई हाइट पे खड़ा होकर देखे तो उसे ऊपर भी तारे दिखेंगे और ज़मीन पे भी तारे दिखेंगे. तो ऐसा माहौल होता है कि मन करता है बस ये देखते ही जाए.
0: वाह क्या बात है. आपने कहीं ना कहीं कहते हैं कि रेडियो के माध्यम से वैसे भी हमारे जो श्रोता है ना, उनकी आंखों के आगे चित्र घूमने लगते हैं. मेरी आंखों के आगे साक्षात आपके शब्दों से चित्र बनने लगे हैं और मैं महसूस करने लगी हूँ कि कितना भव्य माहौल वहाँ होने वाला है. आप खुद को महसूस करने वाले हैं उन हवाओं में, फिजाओं में, जिनकी कल्पना आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने भर मात्र से कर ली होगी. भले ही आपके मन में द्वंद्व भी होगा, परेशानी भी होगी कि हम क्यों इसका हिस्सा ना बन पाए, क्योंकि हम कहते हैं कि जिंदगी आपको दूसरा मौका जरूर देती है, तो तीसरे एडिशन का आप हिस्सा जरूर बन पाएंगे. अब बात करें और जानकारी हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम

0: कर सके। हमें भारतीय वायु सेना पर पूरा पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्यादा हमारे जो भारतीय हैं वो जुड़ेंगे और अगली मर्तबा फिर आएंगे। अगर हम बात करें वहाँ जिस तरह की फैसिलिटीज आपने जैसे बताया कि यहाँ पे की गई हैं, रूट्स और मैप्स, उसके लिए क्या हमारे पास वहाँ पर प्रावधान है? कितना आसान, कितना सरल है जब हमारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ दौड़ेंगे, चलेंगे, भागेंगे, उनके लिए आप बताएं।
1: जो रेगुलर रनर्स है, अगर जे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देखा जाए तो 21, 10 और 5 के का स्टैंडर्ड रूट रहता है। इसकी पूरी जानकारी हमने एक्सपो में दे रखी है, बट ये सारी जानकारी थ्रू मेल भी लोगों के पास गई हुई है। फिर मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन दोबारा बताना चाहूँगा कि 21 किलोमीटर जो है वो पूरा ल्यूटेंस डेली में घूमते हुए कर्तव्य पथ पर जाती है, और जब वापस हम आते हैं तो जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है, उसके राउंडल के थ्रू आती है। तो एक यूनिक चीज़ है। नॉर्मली रेसेस वहाँ से नहीं होती हैं, पर हमने परमिशन ली है वहाँ की, तो आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देंगे। और जो 21 किलोमीटर के रनर्स होते हैं, नॉर्मली 7, 7:15 के आसपास वहाँ से निकल रहे होते हैं और उस टाइम सनराइज़ हो रहा होता है, तो वो एक ऐसा पिक्चरिस्टिक माहौल होता है कि आपको थकावट भी आपकी दूर हो जाती है और आनंदित हो जाते हैं। एज़ फार एज 10K गोज, तो 10 किलोमीटर भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से निकल के लोधी रोड के एरिया के आसपास सर्कुलर रूट है, वहाँ पे करते हुए वापस आएगी, और 5 किलोमीटर भी उसका जस्ट हाफ है, उसी रूट पे रहेगी।
0: बहुत खूब। तो आपके लिए पूरे प्रावधान, पूरी फैसिलिटी भारतीय वायुसेना ने कर रखी है, बस आप उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। अब एक ना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आपकी इजाजत हो पूछ लूं।
1: अरे बिल्कुल।
0: वो जो गुडी बैग आप देने वाले हैं, हाँ, उसमें पार्टिसिपेंट्स को क्या क्या मिलने वाला है? कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले मन में उत्सुकता होने लगी कि क्या क्या मिलने वाला है।
1: काफी कुछ मिलने वाला है। अगर आप गुडी बैग को ही देखें तो उसमें शेखो साहब की फोटो है, सबसे बड़ी, तो आप मनमोहक हो जाएंगे उस गुडी बैग को देख के। गुडी बैग के अंदर हमारा एक एयरक्राफ्ट का मॉडल है, एक जो हम अपने ओवरऑल्स पे एक सेखो का पैच, जो नॉर्मली जैकेट से है उस पर एक पैच लगाते हैं, पैच है उसके अंदर अवेलेबल, एनर्जी बार है उसके अंदर, एक रिस्ट बैंड है जब भी आप भागेंगे और आपको पसीना आएंगे उसको सुखाने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी टी शर्ट। इस बार हमने रिबॉक के साथ कोलाब्रेशन किया है और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है जो आपको रनिंग का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगी।
0: बहुत खूब। एक बात कहूँ, आप गुडी बैग नहीं दे रहे हैं, आप सपने दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ मैं उसी दौर में फिर पहुँच जाऊँ जब मैं फिर एफओस का एग्जामिनेशन देने के लिए खुद को तैयार करूँ। तो सपने दे रहे हैं यहाँ पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, आप ज़रूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कह रही हूँ, सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एफओस मैराथन सिम 2026, और उम्मीद की लौ कायम रखिए, थर्ड एडिशन आपके लिए और भी शानदार होगा। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो
1: किसी का ये आप सर ने सही बोला, सपने देखेंगे जब भी तो पूरे होंगे।
0: बिल्कुल। लेकिन अगर कोई सपने दे दे अपने हाथों से तो उससे बड़ी बात दुनिया में शायद कुछ और हो नहीं सकती। एक सवाल हमारे पास और है। अक्सर हम जब कहीं जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा बैगेज होता है। अब हम सोचते हैं खासतौर पर जब मैराथन में जब हम दौड़ेंगे भागेंगे तो उस वक्त हमारे सामान का क्या होगा, तो इसके लिए क्या फैसिलिटी है?
1: इसके लिए फैसिलिटी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है। जब जैसे आप एंट्री करेंगे, हमने बहुत बड़े बैगेज काउंटर्स बनाए हुए हैं जहां आप अपना बैगेज सुरक्षित डिपॉजिट कर सकते हैं, और जब आपकी रेस खत्म होती है वहां से वापस ले सकते हैं।
0: जी बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, आपकी सुरक्षा, आपके सामान की सुरक्षा भारतीय वायुसेना करने वाला है इस मैराथन में। अब अक्सर ना हमारे साथ क्या होता है, टिकट मिला है, टिकट दिया है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, दोस्त तुम चले जाओ। अक्सर हमारे साथ ये होता है। हाँ। तो क्या इस मैराथन में कोई पार्टिसिपेंट ऐसा कर सकता है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो अब मेरा घर का परिजन, मेरा दोस्त चला जाए?
1: काश ऐसा हो पाता, बड़ी नॉन ट्रांसफरेबल है।
0: जी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आपका पूरा वेरिफिकेशन देगा, पूरा आपका ब्यौरा देगा कि आप वही हैं जो अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इस बात को आप जहन में बिठा लीजिए जनाब कि आपको पूरी एहतियात के साथ यहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पर मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी और उसके बाद आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछना चाहेंगे। आज मैंने इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप नंबर का जिक्र नहीं किया, उसके बावजूद बहुत से संदेश यहाँ तक हमें मिले हैं। और वंदे मातरम लिखा है हमारे पास, सरवाड़ से संदीप आया है, अरकेड़ी पंडित चन्नप्पा का संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें द्वारका सेक्टर 15 से शंकर का संदेश है। वंदे मातरम में यश चिंदे मुंबई से इन्होंने लिख भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का।

0: आपके संदेश तफसील से मैं कमांडर साहब को, विंग कमांडर साहब को सुनाऊंगी, लेकिन यहाँ समय की नज़ाकत है, सिर्फ नाम पढ़ पाऊंगी। पंकज अमरावती संदेश भेजा है, यशवंत आडमुटे इन्होंने संदेश भेजा है महाराष्ट्र से, बीकानेर से हमारे पास संदेश आया है, मंसूर अली का दमदार संदेश टू सोल्जर्स इन्होंने लिख भेजा है, वंदे मातरम। तमिलनाडु से हमारे पास आया है ये संदेश, नाम नहीं लिखा, विजय कुमार वी इन्होंने संदेश नाम भेजा है, और चंपावत तनकपुर उत्तराखंड से संदेश आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अनिल कुमार का हमारे पास संदेश है, आज समय कम है लेकिन संदेशों की फहरिस्त बहुत लंबी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अब यहाँ पर आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी, स्पिरिट ऑफ सिखों क्या है ये हमें बताएं।
1: ये एक हमने पहल करी है इस एडिशन से, हमने देखा है कि मैराथन्स में काफ़ी लोग होते हैं जो किसी इश्यूज़ की वजह से डिप्राइड होते हैं, किसी अंग में कोई डिफेक्ट होता है या अदरवाइज कोई एक्सीडेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं, या कुछ लेडीज़ होती हैं जो ओल्ड एज होती हैं वो साड़ी वगैरह पहन के भागती हैं, कुछ कॉस्ट्यूम्स इस तरह की होती हैं। तो ये शो करता है कि हाँ, ये दीज आर डेडिकेटेड, जैसे सेखों साहब का स्पिरिट था इतना हाई इंडिया के लिए, ऐसा ही इन लोगों के लिए यूनिकनेस है कि इनका स्पिरिट इतना हाई है कि इतने चैलेंजेस के बाद भी उनको वो एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और वो इस रेस में भाग रहे हैं। तो हमारी वहाँ टीम रहेगी जो असेस करेगी ऐसे हमारे धावकों का, और उनको हम फेलिसिटेट करेंगे रेस के बाद।
0: बहुत खूब। एक बात और, महिलाएं और पुरुष दोनों की तादाद आप अगर कंपैरिजन, तो खैर सवाल नहीं उठता, लेकिन अगर बात की जाए जितना बढ़ चढ़कर पुरुष हिस्सा लेते हैं, महिलाएं भी आपने फर्स्ट एडिशन में देखा होगा, तो महिलाओं का भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया रहती है,
1: काफी योगदान रहता है। मैं कहूंगा बराबर तो नहीं, मतलब 60-40 की रेशियो तो 100% रहती है।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो अगली बार मैं भी हूँ, इसीलिए यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवा रही हूँ, खासतौर पर विंग कमांडर सत्येंद्र सिंह धनकर जी को। अब एक बार दोबारा से उन सभी स्टेशन का नाम ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की ना अपने राज्य से, अपने जहाँ पे भी एयरफोर्स स्टेशन है, एक आत्मीयता जुड़ी होती है, और लगता है अच्छा हमारे शहर में, हमारे जो शहर का जो एयरफोर्स स्टेशन है राज्य का, यहाँ पर भी है, उनका नाम ले लीजिए।
1: तो जैसा मैंने पिछली बार नॉर्थ टू साउथ गया था, अब मैं सोचता हूँ रिवर्स एक्शन करते हैं, अब साउथ टू नॉर्थ चलते हैं। तो अगर साउथ इंडिया में जाए तो तिरुवनंतपुरम पहला स्टेशन है, बेंगलुरु दूसरा स्टेशन है, उसके बाद और ऊपर सेंटर में आए तो ग्वालियर है, ईस्ट में जाए तो गुवाहाटी है, वेस्ट में मुंबई और जोधपुर है, और नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़।
0: तो आप कहीं से भी हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है, आप इसका हिस्सा बनिएगा। हम जानते हैं आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, 15 सितंबर को रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गए थे, लेकिन जैसे कि हम बहुत उम्मीदवान हैं, ऊर्जावान हैं, और हमारी ऊर्जा हमें अगले साल की ओर भी रुख कर रही है, लेकिन अगले साल के लिए आपको जानकारी तो फिर भी चाहिए होगी, तो हम धनकर साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि साइट का नाम दोबारा बता दें, जिससे कि हमारे वो श्रोता जो इस बार न सही अगली बार हिस्सा बन पाए इस मैराथन का।
1: अगर आप गूगल पे डालेंगे सेखो ifmarathon.in, ये साइट का नाम है, आप एक बार इसको देख लें। मैं अर्ज करूंगा जो नहीं भी पार्टिसिपेट कर पाए फिर भी इस साइट को एक बार विजिट कर लें, फ्यूचर में भी यही साइट रहने वाली है, हम इसी पे अपने नेक्स्ट एडिशन कंटिन्यू करेंगे।
0: बहुत खूब, हम दिल से एक बार फिर धन्यवाद देना चाहते हैं विंग कमांडर सत्येंद्र सिंह धनकर जी का, और हम यही चाहते हैं कि हर मर्तबा हम आपके साथ यूँ ही हर शो में शामिल हों, आपसे बात करें, और सेकेंड एडिशन ऑफ सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026 सफल हो, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने हमेशा जीतना सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, एंड ऑल द बेस्ट।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

श्रोताओं, अभी आप दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 10:56 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए गौरव गान।

श्रोताओं, अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1385वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब समय आता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा परिवार एक साथ सुनते हैं। ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी हमें सुनने को मिला है। प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई।
3: अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंत तीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: जय जोहार बंदगी उमंग टीम को। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 25 अगस्त को सरितपुर की कहानी सुनाया, हमें बहुत प्रेरणादायक लगा। प्रकृति की रक्षा करने की सीख मिली। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 28 अगस्त को भी हमने कार्यक्रम सुना, भारत की सबसे पहले महिला पायलट सरला ठकराल जी के बारे में रियल स्टोरी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है, ये कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम हिमालय कैसे बना, अवसर को पहचानिए और उड़न परी पीटी उषा, ये सभी कार्यक्रम सुने बेहद पसंद आए। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, अरावली पर्वत की कहानी, सुखो मांझरी गांव की कहानी और अन्य कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आए। ये सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर लगे। आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस। उमंग कार्यक्रम की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए करते हैं शुरुआत उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।
2: लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी किसी के साथ हुआ अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
3: श्रोताओं, होता तो ये है कि अपमान तो अक्सर इंसान को तोड़ देता है
2: जी।
3: तो कोई भला उससे ताकत कैसे पा सकता है?
2: यही तो आज की कहानी है जो हम आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लेकर आए हैं। दिन था 31 मई 1893 और स्थान था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
3: एक युवा भारतीय वकील ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था, वे अपने स्थान पर बैठे थे और यात्रा कर रहे थे।
2: स्टेशन पर बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़े, उनमें एक श्वेत यात्री भी था। उस श्वेत यात्री को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम क्लास में बैठे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आपत्ति की कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कैसे बैठ सकता है।
3: गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया, उनके पास पूरा अधिकार था कि वे प्रथम श्रेणी में यात्रा करें।
2: लेकिन टिकट देखने के बावजूद उन्हें डिब्बा छोड़ने के लिए कहा गया। शोर बढ़ता जा रहा था और बहुत से श्वेत यात्री गांधी जी के वहां रहने के कारण आपत्ति जता रहे थे।
3: लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे, उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से विनम्रता पूर्वक साफ इनकार कर दिया
2: जी।
3: उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाहर थी कड़ाके की ठंड वाली रात।
2: गांधी जी का सामान भी उनके साथ बाहर था, वे स्टेशन पर अकेले बैठे रहे। जरा सोचिए श्रोता मित्रों, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा।
3: हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक युवा वकील जिसके पास वैध टिकट था, फिर भी केवल

0: नस्लीय भेदभाव के कारण उसे ट्रेन से उतार दिया गया था।
1: जी।
0: वह रात उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रही होगी।
1: उस रात उन्होंने अपने जीवन की भावी दिशा पर विचार किया। उस रात गांधी जी के भीतर कोई नया संकल्प जन्म ले रहा था, जिसे आज हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। इसी संकल्प का स्वरूप था सत्याग्रह।
0: सचमुच कितनी अद्भुत बात, एक रेलवे स्टेशन, एक ठंडी रात, एक अपमान और उसी से एक महान संकल्प का पैदा होना।
1: तो अजीत जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आज की सीख क्या है?
0: विमलेश जी, मुझे लगता है सीख बहुत सरल है। और सीख ये है कि जब परिस्थितियां आपको गिराएं तो वहीं पड़े मत रहिए।
1: जी,
0: उठिए, सोचिए और अपने दुख को एक अच्छे संकल्प में बदल दीजिए।
1: दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी के गलत व्यवहार का जवाब हम अपने गलत व्यवहार से न दें।
0: बिल्कुल, यही तो इस घटना की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
1: तो श्रोताओ, 31 मई 1893 की वो रात गांधी जी के लिए केवल एक कठिन रात ही नहीं थी,
0: लेकिन वो रात उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली रात भी थी।
1: जी हाँ, कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात थी हमारे भीतर की एक नई सुबह को जन्म देती है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है यादें बापू गांधी की।
1: इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है और उनके जीवन के दर्शन की भी सरल वाक्यों के द्वारा जानकारी दी गई है।
2: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का, सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
3: आइए सुने उस्ताद अमजद अली खां को।

तो यानी ये एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन।

हमारे जो राष्ट्रपिता थे कौन थे? हाँ, महात्मा गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज़ नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। राम धुन, महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिबे इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: नमस्ते बापू।
2: नमस्ते
3: गांधी। नमस्ते।
4: नमस्ते।
5: हमारी खुश नसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
6: ये अचकन देसी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकहा लगाया और फरमाया,
6: अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीजों में अपनी उसी 5वीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
6: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
5: जी बापू।
6: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया
1: जी,
6: जाए।
1: जी बापू, हम ध्यान रखेंगे।
5: हम ध्यान रखेंगे।
6: अच्छा, अब सोचो

0: इमारत का नाम क्या रखा जाए?
1: कुछ खास होना चाहिए।
2: मजदूर रहेंगे उसमें,
3: मेहनत करने वाले।
1: बाबू, धर्म का काम है ये तो।
2: भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए।
0: धर्मशाला? हाँ ठीक है, धर्मशाला।
4: आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते? एक और साहब वहां बैठे हुए थे, बोले,
1: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
4: मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
0: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
1: हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक। हाँ बिल्कुल सही।
4: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें।

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साला लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, अरे लो,
2: मुझे भी लीमू दो ना,
1: ये लो
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में।
2: गया?
1: हाँ, वो गया। अरे रो मत।
2: मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं?
1: अरे नहीं, नहीं।
2: वो किनारे पर ही तो होगा ना?
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ, गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था। उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए,
1: मेरा रुमाल किस जेब में है?
0: उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।
2: अरे लीमू, ये लीमू तो आपके पास ही है।
1: अरे वो
2: आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने।
1: अरे
2: मैं ये बात पापा को जरूर बताऊंगी।
1: अरे नहीं नहीं
2: पापू।
1: नहीं बेटा, मेरी बात तो सुन।
2: नहीं पापू।
1: नहीं, अरे सुन तो, पापू से मत बोल। अरे
2: पापू।
1: नहीं नहीं, अरे
2: पापू।
1: अरे अरे सुन मेरी बात। अरे सुन तो।
0: ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया,
2: उन्होंने झूठ बोला, आश्रम में रहकर झूठ बोला।
3: हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला।
2: ठीक है बापू।

0: शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा,
1: अच्छा बताओ क्या बात थी?
2: बापू ये सब बस एक मजाक था।
1: देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो।
2: जी बापू, मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा।
3: कोई आंखों से तो सुनता नहीं है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, इसलिए आंखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए। अदब रखकर बैठ जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम यादें बापू गांधी की, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी और आश्रम वासियों के साथ उनका कैसा सद्भाव था।
0: साथियों नमस्कार, हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉल्स्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं आश्रम के रसोई घर में।
2: अरे बापू जी के आने का समय आने वाला है। हाँ हाँ, और टमाटर काट लो। हाँ हाँ, और मैं ये मिर्ची काट।
3: अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है।
2: अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई।
3: क्या?
2: वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी।
3: अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी।
2: ठीक कह रहे हो। अरे हरिया, वो देखो छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बापूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं।
3: ठीक है चंपा, ठीक।
4: बापूजी के आने का समय हो रहा है, मैं टमाटर।
3: मुझे मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ।
2: अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जियां इनको धो लेती हूँ। प्रणाम बापू।
3: नमस्कार बापू।
4: प्रणाम बापू।
5: प्रणाम प्रणाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
3: बाबू जी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग।
2: बापू सब्जियां काट रहे थे।
5: अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं।
2: वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए।
5: देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम?
2: जी बापू।
5: अच्छा जाओ।
2: जी।
5: अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो।
3: जी, जी।
2: चलो चलते हैं। जी।
0: तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे।

0: तो उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की।
1: बापू बापू ये देखिए।
2: अरे हाँ हाँ बिमला आओ, कहो कैसे आना हुआ?
1: बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं। दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
2: देखो बिमला, ये जो केलों पर तुम काले काले चकत्ते देख रही हो ना
1: जी,
2: इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तुम्हें पेट की समस्या है ना?
1: हाँ।
2: है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दें। सोनू ने ऐसे दे दिए, उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला।
1: जी बापू।
2: हाँ समझ गई ना?
1: जी।
2: जाओ अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी।
1: जी बापू धन्यवाद।
0: साथियों यह सुनकर बिमला बहुत लज्जित हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गांधी जी के आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें और न सिर्फ अपने कमरों और झोपड़ियों को ही साफ रखें लेकिन आसपास भी साफ सफाई का ख्याल रखें। गांधी जी रसोई में काम करने वालों के साथ सब्जियों को खुद काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है,
3: अरे बापू ये बर्तन तो धुल गया है।
2: अरे सुधीर नहीं, अभी ठीक से कहाँ धुला है, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है।
3: हाँ?
2: अभी तो इसे और चमकाना है।
3: ओ
2: देखो इसे और चमकाना है। ये लो अब देखो, अब ये अच्छी तरह साफ हो गया है और
3: चमकने भी लगा।
2: हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखो जिस भोजन को हम खाते हैं उसे हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए, समझे सुधीर?
3: हाँ जी बापूजी।
2: हाँ शाबाश।
0: तो साथियों हमने आज गांधी जी के आश्रम में जाकर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करें और किसी दूसरे से न तो उम्मीद रखें और न दूसरे से वह काम करवाएं। और हम सबको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों यदि आप गांधी जी के जीवन से संबंधित कोई भी किस्सा जानते हैं तो अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। तो श्रोताओ अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
0: चेतना,
4: अर्शद,
0: सौम्या,
4: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
4: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: श्रोताओं अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1350वीं कड़ी सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलाम इन ये रोखरे हमांग इंग रेता का लमक तेलगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलो हर्ट्स रमांग एलगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम।

अन्य निकबारे प्रोग्राम तहांग मिनका तलोन ही तरन मने महावत करे चोग नलक एल्हॉय नेकुन पनाम ही।

0: ngachi intai hangam thalen nang program ya langi gandhi jayanti hoi hanga dil ngangin ngai sinta mu hek in horech hangrangi takasade ida fan kaina tala harap ngai yen
1: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं तेलुगु कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണിയുടെ ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में समाचारों का आप प्रसारण सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ा और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोरिसिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण

और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी तथा विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवास बनकर उभरा है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले मैरीकॉम ने 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत के नित्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों के लिए 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 71 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 34 कांस्य पदक शामिल हैं। महात्मा गांधी जयंती के कारण आज भारतीय शेयर बाजार बंद हैं। बाजार सोमवार को फिर से खुलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today spoke to brave Indian pilot Captain Smit Machar, whose heroics in thwarting an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Machar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. The co-pilot accused of assaulting Captain Smit Machar has been transferred to Abu Dhabi, UAE. The Saudi press agency SBA, quoting an official source at the Saudi Ministry of Interior, reported that both pilots left the country for Abu Dhabi after receiving medical clearance. The Indian embassy in Abu Dhabi had yesterday informed that Captain Machar had been brought to the UAE and was recovering well. As reported by SBA, the aircraft landed safely at Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport in Tabuk at 9:45 a.m. on Wednesday, with 174 passengers and an 8-member crew, all of whom received necessary logistical and medical assistance. At 5:40 p.m., passengers continued their journey on a replacement Fly Dubai aircraft, while the crew returned to Dubai on a separate flight.

इसके पश्चात माननीय उपराज्यपाल महोदय एवं उपस्थित सभी अधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री विजयपुरम के विद्यार्थियों ने गांधी जी का प्रिय भजन और रामधुन प्रस्तुत कर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की।

0: इसके बाद द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल डॉक्टर दिनेश शर्मा उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।
1: बापू के जन्म दिवस के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं और उनका हम स्मरण कर रहे हैं। आज का दिन दो महान विभूतियों के जन्म का अवसर प्रदान करता है। एक महात्मा गांधी, जिन्होंने दे दी आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत का जन्म का ये अवसर है। और दूसरे लाल थे भारत माता के, जिनको हम लाल बहादुर शास्त्री के रूप में, पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में स्मरण करते हैं। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में न केवल पाक आताताइयों को परास्त करने का उनके नेतृत्व में अवसर मिला, बल्कि एक सीधे सरल, एक अनुकरणीय जीवन का यापन करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का भी हम स्मरण करते हैं। महात्मा गांधी के विचार आज पूरी दुनिया में, अलग अलग देशों में फैले हैं, और लोग जो अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं वो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। बापू जो कहते थे वो करते थे। सबसे पहले स्वच्छता का उद्घोष करने वाले महात्मा गांधी थे, और महात्मा गांधी ने जब स्वच्छता का आह्वान किया तो जनता से बाद में किया, पहले खुद में आचरण किया। और उन्होंने सबसे पहले अपने घर के जो उनका टॉयलेट था, शौचालय था, उसको उन्होंने, अपनी धर्म पत्नी जो उनकी थी वो, और उन्होंने स्वयं मिलकर साफ किया। बापू का नैतिकता का जो अनुपम उदाहरण था, हम सब स्मरण करते हैं कि जो स्वच्छता का वो अभियान था, आज अनवरत चलने वाली यात्रा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान से बदल गया है, और वो आज जन जन का आंदोलन बन चुका है स्वच्छता अभियान। और स्वच्छता केवल मन और मस्तिष्क में उमंग पैदा नहीं करता, बल्कि तमाम बीमारियों को, रोगों के निवारक का कारण भी बन जाता है। इसलिए महात्मा गांधी जी का जन्म उत्सव देश की आजादी से जोड़कर तो हम देखते हैं, लेकिन उनका जीवन चरित्र प्रेरणादायी रहा है। कहते ये है कि एक बार बापू के पास में एक वृद्ध महिला गई और उसने बापू से चिल्लाकर कहा, बापू मेरे बेटे के दांत में दर्द हो रहा है। बापू ने कहा, बहन इसको 15 दिन के बाद लेकर आना। 15 दिन के बाद लेकर आई, बोली बापू दर्द सहन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा एक हफ्ते के बाद लेकर आना। एक हफ्ते के बाद आई, फिर गांधी जी ने कहा बेटा थोड़ी दिन और इंतजार कर लो, फिर आना। तीसरी बार जब महिला आई तो उसका जो आत्मविश्वास था वो डोल गया, धैर्य टूट गया, और उसने चिल्ला के कहा, बापू आज तुम्हें इसका उपचार बताना होगा। बापू ने कहा, बहन बेटे को मेरे सामने लाओ। बेटा सामने आया, बोले बेटा गुड़ मत खाना। महिला चिल्लाई, बोली बापू एक छोटा सा शब्द आपको कहना था, उसके लिए आपने 20 से 25 दिन हमारे खराब कर दिए, और आप ये पहले दिन

0: कह देते तो हाथ जोड़कर गांधी जी बोले कि पहले दिन मैं स्वयं गुड़ खाता था, हमने गुड़ छोड़ने की प्रैक्टिस किया लेकिन छोड़ नहीं पाया, इसलिए दूसरी बार आपको बुलाया। तीसरी बार जब आप आए हो तो मैं पूरी तरीके से उसको खाना छोड़ चुका हूं। जब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया तब मुझे अधिकार है कि मैं आपको भी उसके लिए उत्प्रेरणा दे सकूं। गांधी जी का जीवन चरित्र प्रेरणा का पुंज बना। इसलिए हम सब कह सकते हैं कि हम केवल जन्म जयंती नहीं मनाते, अंडमान निकोबार का ये ऐतिहासिक स्थल उनके आदर्शों पर चलने का न केवल संकल्प लेता है बल्कि जैसे उन्होंने अपने को राम को आदर्श माना। कौन है राम? राम सत्यता के प्रतीक है। कौन है राम? आदर्श के प्रतीक है। राम कौन है? राम भील पक्षी के साथ साथ जो वहां के आदिवासी थे उनके रक्षक के रूप में है। सबरी के बेल खाने वाले हैं, वो केवट और निषाद के मित्र हैं। सबको साथ में लेकर चलने वाला कोई है तो वो आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। इसलिए गांधी जी सबको साथ में लेकर चलते थे। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, सब ईश्वर के संतान हैं और मिलकर चले और देश ऊपर चले, ये गांधी जी का आह्वान रहा है। तो आज इन दो सद्पुरुषों के जीवन के आदर्श को हम स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं और अंडमान निकोबार की ये परंपरा इतनी पुष्ट और बलिष्ठ होंगी इसलिए मैं आनंदित भाव को मैंने महसूस किया। और अभी वन विभाग के द्वारा एक मैराथन का जो यहाँ पर आयोजन किया गया जैव विविधता का, यह दीप समूह हमारा एक जीता जाता ज्वलंत उदाहरण है। पशु पक्षियों का रक्षण, आदिवासी जनजाति का सहयोग और जो भी कार्य हो वो यहाँ के लोगों के साथ मिलकर यहाँ का विकास हो, यहाँ के लोगों के लिए विकास हो, जो रोजगार हो यहाँ के लोगों के लिए प्राथमिकता के तौर पर हो, जो युवा है उनके आशाओं पर पंख लगे और अंडमान निकोबार अपनी जैविक विविधता को बना रखते हुए अपने पशु पक्षी का, अपने जंगल का, अपने जीव जंतुओं का रक्षण का भाव रखते हुए आगे बढ़े, एक नए अंडमान के सपने को हम सब मिलकर साकार करें। ये बापूजी के आज श्री चरणों में हमारा उद्घोष है और यह उद्घोष एक संकल्पना के रूप में बदल जाए और हमारी कल्पना ये हो हम सत्य पर चलेंगे, हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलेंगे, हम मिलकर चलेंगे, हम जाति धर्म से ऊपर उठकर एक राष्ट्र धर्म के आधार पर चलेंगे। यह शपथ और संकल्प का आज का दिन बापू के जन्म दिवस के अवसर पर नैतिकता और सिद्धांत के आधार पर राष्ट्र के नेतृत्व करने के भाव का संकल्प आज लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म के अवसर पर हम सब मिलकर लेते हैं।
1: अपने संबोधन में माननीय उपराज्यपाल ने उपस्थित लोगों में उत्साह का संचार करते हुए महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में नारे लगवाए।
0: मेरे साथ आप एक साथ बोलेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। मेरे साथ मिलकर जोर से बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।
1: गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने तथा मानवता की सेवा के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ।
2: श्रोताओं, अभी आप गांधी जयंती के अवसर पर आज सुबह गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। तकनीकी सहयोग दिया एन दंडापानी ने, वाचिका एवं प्रस्तुति सहयोगी थी श्री विद्या तथा इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी जयशीला। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:31 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मनपसंद गीतों को सुनने के लिए अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और

गाने के बोल लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे के इस गीत से। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल ने।

अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म नदियाँ के पार से। इस गीत की फरमाइश की है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र और रेखा धनेश्वरी वर्मा ने।

कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष, हमारी ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं फिल्म परिवार का ये गीत। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएटेड उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी और कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म भागवत का ये गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है गाड़के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षता लोखंडे ने।

नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, हमारे इन दोस्तों ने फरमाइश की है फिल्म आराधना के इस गीत के लिए। तो लीजिए सुनिए इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म कटी पतंग का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है पटना टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह ने।

0: श्रोताओं, अभी आप व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुन रहे थे।
1: कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। 4 अक्टूबर से हमारे कार्यक्रमों में कुछ फेर बदल किया गया है। अब हर रोज सुबह 6:15 पर आप सुनेंगे भिन्न भाषाओं के भक्ति गीत।
2: सोमवार बांग्ला,
1: मंगलवार
2: तेलुगु,
1: बुधवार
2: मलयालम,
1: बृहस्पतिवार
2: बांग्ला,
1: शुक्रवार
2: तमिल,
1: शनिवार
2: निकोबारी
1: तथा रविवार
2: तमिल भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा।
1: इसके अलावा अब इंद्रधनुष कार्यक्रम सुबह 6:15 की बजाय सवेरे 7:15 पर प्रसारित होगा।
2: रविवार सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं,
1: और 7:45 पर सुनिए कुछ फिल्मी गीत।
2: ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना।
0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: events today. In boxing, Lovlina Borgohain clinched a historic gold medal in the women's 75-kilogram category, defeating China's Pao Ziyi by a unanimous 5-0 decision in the final. It is only India's second gold medal in women's boxing at the Asian Games, following Mary Kom's gold in 2014. Earlier, Indian women's recurve archery team created history by winning its maiden Asian Games gold medal. The trio of Ankita Bhakat, Kirti Sharma and Kumkum Mahod defeated world champion South Korea 5-3 in a thrilling final. India also secured a silver medal in the mixed recurve team archery event. The Indian duo of Kumkum Mahod and Dheeraj Bommadevra finished runners-up after losing 3-5 to China in a closely contested final. In sailing, Netra Kumanan won the bronze medal in the women's dinghy event. The 29-year-old Indian sailor finished third with overall 14 points. With these performances, India climbed to sixth position in the overall medal standings. The country's medal tally rose to 72 medals, comprising 12 gold, 25 silver and 35 bronze. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh for the day. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of the southwest monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh and most parts of Gujarat and Madhya Pradesh during the next 24 hours. The Met Department said thunderstorms and lightning conditions will continue over Andhra Pradesh, Kerala, Mahe, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim till tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi speaks to pilot of Fly Dubai, Captain Smit Machar, applauds his bravery and wishes him a quick recovery. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal holds bilateral meetings with his counterparts from France, Canada, Saudi Arabia and South Korea on the sidelines of the G20 trade ministers' meeting to strengthen trade relations. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary today. IMD forecasts heavy rainfall over Arunachal Pradesh for today, says conditions are favourable for further withdrawal of southwest monsoon from northwest India. And in Asian Games, Lovlina Borgohain clinches gold medal in women's boxing 75 kilograms gold. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मौसम विज्ञान ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मित के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
1: बातचीत के दौरान

0: भावुक कैप्टन स्मिथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस के विदेश, व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिए के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री

0: लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है, युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरू के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरू के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल, जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
3: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजीली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है, हम इमीडिएट 1-2 घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान भगवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों, खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
4: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया।

0: उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
1: मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दें।
0: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाउ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि एक या दो स्थानों पर हल्की सी गरज के साथ बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार के समुद्र में लहरें कुछ ऊंची और तेज हो सकती है। लगभग 1.4 से 1.7 मीटर ऊंची लहरों की संभावना बताई गई है, इसलिए समुद्र में जाने वाली नावों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक लाइव फोन आउट कार्यक्रम है, इसलिए आप हमें कॉल ना करें, हम स्टूडियो से ही आपको कॉल करेंगे। और जिन श्रोताओं से हम आज जुड़ेंगे उनकी सूची पहले से ही तैयार है, तो आइए देर ना करते हुए बात करें आज के हमारे पहले दोस्त से। हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश सली बोल रहा हूँ।
0: जी अविनाश जी, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका जो पावन मौके पे मुझे फोन किया आप लोगों ने, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है हम सब भारतवासी के लिए, क्योंकि आज के दिन हमारे भारत के इस महान जन्मभूमि पे दो महान आत्माओं ने जन्म लिया था। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और दूसरे हैं हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। तो उन दोनों की आज जन्मदिन है, तो उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
0: जी जी, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आपको भी ढेरों बधाइयां।
1: जी जी बिल्कुल जी। और आकाशवाणी श्री विजयपुरम के जितने भी तमाम सुनने वाले हैं सबको मेरी तरफ से भी आज गांधी जयंती की ढेर सारी बधाइयां।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, और श्री विजयपुरम से जब कॉल आता है तो हम सबको भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जितने भी भारत के केंद्र हैं, आकाशवाणी केंद्र है, 500 केंद्रों में से एक ही मात्र केंद्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम है जहां पर फोन आउट कार्यक्रम होता है।
0: जी जी जी, और क्या करते हैं आप?
1: जी मेरा वेल्डिंग काम है।
0: जी जी, तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जी जी, आज इस पावन मौके पर मुझे एक देशभक्ति गीत सुनना है, मूवी का नाम है कर्मा, और गाने के बोल हैं ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे। मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में एक गीत है।
0: जी, किसे डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: जी हमारे जो सीमा पे हमारे जो भारत की सुरक्षा का दायित्व निभा रहे हैं हमारे जो फौजी भाई, उन सबको, और हमारे नौसेना की जो सेना है उन सबको, और हमारे जो आकाश में जो हमारे सेना है उन सभी को, मतलब कि सब कोई जो हमारे पूरे भारत की सुरक्षा का दायित्व जो निभा रहे हैं उन सभी सेनानियों को मेडिकल से गीत डेडिकेशन पर रहेगा।
0: जी जी, तो अविनाश जी चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी जी बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद,
0: और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।

0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासा कॉलेज जिला फेरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी, नमस्कार नमस्कार इंद्रभान जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: और आपका कार्यक्रम में छोटा मोबाइल में अविनाश का गाना सुन रहा हूँ। फिल्म के नाम है कर्मा, तो गाने को एक बटन चीरी लिए गाना सुन रहा हूँ और
0: जी
1: फिल्म में जुड़ा हूँ।
0: जी जी
1: और सबसे पहले आपको गांधी जयंती, आने वाली दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी, और मेरा आज में दिसंबर के मनोरंजन के साथ में अपने पसंद गीत बताता हूँ। फिल्म के नाम है नसीब और गीत के लिए है रंग जमा के जाएंगे, चक्कर चला के जाएंगे, गायक किशोर कुमार, शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले और साथी का आवाज में गीत है। और सबसे पहले गीत आपको और अभी जो भाई साहब आए थे उनको, आकाशवाणी विजयपुर में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन के रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, आपकी सहेलियों को, केंद्र साहब को, पूरे भारत राज्य श्रोताओं को, हेलो जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत राज्य श्रोताओं को डिडेट कराऊँ, खासकर आप लोगों को डिडेट कराऊँ। और इसी फिल्म के इसी गीत को पूरा सुना देंगे मैडम, फोन शामिल किए, धन्यवाद।
0: जी, तो चलिए
1: जी,
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: फिल्म का नाम नसीब,
0: जी, और हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: फोन शामिल किए मैडम, धन्यवाद।
0: जी।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: मेरे प्यारे प्यारे मैम करा प्यार करा। गुड आफ्टरनून।
0: जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, आप कैसी हैं?
0: जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में आपका आज बहुत बहुत स्वागत है।
1: अरे मैम आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे कॉल करने के लिए, मेरे श्रोताओं के लिए।

0: परिचय देती हूँ। मैं ग्राम गुनौरे जिला सताराम महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ।
1: जी, कैसी हैं तनुश्री जी आप?
0: आपने फोन किया तो एकदम बढ़िया हो गई।
1: जी, और क्या करती हैं आप?
0: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ
1: जी
0: और मुझे खुशी है कि मेरे 100 ईयर्स में से आज मुझे मतलब मैं बता नहीं सकती क्योंकि मेरे पापा भी आपके कार्यक्रम आपका सुन रहे हैं,
1: जी जी धन्यवाद इतना।
0: तो मेरे पापा भी बहुत खुश होंगे कि बिटिया को आज कॉल आया, तो मैं भी बहुत खुश हूँ।
1: जी, तनुश्री जी, आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आपके आसपास कुछ खास कार्यक्रम आयोजित कर किया जा रहा है?
0: हाँ मैम, स्कूल में तो सभी मतलब गांधी जयंती हो, कौन सी भी जयंती हो, स्कूल में तो सब मतलब मनाए जाते हैं कार्यक्रम। तो
1: जी, आप स्कूल में हो?
0: नहीं मैम, स्कूल में तो नहीं, अभी तो मैं घर पर हूँ
1: जी, अच्छा। तो आज
0: जी।
1: हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: मैम फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया, उसमें गाना है मेरे रंग।

0: ए मैम, गाना सुनना है मुझे।
1: जी जी तनुश्री जी, आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मधुर है
0: थैंक यू।
1: जी। तो तनुश्री जी, हमारे इस कार्यक्रम में आज आपका आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके मैम, बाय बाय।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
0: ओके।

0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: नमस्ते जी, सुशील यादव उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं।
0: नमस्ते नमस्ते सुशील जी, हमारे इस कार्यक्रम में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: धन्यवाद जी।
0: जी। कैसे हैं आप
1: बिल्कुल बढ़िया हूँ मैम।
0: जी, और क्या करते हैं?
1: मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ, तो अभी रिटायरमेंट के बाद में बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के बारे में लोगों को सपोर्ट करता हूँ, और
0: अच्छा,
1: जो कुछ मैंने जीवन में सीखा है या नौकरी में ज्ञान अर्जित किया है उसका सब मैं चैरिटी करता हूँ, सबको हेल्प करता हूँ।
0: जी। आज गांधी जयंती है, तो आपके यहाँ आज कुछ खास चल रहा है?
1: गांधी जयंती का सुबह सुबह गांधी जी को सबने किया है, सब वहाँ पर समारोह हुए हैं और हमेशा की तरह अच्छा प्रोग्राम हुआ है और गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई है
0: जी।
1: और सब संदेश भी वही दिए गए हैं जो गांधी जी के जो मार्ग दिखाए थे हमें।
0: जी।
1: और
0: सुशील जी, जैसा कि आपने कहा कि आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में कुछ घूमने की जगह हमारे श्रोताओं को आप बता दीजिए।
1: राजस्थान में पर्यटन नगरियां बहुत अधिक हैं। उदयपुर जहां मैं रहता हूँ ये झीलों की नगरी है।
0: जी।

0: यहाँ पर प्राकृतिक झील हैं और ये प्राकृतिक सुंदरता के हिसाब से चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं, सुरक्षित शहर है और चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में देहरादून की तरह बसा हुआ एक सुंदर शहर है
1: जी,
0: और यहाँ की राजपूताना और राजपूतों द्वारा बसाया गया एक सुंदर शहर है। महाराणा प्रताप की यादें सबसे बड़ी है यहाँ की, जो वीरता की कहानियाँ हैं वहाँ के इसके रग रग में बसी हुई है। हल्दी घाटी जहाँ पर युद्ध हुआ था यहाँ से बहुत पास में रहे, जहाँ की मिट्टी पीली है उसे हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता, जहाँ अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी थी कभी भी, तो वीरता के लिए पूरे विश्व में विख्यात हैं, पूरे भारत में विख्यात हैं महाराणा प्रताप। मेवाड़ की धरती है ये और घूमने के लिए आपको पर्यटन नगरी है ये, झीलों का शहर है, महलों का शहर है, विरासत में मिली हुई बहुत सारी यहाँ पर हवेलियाँ हैं और देखने के लिए प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही अधिक है और इस तो पूरे उदयपुर से विश्व से आते हैं। और तो जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर खाने पीने का अच्छा इंतजाम होता है, तो खाने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है ये, तरह तरह के खाने हैं, फास्ट फूड हैं जो यहाँ की विरासत से जुड़े हुए हैं।
1: जी, हमारे श्रोता ज़रूर वहाँ जाना चाहेंगे।
0: हाँ जी। और सहेलियों की बाड़ी है यहाँ पर, जहाँ पर बहुत अधिक पर्यटक आते हैं। गार्डन है पुराना, ये भी ऐतिहासिक है और पैलेस है, और इसके बाद में घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छा जो जगह है वो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ मानसून पैलेस है। तो मतलब हाई हाइट के ऊपर, झील के ऊपर बनाया हुआ है और वहाँ से पूरे उदयपुर का सौंदर्य दिखता है। और जब मानसून आता है, जब बादल नीचे होते हैं, तो उसमें से होकर बादल गुजरते हैं, वो नज़ारा बहुत ही रोमांचक और अच्छा होता है। वो जुलाई अगस्त में जब भी घूमने आए मानसून पैलेस में जरूर आए, ऊपर चढ़ने के लिए व्यवस्था है, अच्छा पर्यटन नगरी है।
1: जी सुशील जी, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: शहर के मुताबिक ही सुनूंगा, शहर अच्छा है हमारा
1: जी,
0: तो सब शांति रहती है यहाँ, सब मिलजुल कर रहते हैं
1: जी।
0: तो राज फिल्म का गाना है ये, शहर है अमन का, यहाँ पर सब शांति शांति, मुझे ये गाना बहुत पसंद है।
1: जी जी,
0: तो सबसे दुआ करता हूँ सब शहरों में ऐसे ही शांति रहे और सब कुछ अच्छा चले, सब मिलकर रहे और ये गाना सब जगह गुनगुनाते रहें सब लोग।
1: जी
0: और
1: सुशील जी,
0: मेरे
1: जी
0: हाँ जी, मेरे साथ में सुनना चाहेंगे? हम पूरे परिवार से ही चलते हैं, सुनते हैं। रेणु यादव बोल रही हैं, मोहित यादव हैं, कार्तिक यादव हैं, नमिता है, जानू और संजू हैं।
1: जी
0: और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया और हमेशा याद करते हैं, श्रोताओं को आगे से इन्वाइट कर आप अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये मतलब हमने जो भी हो न्यूज़ और नई ऐप एक के सारे स्टेशन हैं उनमें सबने ये अनूठा एक श्रोताओं के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पर आप इतना रेस्पेक्ट देते हैं और उनको इनवाइट कर सबसे रूबरू कराते हैं।
1: जी, सुशील जी, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: ओके जी, थैंक यू जी।
1: जी।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार मैम।
0: जी, नमस्कार।
1: मैं पूर्णिमा लाइन से बोल रही हूँ।
0: जी, पूर्णिमा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: आपको भी धन्यवाद मैडम मुझे कॉल करने के लिए।
0: जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ।
0: जी
1: आप तो कैसे हैं? आकाशवाणी परिवार
0: जी हमारा परिवार तो बहुत ही सुस्वस्थ है। जी बताइए, क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, हाउसवाइफ हो।
1: जी
0: गाने सुनते हैं?
1: रेडियो सुनना पसंद करती हूँ।
0: जी,
1: के बजाय
0: रेडियो सुनना पसंद।
1: जी मैं 1987 से रेडियो सुनती हूँ।
0: जी,
1: जब मैं स्कूल पढ़ती थी मैं तब से सुनती हूँ।
0: जी, तो रेडियो में हमारा कौन सा
1: मैं
0: कार्यक्रम आपको?
1: आपके आकाशवाणी के लगभग सभी सुनती हूँ। वाणी सुनती हूँ,
0: जी
1: हेलो डॉक्टर जो आता है सुनती हूँ, फरमाइशी प्रोग्राम तो लगभग सभी सुनती हूँ। जैसे आज फ्राइडे का 7:30 वाणी में आएगा, संडे आता है दिन में भी रात में भी, मैं सभी फरमाइशी भी सुनती हूँ।
0: जी
1: आप
0: जी
1: जो भी ज्ञानवर्धक प्रोग्राम, बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है मैम इससे हम लोग। तो मैं प्रोग्राम के बारे में पहले भी मैंने एक बात कही थी, मैं आज आपके माध्यम से कहूंगी,
0: जी
1: आप अपने थोड़े उच्च अधिकारियों से पहुँचा दीजिएगा। एक प्रोग्राम आता है मैम दिन में 11 बजे NCERT,
0: जी जी
1: तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप वो प्रोग्राम

0: हम पूछ सकते हैं पॉसिबल तो शाम लेकर ही तो अच्छा है, क्योंकि ना बच्चे प्राइमरी के बच्चों के लिए बहुत ही ज्ञान वर्धक है, तो बच्चे नहीं सुन पाते क्योंकि उसके स्कूल में होते हैं,
1: जी।
0: जिनके लिए वो प्रोग्राम है। वैसे हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है वो सुनने में, लेकिन बच्चे बहुत रोचक होता है तो बच्चे इंटरेस्ट लेके सुनेंगे। मैं प्राइमरी के बच्चों के लिए चैप्टर भी बताते हैं, क्योंकि मैं टीचर रह चुकी हूँ इसलिए मैं ये बोल रही हूँ।
1: जी, पूर्णिमा जी, हम प्रयास करेंगे।
0: जरूर
1: जी। और आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम है जाने मन, और गाने की फोन है आएगी आएगी
1: जी
0: तो
1: जी
0: हमें याद आएगी।
1: और किन के साथ सुनना चाहेंगे?
0: मध्य प्रदेश के राम जीरापुर सीहोर से मेरे भैया है भगवान सिंह परमार जी, शक्ति सिंह राजपूत जी है, नरेश प्रजापति राम भरत शर्मा जी, गजराज लोधी जी, और राजस्थान से पूरन वर्मा जी ने, नॉर्थ ईस्ट मुंबई से अभी एक छोटा जुड़ी बताने चली वो है, और नॉर्थ ईस्ट से आशुतोष जी, संगीता जी, अविनाश जी, और शिमला से राजेश जी, गोल्डी जी, और विद्यापुरम से चेतन शादी सुमानिका जी और सिद्धा जी, और जितने श्रोता लाइव सुन रहे हैं उन सब से बात करना चाहूंगी।
1: जी। पूर्णिमा जी, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शामिल करने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत
1: जी
0: धन्यवाद।
1: जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी जरूर,
1: जी
0: धन्यवाद
1: जी।

0: कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। रविवार 4 अक्टूबर से प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों में कुछ फेर बदल किया गया है। अब हर रोज सुबह 6:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न भाषाओं के भक्ति गीत। सोमवार बांग्ला, मंगलवार तेलुगु, बुधवार मलयालम, बृहस्पतिवार बांग्ला, शुक्रवार तमिल, शनिवार निकोबारी तथा रविवार तमिल भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। इसके अलावा अब इंद्रधनुष कार्यक्रम सुबह 6:15 की बजाय सवेरे 7:15 पर प्रसारित होगा। रविवार सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं, और 7:45 पर सुनिए कुछ फिल्में गीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना।
1: हेलो डियर फ्रेंड।
2: हेलो डियर फ्रेंड।
1: जी, क्या मेरी बात अमल जी से असम से हो रही है?
2: जी जी जी, मैं रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ, और सभी आकाशवाणी श्री विजयपुराम हेलो डियर फ्रेंड प्रोग्राम सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी नमस्कार अमल जी, हमारे इस कार्यक्रम में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, मुझे 2 अक्टूबर के दिन में याद करने के लिए आकाशवाणी विजयपुराम की सभी टीम को भी मेरी तरफ से नमस्कार और बधाई देना चाहता हूँ। तो आज से 2 अक्टूबर हमारे जातीय पिता महात्मा गांधी का आज जन्मदिन है, तो उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, और पूरे हमारे भारत को और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई देता हूँ।
1: जी, क्या करते हैं आप अमल जी?
2: मैं तो खेत के चार जोड़ते हो, जैसे कि हमारा चाय का खेत है और धान का, और ऐसे है चुपारी वगैरह है।
1: जी, और रेडियो सुनते हैं?
2: जी जी जी, रेडियो सुनते हैं, काम के साथ साथ रेडियो भी लगातार सुनते रहते हैं।
1: जी, गाने सुनना और पसंद करते हैं?
2: जी, गाना सुनना भी पसंद करते हैं, और हमारे इस खुशी में हमारा एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारे आकाशवाणी का एफएम ट्रकबेन कोहिमा का भी आज 9 साल पूरा हो गए, इसकी भी आज बर्थडे है,
1: जी
2: बताना चाहता हूँ।
1: तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: आज तो 2 अक्टूबर है, तो मैं परिवार मूवी का गाना सुनना चाहूँगा, आज है 2 अक्टूबर के दिन।
1: जी जी, तो
2: और मैं कुछ मित्रों को याद करना चाहूँगा। हेलो
1: जी जी, बोलिए।
2: मेरा दोस्त है बिमल बसुमतारी, भाईकोन मुंडा, रमेश पट्रो, संजय मुंडा, गगेराभा, और हमारे देवाशीष हाजुरिका है, और अविनाश तेली जी है, अविनाश तेली का कॉल अभी लग चुका है, उनको भी डेडिकेट रहेगा, और तानुश्री है, भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति, राकेश पूरन वर्मा, शिवा लोहार, इन सबको सुनाना चाहता हूँ मैम।
1: जी अमल जी, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: जी धन्यवाद। जी, जी।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: हेलो डियर फ्रेंड,
0: जी, क्या मेरी बात दीपक मजुमदार से निम्बुतला से हो रही है?
1: जी मैडम,
0: जी, दीपक जी, हमारे इस कार्यक्रम में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम।
0: जी, दीपक जी कैसे हैं आप?
1: एकदम अच्छा है सर। मैडम, धूप निकला है।
0: जी, और क्या करते हैं आप?
1: मैं APWD में काम करता हूँ।
0: जी, रेडियो सुनते हैं?
1: हाँ जी, वो तो मैं बराबर सुनता हूँ, काम करता हूँ और रेडियो सुनते रहता हूँ।
0: जी, कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
1: सब कुछ रेडियो में तो बचपन से ही सुनता हूँ।
0: जी, गाने
1: हर
0: सुनते
1: चीज
0: हैं?
1: मेरे को अच्छा लगे, गाने सुनता हूँ, कोई भी प्रोग्राम होता है सब सुनता हूँ।
0: जी, तो हमारे इस कार्यक्रम में आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: हाँ जी, गांधी जयंती का अवसर पर मैं एक देशभक्ति गाना सुनना चाहता हूँ।
0: जी, देशभक्ति गाना, और किनके साथ
1: जी,
0: सुनना चाहेंगे?
1: ये रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं के साथ और
0: जी
1: सभी देशवासियों के साथ।
0: जी जी दीपक जी, हमारे इस कार्यक्रम में से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जरूर मैडम।
0: जी।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम से। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

0: सभी सुनने वालों को जय श्री।
1: इस श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आपको ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की तारीख अपने आप में बहुत ख़ास है, 2 अक्टूबर। आज हम याद कर रहे हैं उस शख्सियत को जिनकी पहचान सिर्फ उनके नामों से नहीं बल्कि उनके विचारों से बनी। महात्मा गांधी, सादा जीवन, ऊंचे विचार और अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहना, गांधी जी का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। उन्होंने यह सिखाया कि शांत रहकर भी अपनी बात को मजबूती से दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है।

दोस्तों, आज़ादी सिर्फ गुलामी की बेड़ियां टूटने का नाम नहीं, बल्कि अपने देश और अपने फैसलों के लिए खड़े होने का नाम है। इस आज़ादी की राह में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। उन्होंने लोगों को समझाया कि बिना हिंसा के भी बदलाव की एक बड़ी ताकत पैदा की जा सकती है। गांधी जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है।

दोस्तों, आज़ादी का मतलब सिर्फ खुली हवा में सांस लेना नहीं, बल्कि उन वीर सैनिकों को याद भी करना है जो देश की सुरक्षा के लिए हर पल डटे रहते हैं। हम चैन से अपने घरों में हैं क्योंकि सीमा पर कोई अपना पूरी निष्ठा से देश की रक्षा कर रहा है। हमारी आज़ादी में हमारे सैनिकों का साहस और समर्पण भी शामिल है।

दोस्तों, हर देशभक्ति की धुन में एक अनकही कहानी होती है, हिम्मत, फर्ज और बलिदान की। ये हमें उन वीरों की याद दिलाता है जो अपने वतन के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं।

दोस्तों, हमारा भारत, हमारा देश सिर्फ हमारी पहचान नहीं, हमारा गौरव भी है। इस मिट्टी से हमारा रिश्ता दिल का है और तिरंगा हमारी शान है। तो आइए अपने देश पर गर्व करें और दिल से कहें, मेरा भारत, मेरा गौरव।

100.9 MHz पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर है ममता सिंह का।
2: आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करती हुई लॉन में आ गई है। लॉन के किनारे किनारे की घास अभी भी गीली है। क्यारियों में लगे फूलों और पौधों की पत्तियों पर ठहरी ओस की बूंदों पर पड़ती सूरज की किरणें मोती सी चमक रही हैं। धुएं जैसे उड़ते हुए बादल सूरज को ढक लेते हैं। छिपा छिपी खेलती बदली और धूप उसे गुदगुदा रही है। मन भी धूप छाही हो रहा है। घास पर जैसे मोर पंख बिछ गए हों और उसकी आंखें जगर मगर कर रही हों। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था। मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में।

हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे? जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी। उफ, कितना खौफनाक विषय। एक बार तो उसने ना ही कर दिया था, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया, जबकि राइमा ने महिलाओं की सुरक्षा विषय पर बाइट बनाई थी। इरफान ने स्वच्छता अभियान को चुना। पूरी क्लास भर में साइबर क्राइम जैसे विषय पर दिव्या ने पायलट प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं। क्राइम से जुड़े लोगों की पड़ताल करना, उनसे बातें करना, उन्हें कन्विंस्ड करना, फिर उन पर अपनी मनोवैज्ञानिक रिसर्च कर राय बनाकर लिखना। उफ, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। पुलिस स्टेशन जाकर चक्कर काटने पड़े थे। जब पहली बार पुलिस से इस संदर्भ में बातचीत करने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन दिव्या भी कहां हार मानने वाली थी। फ्रेंडशिप क्लब एडल्ट साइट पर जाकर जूझती रही और अपना रिसर्च वर्क करती रही। अनगिनत कागज लिखे और फाड़े। एक बार तो उसे पुलिस वालों का विरोध भी सहना पड़ा। इस जद्दोजहद के बाद अपने दूसरे सब्जेक्ट की विधिवत पढ़ाई करना भी जारी रहा। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई।

शूटिंग में उसे बहुत सारी समस्याएं हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। शूटिंग के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट जब आते तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि कुछ ऐसा हो कि शूटिंग कैंसिल हो जाए, जबकि इस मुश्किल डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने का उसने प्रण खुद ही किया था। सचमुच उसकी प्रार्थना सुन ली जाती, शूटिंग कैंसिल भी हो जाती। एसपी की शूटिंग के दौरान कुछ अलग तरह की समस्याएं होती, जैसे कि सवालों का चुनाव भी वो स्वयं ही करते थे। शुरुआती दिनों में तो मारे घबराहट और डर के रातों को नींद नहीं आती थी। मदद के लिए 5 टीचर्स का पैनल बना था, उसमें आपस में ही पॉलिटिक्स होती थी। हर टीचर खुद क्रेडिट लेना चाहता था। सही मायनों में तो प्रणव सर, जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती।

बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कंपटीशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन।

वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठ कर कमरे में बंद हो गई थी। वॉल साइज विंडो पर लगे पर्दे झटके से खींचकर कमरे में अंधेरा कर एसी चलाकर चादर तान कर लेट गई थी। 7 बजे यहां सूर्यास्त होता है, 8 बजे लोग दफ्तर से घर लौटकर शाम की चाय पीते हैं, ये कोई सोने का वक्त है। उठो दिव्या, दिव्या उठो, कहते हुए पारो ने चादर खींचकर परे सरका दिया। वो सिराने बैठकर दिव्या को दुलराती हुई बोली, भूख हड़ताल से तुम अपने मन की करवा लोगी। दिव्या तमक कर उठ बैठी। तो फिर तो क्या करूं मम्मी, क्या करूं कि मेरी डिमांड पूरी होगी? आखिर इस घर में जरा भी अपनी मर्जी के करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कॉलेज की 10 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं उस कैटवॉक शो में। मम्मा मैं अकेली नहीं हूं, उस शो में सिर्फ 1000 रुपए ही तो फीस है, आखिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग? सवाल रुपए का नहीं है, ड्रेस का है, ड्रेस का। फैशन टीवी की नेकेड लड़कियों की तरह तुम भी पूरा बदन हिलाकर बिल्ली चाल चलोगी? हैं मम्मी, बिल्ली चाल नहीं, कैटवॉक। अरे तो कैटवॉक कर कर मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बन जाओगी। क्या कहेंगे हम लोग अपनी सोसाइटी वालों से? सोसाइटी वाले अब दूर हो गए हैं ना, अब तो चौल की दुनिया से हम टावर में रहने आ गए हैं। अब भी सोसाइटी वालों का आखिर कैसा डर, कैसा खौफ? मम्मी ये सिर्फ फैशन शो है, स्टेज पर कैटवॉक करना है। अरे इस पर हमें प्राइज मिलेगा, आजकल स्कूल कॉलेज में इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। पता है लास्ट ईयर रीना ने जीता था ये अवार्ड, उसे तो आप जानती है ना कितनी अच्छी है रीना। अरे बिटिया हमने हामी भर दी तो तेरे पापा नहीं मानेंगे, जैसे तैसे तेरे पापा को भी मना लिया ना तो तेरे चाचा को खबर लग गई ना तो वो पढ़ाई छुड़वा कर तेरी शादी करवा कर ही दम लेंगे। हाँ अपने पापा को तो तू अच्छी तरह से जानती है ना, चाचा के खिलाफ एक को लफ्ज नहीं सुनते वो। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। ये ड्रेस मत पहनो, स्लीवलेस नहीं चलेगा, शॉर्ट्स मिनी स्कर्ट पहनना तो अलाउड ही नहीं था, सिर्फ कॉलेज जाते वक्त जीन्स और टॉप पहनने की बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल सकी थी, लेकिन साथ में स्टॉल या दुपट्टा डालना जरूरी था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में दिव्या घर से सलवार सूट पहनकर निकलती और रायमा के घर चेंज कर जीन्स टॉप पहनती और उसके बाद कॉलेज जाती। एक दिन चाची ने देख लिया तो खूब हंगामा हुआ। पापा की हर बात मानने वाली मम्मी ने इस बार मर्म को समझा और उन्होंने वेस्टर्न पोशाक पर मुहर लगा दी थी, पर शर्त ये कि गला डीप नहीं होना चाहिए। कॉलेज जाते वक्त किसी लड़के से मेल जोल नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, किसी की बाइक पर लिफ्ट नहीं लेना जैसी नसीहतों की घुट्टी मम्मी रोज पिलाती थी। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना, एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। कभी कभी रायमा की बिंदास बातें उसे सही लगती थीं। सब कुछ अपनी मर्जी से करो, घर वाले कन्विंस्ड ना हो तो उनसे बहाने बनाओ। वो तो अक्सर लड़के लड़कियों के ग्रुप के साथ ट्रैकिंग पर चली जाती थी, उसके घर वाले राजी भी हो जाते थे। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं कि अभी भी गांव वाली मानसिकता उनके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। अरे समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है, विचार उसूल ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। वक्त पर खाना खाना, पैसे कमाना, साल में एकाध बार कहीं परिवार के साथ घूमने जाना, यही

शानो शौकत की जिंदगी है इनके लिए। उनके मुताबिक दिव्या को ये सब तो मिल रहा है। पारो दिव्या को समझाकर परेशान हो गई। दुखी होकर वो कमरे से चली गई। उनके जाते ही दिव्या उठी, अपने कटे बालों में बैकपिन लगाते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आगे पीछे मुड़कर गर्दन टेढ़ी करके हर तरफ से अपने को निहारती हुई अपने ही रूप पर मुग्ध होती रही। रंग सांवला है तो क्या हुआ, रूप और फिगर तो है ना खूबसूरत और चार्मिंग। दिव्या ने वार्डरोब से अपनी टाइट फिट साइड कट मैक्सी निकालकर पहनी, हल्का मेकअप किया और इस तरह मटक कर हाथ हिलाकर बोलती रही जैसे टीवी की कोई वीजे हो। अगर मम्मी पापा राजी हो गए तो पक्का कॉलेज क्वीन का खिताब उसे ही मिलेगा। सोचते हुए आंखें मूंद कर थोड़ी देर के लिए दिव्या अपनी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल की कायद से बाहर निकलकर फैशन शो के भव्य स्टेज पर पहुंच गई थी, जहां सामने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बैठे थे। दर्शकों का हुजूम था, तालियों की गड़गड़ाहट थी। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी, जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब, ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी।

कंग्रेचुलेशंस। अरे किन ख्यालों में खोई हो बार्बी डॉल। इरफान दिव्या से हाई फाई करते हुए बोला। दिव्या अपने कॉलेज के दिनों से छम से कूदकर वापस आ गई हॉस्टल के लॉन में, जहां सर्दी की नरम धूप का एक टुकड़ा दिव्या के नीले स्वेटर पर अटक गया था। क्यारियों में दुपहरिया खिलकर मुस्कुरा रही थी। हॉस्टल की दीवारों पर लटके बोगनविलिया रानी गुलाबी रंग से नहाकर और ताजा हो गए। दिव्या, यू आर वेरी लकी। तुम्हारा प्रोजेक्ट खूब खूब लाइक किया गया है। और पता है, रावत सर लास्ट मीटिंग में तुम्हारी और तुम्हारी बनाई डॉक्यूमेंट्री की चर्चा कर रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। दिव्या बुत बनी बैठी रही। कोई जवाब नहीं दिया उसने। दिव्या के मन में इस समय यादों का भूचाल सा आया हुआ है। हॉस्टल में आए 3 साल हो गए हैं। घर वालों को लेकर वो कभी भी इतनी व्यग्र नहीं हुई, पर आज मम्मी जैसे सामने हैं। सौम्या दी की नसीहतें सामने हैं। दिव्या स्मृतियों की रेतीली आंधी और तपिश से झुलस गई है। उड़ती हुई रेत से दिव्या अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेत की किरकिरी मुंह में भी भरी जा रही है, और जैसे उसका पूरा बदन और मन रूखा हुआ जा रहा है। तपिश और दंश को छोड़ आई है घर पर वो, लेकिन हॉस्टल की जद्दोजहद भी कहाँ कम है। आर्थिक तंगी, पढ़ाई का प्रेशर, प्रोजेक्ट पूरा करने का तनाव और दबाव, रिश्तों के समीकरण, इस सब में निपट अकेले तालमेल बिठाना कितना कठिन हो गया है। एक समय था जब अपनी सारी जिम्मेदारी घर वालों पर थी, सारा दोष घर वालों पर मढ़क देती थी, पर अब अपनी गलतियों की सजा खुद को ही देनी है, खुद को अपनी पीड़ा से भी निकालना है।

0: दिव्या खुद को तपते रेगिस्तान में पाती है, जहां दूर तक वीराना है। मालूम है नियत दूरी तय करने पर उसे लोग मिलेंगे, शहर मिलेगा, पर उस दूरी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और बहुत लंबा संघर्ष है। हॉस्टल के कलीग्स, दोस्तों और टीचर्स के साथ के बावजूद वो खुद को मरुस्थल में जैसे अकेला पाती है। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। कामयाबी कई बार अपनों से भी दूर कर देती है।
1: व्हाट हैपेंड दिव्या, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो?
0: अरे अब तो डॉक्यूमेंट्री से भी पैसे आ जाएंगे ना, तुम्हारी कड़की के दिन भी अब खत्म होने वाले हैं। रिलैक्स, अब सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे नहीं जीना होगा तुम्हें।
1: नहीं यार, खुश हूं, खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। आज पता है, आज मुझे घर वालों की बहुत तलब लगी है, मम्मी की बहुत याद आ रही है।
0: खैर छोड़ो। अरे तो तू उन्हें फोन करके बता दे कि तू बहुत खुश है, तुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, वो लोग भी खुश होंगे ना।
1: नहीं नहीं इरफान, उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। उन्हें पता नहीं है कि हम यहां रात रात भर बॉयज और गर्ल्स साथ साथ काम करते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, लेकिन हम सब सिर्फ एक दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स। वे कभी नहीं समझेंगे मेरी प्रॉब्लम, कभी नहीं समझेंगे। पता है फाइनल एडिटिंग वाले दिन मैं, रायमा और प्रणव सर ने एक ही रूम शेयर किया था, बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी बारी बारी से। उन्हें इन सब की भनक भी लग जाए ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं कौन सा उनके लिए जिंदा हूं, कहां जिंदा हूं मैं उनके लिए। उस दिन मम्मी ने मुझे कह दिया था, तू हम सब के लिए मर चुकी है, मर चुकी है तू हम सब के लिए।
0: छोड़ ना यार, अब आगे की सोच। 2 महीने बाद फंक्शन है, ड्रामा का थीम तैयार हो गया है। इस बार एक ड्रामा और साथ में एक कोरस सॉन्ग भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है? हाँ यार,

गुड आइडिया। पिछले साल का फंक्शन अप टू द मार्क नहीं था, इस बार हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बस 2 साल और बिताकर यहां से सीधा मुंबई वापस लौटूंगी। मम्मी पापा से दूर आई हूं, उन्हें नाराज करके, तो कुछ बनकर ही उनके पास जाऊंगी। मुझे तो टेलीविजन चैनल में काम करना है, बस इतना सा ख्वाब है। हाँ, पर तुझे अब प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो सुना है तेरी बनाई वो साइबर क्राइम वाली डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए अप्रूव हो गई है, वो भी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए। हाँ यार, अभी तो सिर्फ अप्रूव हुई है ना, टेलीकास्ट नहीं हुई है। मेरी सीरियल्स जब कई चैनल पर टेलीकास्ट होंगे तब वो मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। वैसे एक चैनल ने हम सब की डॉक्यूमेंट्री का एक मोन्टाज दिखाया था, रायमा बता रही थी मुझे।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। 12वीं की पढ़ाई

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था। वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। 12वीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। 3 भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था। सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला? हाँ, आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला? अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का? मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या, सौम्या, सौम्या। मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने? तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है। तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में? दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है। जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी। मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं? वहां वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हाँ, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जरूरत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना। हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूं, पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूं मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेट

438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का शिव जयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बजे है। हम अपनी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं तमिल कार्यक्रम।

0: बिल्कुल ठीक हूँ, मैं 65 साल का हूँ, लेकिन अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता हूँ। संतुलित आहार खाता हूँ, अच्छी नींद लेता हूँ और रोज थोड़ा शारीरिक गतिविधि और योग करता हूँ।
1: वाह, बहुत बढ़िया। और समय पर दवाइयाँ लेते हैं?
0: हाँ हाँ, समय पर दवाई लेता हूँ और नियमित स्वास्थ्य जाँच के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भी जाता हूँ। साथ ही परिवार और दोस्तों के साथ व्यस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ, यही मेरी सेहत का राज है।
1: बहुत अच्छा दादाजी।
2: अंडमान और निकोबार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनहित में जारी।
3: நேர்களை நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தொடர்வது ரசிகர் தென்கிண்ணம்.

श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 5:30 हुए हैं। अब पेश है बांग्ला कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। अब पेश है कृषि जगत कार्यक्रम।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को जोया की ओर से प्यार भरा नमस्कार। किसान साथियों, जीवन में सफलता केवल बड़ी उपलब्धियां हासिल करने से ही नहीं मिलती, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाने से भी मिलती है। जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है, वह कठिन परिस्थितियों में भी आशा की किरण खोज लेता है। हमें अपने समय, शब्दों और कर्मों का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय और कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। दूसरों की मदद करना, सम्मान देना, सच्चाई के मार्ग पर चलना और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना ही एक अच्छे जीवन की पहचान है। याद रखिए, हमारी आज की मेहनत और अच्छे कर्म ही हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाते हैं। इन्हीं नेक विचारों के साथ चलिए अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज का प्रश्न है, डायमंड ब्लैक मोथ कीट के प्रबंधन के लिए गोभी वर्गीय सब्जियों के साथ किस फसल को लगाना चाहिए। प्रश्न में एक बार फिर दोहरा देती हूँ, डायमंड ब्लैक मोथ कीट के प्रबंधन के लिए गोभी वर्गीय सब्जियों के साथ किस फसल को लगाना चाहिए। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहिए, कार्यक्रम के दौरान हम इसका उत्तर आपको अवश्य बताएंगे। साथियों, आज गांधी जयंती है। हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, शांति और स्वच्छता के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया और देशवासियों को भी इन मूल्यों पर चलने की प्रेरणा दी। गांधी जी का मानना था कि समाज में वास्तविक परिवर्तन केवल कानूनों से नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की सोच और व्यवहार में बदलाव से आता है। उन्होंने स्वच्छता को स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना। इसलिए गांधी जयंती हमें स्वच्छता, अहिंसा, सत्य, आत्मनिर्भरता और आपसी भाईचारे का संदेश देती है। इस दिन देश भर में स्वच्छता अभियान, प्रार्थना सभाएं, जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाती है। गांधी जयंती हमें संकल्प लेने का अवसर देती है कि हम अपने घर, कार्यस्थल, गांव और समाज को स्वच्छ रखने के साथ साथ अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के मूल्य को भी अपनाएं। और साथियों, स्वच्छ भारत अभियान भी भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाना तथा लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के अंतर्गत लोगों को अपने घर, विद्यालय, कार्यालय, गांव और आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। खुले में शौच की समाप्ति, कचरे का उचित निपटान, गीले और सूखे कचरे को अलग करना, प्लास्टिक के कम उपयोग और स्वच्छ वातावरण पर विशेष जोर दिया जाता है। स्वच्छ भारत केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। यदि हम अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालें और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें, तो हम देश को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक अच्छी आदत और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए हमेशा स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। स्वच्छता अपनाएं, देश को सुंदर बनाएं। चलिए इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा देते हैं श्रीमती बॉबी जी की ये वार्ता, जिसका विषय है सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी।

नमस्कार साथियों, आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि सत्य की ताकत क्या होती है, अहिंसा की शक्ति क्या होती है और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। जी हाँ, आज है 2 अक्टूबर, एक ऐसा दिन जब हम याद भारत के 2 महान व्यक्तित्वों को करते हैं। एक तरफ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया, और दूसरी तरफ है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने सादगी, ईमानदारी और देश सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। आगे चलकर यही मोहनदास करमचंद गांधी पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गांधी जी का जीवन अपने आप में एक संदेश था। उन्होंने हमें बताया कि सत्य की ताकत बहुत बड़ी होती है और बिना हिंसा के भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है। गांधी जी के विचारों में सत्य और अहिंसा का विशेष स्थान था। उनके लिए अहिंसा केवल किसी को शारीरिक नुकसान न पहुंचाने तक सीमित नहीं थी। हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में और हमारे व्यवहार में भी अहिंसा दिखाई देनी चाहिए। आज हम अपने आसपास देखें तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बहस और विवाद बहुत आसानी से शुरू हो जाते हैं, कभी परिवार में, कभी दोस्तों के बीच और कभी सोशल मीडिया पर। ऐसे समय में गांधी जी का अहिंसा का संदेश हमें बहुत कुछ सिखाता है। जरूरी नहीं कि सामने वाला हमसे सहमत हो, जरूरी यह है कि हम उसकी बात सुने और असहमति होने पर भी सम्मान बनाए रखें। 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को याद करने और शांतिपूर्ण तरीकों से समस्याओं का समाधान करने की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, जरा सोचिए, अगर हम अपने जीवन में सिर्फ एक छोटी सी बात अपना ले कि गुस्से में किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, किसी को जानबूझकर दुख नहीं पहुंचाएंगे और किसी विवाद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ हमारे आसपास का वातावरण कितना बेहतर हो सकता है। गांधी जी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से करने चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा समाज बदलना चाहिए, हमारा शहर साफ होना चाहिए, लोग जिम्मेदार होने चाहिए, लेकिन असली सवाल यह है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। अगर हमें स्वच्छ शहर चाहिए तो शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। अगर हमें सम्मान चाहिए तो हमें दूसरों का सम्मान करना होगा। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें अपने व्यवहार में शांति लानी होगी। और दोस्तों, 2 अक्टूबर का दिन इसलिए भी खास है कि क्योंकि इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन सादगी और ईमानदारी का उदाहरण था। उन्होंने देश के सर्वोच्च पदों में से एक पद संभाला, लेकिन उनका जीवन बेहद सरल था। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी उनकी देश के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी। शास्त्री जी का दिया हुआ प्रसिद्ध नारा था, जय जवान जय किसान। कितना छोटा वाक्य है, लेकिन इसमें भारत की ताकत छुपी हुई है। हमारा जवान देश की सीमाओं की रक्षा करता है और हमारा किसान देश के लिए अन्न पैदा करता है। दोनों ही देश की मजबूती के महत्वपूर्ण आधार है। आज जब हम अपने घर में बैठकर भोजन करते हैं तो हमें उस किसान को जरूर याद करना चाहिए जो धूप, बारिश और कठिन परिस्थितियों में खेतों में मेहनत करता है। हमें उस जवान को भी याद करना चाहिए जो अपने परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा में अपना कर्तव्य निभाता है। लेकिन देश सेवा केवल जवान या किसान ही नहीं करते,

देश सेवा हम सभी अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। एक शिक्षक ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा देकर देश की सेवा करता है। एक डॉक्टर मरीज की सेवा कर देश की सेवा करता है। एक सफाई कर्मचारी शहर को स्वच्छ रखने में योगदान देता है। एक विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करके अपने देश के भविष्य को मजबूत करता है। और हम सभी रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों से देश के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्वच्छता की। 2 अक्टूबर के अवसर पर देश भर में स्वच्छता और सेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या स्वच्छता केवल 2 अक्टूबर की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। स्वच्छता एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि रोज़ की आदत होनी चाहिए। हम अपने घर को साफ रखते हैं क्योंकि वह हमारा घर है, लेकिन सड़क, पार्क, स्कूल, समुद्र तट या सार्वजनिक स्थान भी हमारे ही है। अगर हम अपने घर में कचरा नहीं फैलाते तो सार्वजनिक जगहों पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। कूड़ा हमेशा उचित स्थान पर डालना चाहिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वच्छता के लिए हमें किसी बड़े अवसर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर सड़क पर हमें कोई कचरा दिखाई देता है और हम उसे उचित स्थान पर डाल देते हैं तो यह भी एक जिम्मेदार नागरिक होने का उदाहरण है। अगर हम किसी सार्वजनिक स्थल की दीवार को गंदा नहीं करते हैं तो यह भी स्वच्छता है। अगर हम पानी की बर्बादी रोकते हैं तो यह भी देश के प्रति जिम्मेदारी है। अगर हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो यह भी समाज सेवा है। इसलिए सेवा हमेशा बड़ी नहीं होती, कई बार छोटी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी बन जाती है। श्रोताओं, आज के इस खास दिन पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति सड़क पर कचरा फेंकता है तो क्या आप चुप रहेंगे या प्यार से उसे समझाएंगे? अगर सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति आपसे अलग विचार रखता है तो क्या आप उससे लड़ेंगे या शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे? अगर आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है तो क्या आप उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम खुद से शुरुआत करने के लिए तैयार है? क्योंकि अक्सर हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति बदले, लेकिन वास्तविक बदलाव तब शुरू होता है जब हम खुद अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में उतारा। शास्त्री जी ने सादगी और कर्तव्य का उदाहरण दिया। आज हमारा काम है कि हम इन महान व्यक्तियों के विचारों को केवल किताबों और भाषणों तक सीमित न रखें बल्कि अपने जीवन में भी उतारें। आज 2 अक्टूबर के दिन हम एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं। हम सत्य बोलने का प्रयास करेंगे। हम हिंसा और नफरत से दूर रहेंगे। हम अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे। हम प्रकृति की रक्षा करेंगे। हम सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। श्रोताओं, देश केवल नक्शे पर बनी सीमा का नाम नहीं है। देश हम सबसे मिलकर बनता है, हमारे परिवार से, हमारे स्कूल से, हमारे मोहल्ले से, हमारे शहर से और हमारे व्यवहार से। अगर हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आज गांधी जयंती पर हमें उनके सत्य और अहिंसा के संदेश को याद करना है। आज शास्त्री जयंती पर हमें उनकी सादगी और देश प्रेरणा से लेनी है। और आज हमें यह तय करना है कि हम अपने आसपास को थोड़ा बेहतर बनाएं। क्या कर सकते हैं बेहतर बनाने के लिए? तो आइए आज बड़े बदलाव की नहीं बल्कि एक छोटी अच्छी शुरुआत बात करें और आज से यह समझेंगे कि देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी केवल त्योहारों और राष्ट्रीय दिवसों तक सीमित नहीं है। यह जिम्मेदारी हर दिन की है। महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के संदेश को अपने जीवन में अपनाइए। लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी और कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लीजिए और अपने आसपास स्वच्छता और सद्भाव

0: बनाए रखिए। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे होती है। आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी संदेश के साथ आज मैं आपसे विदा लेने की अनुमति चाहती हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।
1: सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी। साथियों, अभी इस विषय पर आपने श्रीमती बॉबी जी से की गई ये वार्ता सुनी। क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्र स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
2: और अब आइए कार्यक्रम के माहौल को बना देते हैं थोड़ा सा रंगीन इस प्यारे से गीत के जरिए।

अभी साथियों आपने ये गीत सुना और हमें लगता है कि इस गीत को आपने जरूर सराहा होगा। साथियों हर वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को वन्य जीवों, पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। वन्य जीवन हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जंगलों में रहने वाले प्रत्येक जीव का प्रकृति में अपना विशेष महत्व होता है। आज जंगल की कटाई, अवैध शिकार, प्रदूषण और प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण कई वन्य प्राणी संकट में हैं। वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान जागरूकता रैलियां, चित्रकला प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, भाषण, वृक्षारोपण और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि वन्य जीव केवल जंगलों की शोभा नहीं है बल्कि प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि किसी एक प्रजाति की संख्या बहुत कम हो जाती है या वह विलुप्त हो जाती है तो इसका प्रभाव पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। इसलिए हमें वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करनी चाहिए और दूसरों को भी उसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए। वन्य जीव बचेंगे तभी जंगल बचेंगे, जंगल बचेंगे तभी हमारा पर्यावरण और भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो चलिए साथियों, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम में कुछ और समय बचा है, हम आपको दे देते हैं ये छोटी सी जानकारी जिसका विषय है मिश्रित कृषि।

किसान साथियों, अब हम कुछ चर्चा करते हैं मिश्रित कृषि प्रणाली के संदर्भ में। समय के साथ साथ खेती बाड़ी की विभिन्न प्रणालियां विकसित हुई हैं, जिनसे कि हमें लाभ होता है। मिश्रित खेती में विभिन्न फसलों को हम एक साथ उगाते हैं। विभिन्न फसलों की वृद्धि का क्रम, उनकी जड़ों की गहराई और उनके पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। यदि दो फसलें जिनमें एक फसल उथली जड़ वाली तथा दूसरी गहरी जड़ वाली हो, तो दोनों मिट्टी की ऊपरी सतह से नमी व उर्वरकों का भरपूर अवशोषण तथा उपयोग करती हैं। इस प्रकार जल और पोषक तत्वों की क्षमता बढ़ने से उनकी उपज बढ़ जाती है। विभिन्न ऊंचाइयों में बढ़ने वाली फसलों के मिश्रण में कम बढ़ने वाली फसलें ऐसी होनी चाहिए जिसे प्रकाश की कम तीव्रता की आवश्यकता हो। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है, कुछ मिश्रण अधिक सफल होता है जबकि कुछ इतना लाभ नहीं दे पाता। नारियल, केला और अदरक मिश्रित फसल प्रणाली में सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग होता है, जिसमें तीनों फसलों की अधिक उपज प्राप्त होती है। नारियल के बागानों से आप केला अदरक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अदरक की फसल को सीधे सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होती और नारियल के पेड़ इतने बड़े होते हैं कि उनके नीचे आप केले की खेती आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला है कि कुछ फसलें ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं जो दूसरी फसलों के लिए लाभप्रद साबित होता है। उदाहरण के तौर पर मूंग की फसल को ज्वार के साथ उगाया जा सकता है, तो मूंग की जड़ों की गांठों में एकत्रित नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा ज्वार को मिल जाता है, जिससे ज्वार की उपज बढ़ जाती है और ऊंचे तथा मजबूत तनों वाली फसलों के साथ बेल वाली फसलों को बोना उपज की दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध हुआ है। इस फसल मिश्रण में मजबूत बेलों वाली फसलों की बेलों को ऊपर चढ़ने में मदद कर उनके फलन को बढ़ा देती हैं। ऊंचे कंद वाली फसलों की छाया ऐसे फसलों के लिए लाभप्रद हो जाती है जिन्हें कड़ी धूप की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अरहर और अनानास, अरहर हल्दी, अरहर अनानास आदि का मिश्रण। अनानास, हल्दी और अदरक ऐसी फसलें हैं जिन्हें धूप की आवश्यकता नहीं होती। किसान भाइयों, कुछ फसलों की उपस्थिति उनकी सहयोगी फसलों को कीड़ों के आक्रमण से भी बचाती है, जैसे मक्का की फसल में ज्वार, लाल मिर्च में सौंफ आदि। अंतर्वर्ती खेती मिश्रित खेती का ही एक रूप है। मिश्रित खेती में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को साथ साथ किसी निश्चित कतार के बिना लगाने की पद्धति है। इसके विपरीत मिश्रित फसल प्रणाली में किसी निश्चित कतार में ही दो या दो से अधिक फसल लगाई जा सकती हैं। अंतर्वर्ती फसल प्रणाली, जिसका उद्देश्य आय में वृद्धि करना है, और दोनों ही पद्धतियों से आजकल खेती की जाती है ताकि किसानों को आर्थिक रूप से लाभ हो। अंतर्वर्ती कृषि मिश्रित खेती का ही एक रूप है। इसमें एक ही खेत और एक ही मौसम में दो अलग अलग

फसलों को साथ साथ किसी निश्चित कतार के बिना लगाने की पद्धति है। इसके विपरीत मिश्रित कृषि में दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित कतार में लगाया जाता है। दोनों ही पद्धतियों का उद्देश्य है किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचे और उनके प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर प्रयोग हो।

0: मिश्रित कृषि। साथियों, अभी इस विषय पर आपने ये छोटी सी जानकारी हासिल की।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: और अब वक्त हो चला है आज आपसे पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर देने का। हमने आपसे पूछा था, डायमंड ब्लैक मोथ कीट के प्रबंधन के लिए गोभी वर्गीय सब्जियों के साथ किस फसल को लगाना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सरसों की फसल को। सरसों की दो पंक्तियां गोभी वर्गीय सब्जियों की हर 25 पंक्तियों के बाद पाश फसल यानी ट्रैप क्रॉप के रूप में लगाना चाहिए। तो अब आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा।
2: इंडिया ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2,00,000 rupees at the UT level and 5,00,000 rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: इसी के साथ आज के हमारे कृषि जगत कार्यक्रम का समय अब यहीं पर पूरा होता है। कल शाम 6 बजे हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी लेकर। और अब जोया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के शिवजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए आकाशवाणी समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा के तहत बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप पर विशेष प्रस्तुति।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप के बारे में। बैंकिंग व्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। आम जनता की बचत से लेकर कारोबारियों को मिलने वाले ऋण और देश में निवेश तक बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका हर स्तर पर महत्वपूर्ण है। लेकिन जब बैंकों द्वारा दिए गए ऋण समय पर वापस नहीं आते और बड़ी मात्रा में NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने लगते हैं, तो इसका असर सिर्फ बैंक की बैलेंस शीट पर नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए समय समय पर बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, निगरानी और बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप यानी बैंकिंग क्षेत्र की सफाई की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, NPA क्या होता है, खराब ऋणों की पहचान और समाधान कैसे किया जाता है, इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। पहले आइए सुनते हैं कैनरा बैंक के महाप्रबंधक श्री देवलीन दत्ता ने आकाशवाणी से बातचीत में बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी साझा की।
2: नमस्कार, आज का टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप। अगर हम पिछले एक दशक में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में हुए बदलाव को देखें, तो बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप भारतीय अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आता है। कुछ वर्ष पहले भारतीय बैंकों, विशेषकर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी बढ़ते हुए NPA की समस्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो लोन सही समय पे ऋण नहीं देने के कारण जो लोन खराब हो जाते हैं, वो काफ़ी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और अन्य सारे बैंक्स में भी काफ़ी कई बड़े कॉरपोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में दिए गए लोन समय पर वापस नहीं आ रहे थे। इससे बैंकों की बैलेंस शीट पर दबाव बढ़ रहा था और उनकी ऋण देने की क्षमता प्रभावित हो रही थी। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने और सरकार ने एक प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले बैंकों को अपने बैलेंस शीट की वास्तविक स्थिति सामने लाने और छिपे हुए तनावग्रस्त जो लोन थे उनको पहचानने के लिए कहा गया। इस प्रक्रिया को कहा गया एसेट क्वालिटी रिव्यू यानी AQR। इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद बैंकों ने ऐसे लोन के लिए अधिक प्रावधान किए। इससे शुरुआती दौर में बैंकों के मुनाफे और पूंजी पर दबाव जरूर पड़ा, लेकिन उसका फायदा यह हुआ कि बैंकिंग व्यवस्था में वास्तविक जो समस्या वो स्पष्ट रूप से सामने आई। इसके साथ ही इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC के माध्यम से बड़े डिफॉल्ट मामलों के साथ समाधान की प्रक्रिया को मजबूत किया गया। सरकार ने PSB बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपनी पूंजी भी डाली ताकि वे पुराने नुकसान जो हुआ था उनको इन NPS से उनको एब्जॉर्ब कर सके और दोबारा ऋण देने की स्थिति में वो आ सके। बाद में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL जैसी संस्थाओं ने भी बड़े स्ट्रेस्ड एसेट्स के समाधान में भूमिका निभाई अपनी। इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम आज भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की बेहतर वित्तीय स्थिति के रूप में दिखाई देता है। बैंकों का टोटल NPA अनुपात काफी नीचे आया है, पूंजी पर्याप्तता मजबूत हुई है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जो कि PSB की प्रॉफिटेबिलिटी में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर की सफाई का अर्थ केवल पुराने NPA ही कम करना नहीं है। असली चुनौती ये भी है कि भविष्य में नए बैड लोन्स ना हो। इसके लिए बेहतर क्रेडिट अप्रेजल

0: मजबूत रिस्क मैनेजमेंट, टाइमली मॉनिटरिंग लोन अकाउंट्स की और प्रोजेक्ट वायबिलिटी का सही आकलन बेहद ज़रूरी है। बैंकों को सिर्फ लोन देना ही नहीं बल्कि लोन की गुणवत्ता पर लगातार नज़र रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसे ही एसेट क्वालिटी कहते हैं। और इस पे अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और अन्य बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है एसेट क्वालिटी पे, एसेट मैनेजमेंट पे। आज जब भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश और क्रेडिट ग्रोथ दोनों बढ़ रहे हैं, तब एक मजबूत और स्वस्थ बैंकिंग व्यवस्था आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ बैंक ज्यादा भरोसे के साथ उद्योग में, एमएसएमई, कृषि, रिटेल सेक्टर में ऋण दे सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि बैंकिंग सेक्टर का क्लीनअप केवल बैंकों को बैलेंस शीट सुधारने की प्रक्रिया ही नहीं थी, इसने भारतीय इकोनॉमी की नींव को मजबूत किया है। धन्यवाद।
1: सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप आखिर क्या है। इसका मतलब बैंकों की उन वित्तीय समस्याओं की पहचान करना और उन्हें व्यवस्थित तरीके से दूर करना है जो बैंक की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर सकती है। इस प्रक्रिया में बैंक अपने पुराने और जोखिम वाले ऋणों की समीक्षा करते हैं। यह देखा जाता है कि कौन सा ऋण समय पर वापस आ रहा है और कौन सा ऋण लंबे समय से अटका हुआ है। अगर किसी ऋण की वसूली में समस्या आती है तो बैंक उसके लिए आवश्यक प्रावधान करते हैं और नियमों के अनुसार उसके समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। यानी आसान शब्दों में कहे तो बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप का उद्देश्य बैंक की बैलेंस शीट को वास्तविक और पारदर्शी बनाना तथा बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत करना है। अब बात करते हैं एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। जब किसी बैंक द्वारा दिया गया ऋण या उसकी किस्त निर्धारित समय तक नहीं चुकाई जाती और वह नियामकीय मानकों के अनुसार गैर निष्पादित परिसंपत्ति की श्रेणी में आ जाता है तो उसे एनपीए कहा जाता है। मान लीजिए किसी व्यवसायी ने बैंक से ऋण लेकर अपना कारोबार शुरू किया। शुरुआत में वह नियमित रूप से ईएमआई चुका रहा था लेकिन बाद में कारोबार में समस्या आने के कारण वह ऋण की किस्तें नहीं चुका पाया। यदि भुगतान में गंभीर और निर्धारित अवधि तक लगातार चूक होती है तो वह ऋण एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। यह बैंक के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि बैंक ने जिस राशि को वापस आने की उम्मीद में ऋण दिया था उसकी वसूली अनिश्चित हो जाती है। अब सवाल है आखिर बैंकिंग क्षेत्र में क्लीनअप की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, गलत या अत्यधिक जोखिम वाला ऋण। दूसरा, आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव। तीसरा, परियोजनाओं में देरी। चौथा, कमजोर ऋण निगरानी। ऋण देने के बाद उसकी निगरानी और जोखिम प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। अगर समस्या की पहचान समय पर नहीं होती तो नुकसान बढ़ सकता है। इसलिए बैंकिंग क्लीनअप का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है समस्या को छिपाने के बजाय समय पर पहचानना और उसका समाधान करना। बैंकिंग क्षेत्र की सफाई केवल खराब ऋणों को हटाने का नाम नहीं है, इसमें कई स्तरों पर काम होता है। पहला, ऋणों की पहचान और समीक्षा। बैंक यह देखते हैं कि उनके ऋण पोर्टफोलियो की वास्तविक स्थिति क्या है। दूसरा, प्रावधान यानी प्रोविजनिंग। जिन ऋणों में नुकसान का जोखिम होता है उनके लिए बैंक नियमानुसार आवश्यक प्रावधान करते हैं। तीसरा, वसूली और समाधान। जहां संभव हो बकाया ऋण की वसूली या समाधान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। चौथा, कमजोर खातों की निगरानी। भविष्य में ऐसे खाते खराब स्थिति में ना पहुंचे इसके लिए जोखिम प्रबंधन को मजबूत किया जाता है। पांचवा, पारदर्शिता। बैंक की वित्तीय स्थिति वास्तविक रूप में सामने आए यह भी क्लीनअप का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सवाल यह है कि इसका आम बैंक ग्राहक से क्या संबंध है। दरअसल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी तो उसका फायदा पूरे बैंकिंग सिस्टम को मिलता है। एक स्वस्थ बैंकिंग व्यवस्था में बैंक अपने संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं और योग्य ग्राहकों तथा कारोबारों को ऋण उपलब्ध कराने की क्षमता मजबूत होती है। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में बेहतर जोखिम प्रबंधन से वित्तीय स्थिरता को मजबूती मिल सकती है।

0: कि यह समझना भी ज़रूरी है कि बैंकिंग क्लीनअप का मतलब यह नहीं है कि हर ऋण की वसूली तुरंत हो जाएगी या हर समस्या समाप्त हो जाएगी। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जब बैंकों के पास बड़ी मात्रा में खराब ऋण जमा हो जाते हैं तो बैंक की पूंजी और संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है। बैंक को ऐसे ऋणों के संभावित नुकसान के लिए प्रावधान करना पड़ता है। इसका असर बैंक की ऋण देने की क्षमता पर भी पड़ सकता है। इसके विपरीत जब बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और जोखिम बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जाता है तो बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह की अपनी भूमिका अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकते हैं। यही कारण है कि बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सेहत को व्यापक आर्थिक स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है। इसे बैड लोन का अर्थव्यवस्था पर असर कहते हैं। क्लीनअप के साथ प्रिवेंशन भी जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप केवल पुराने खराब ऋणों के समाधान तक सीमित नहीं होना चाहिए। भविष्य में ऐसी स्थिति कम बने इसके लिए प्रिवेंशन यानी रोकथाम भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए बैंकों को ऋण देने से पहले उचित जांच, ग्राहक की भुगतान क्षमता का आंकलन, जोखिम की पहचान, ऋण के उपयोग की निगरानी, समय पर चेतावनी संकेतों की पहचान और मजबूत रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना होता है। यानी बैंकिंग क्षेत्र में केवल प्रॉब्लम को साफ करना ही नहीं बल्कि प्रॉब्लम दोबारा पैदा ना हो यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। बैंकिंग व्यवस्था में नियामकीय निगरानी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी रेगुलेटरी सुपरविजन। नियामक संस्थाएं बैंकों की वित्तीय स्थिति, जोखिम प्रबंधन और नियमों के अनुपालन पर नजर रखती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति को सही तरीके से रिपोर्ट करे और ग्राहकों के धन तथा बैंकिंग व्यवस्था की स्थिरता से जुड़े जोखिमों का उचित प्रबंधन करे। मजबूत निगरानी से समस्याओं की पहचान अपेक्षा जल्द ही की जा सकती है। बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप के प्रमुख फायदे। अब संक्षेप में इसके प्रमुख फायदे समझाते हैं आपको। पहला, पारदर्शिता बढ़ती है। बैंक की वास्तविक वित्तीय स्थिति अधिक स्पष्ट होती है। दूसरा, बैंकों की वित्तीय सेहत मजबूत करने में मदद मिलती है। तीसरा, जोखिम प्रबंधन बेहतर हो सकता है। चौथा, ऋण देने की क्षमता को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। और पांचवा, निवेशकों और जमाकर्ताओं का भरोसा मजबूत करने में योगदान मिल सकता है। और छठा है, पूरे अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता को समर्थन मिल सकता है। क्या क्लीनअप का मतलब सिर्फ बड़े कॉरपोरेट ऋणों से है? जी नहीं। बैंकिंग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के ऋण होते हैं। व्यक्तिगत ऋण, कृषि ऋण, MSME ऋण, आवास ऋण और बड़े कारोबारी ऋण आदि। हर प्रकार के ऋण में जोखिम की प्रकृति अलग हो सकती है। इसलिए बैंकिंग क्लीनअप का व्यापक उद्देश्य पूरे ऋण तंत्र में जिम्मेदार लेंडिंग, बेहतर मॉनिटरिंग और उचित रेजोल्यूशन को बढ़ावा देना है। आम खाताधारक के लिए क्या सीख है? आम ग्राहक के लिए भी वित्तीय अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने बैंक से ऋण लिया है तो EMI समय पर चुकाना, ऋण की शर्तों को समझना और किसी वित्तीय परेशानी की स्थिति में बैंक से समय पर संपर्क करना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति या व्यवसाय के लिए ऋण केवल पैसा प्राप्त करने का माध्यम नहीं है बल्कि उसके साथ समय पर भुगतान की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। श्रोताओं, आज हमने जाना कि बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप का अर्थ केवल बैंकों की किताबों से खराब ऋण हटाना नहीं है। यह एक व्यापक प्रक्रिया है। समस्या की पहचान, सही आंकलन, उचित प्रावधान, ऋण समाधान, बेहतर निगरानी और भविष्य के जोखिमों की रोकथाम। एक मजबूत बैंकिंग व्यवस्था के लिए जरूरी है कि बैंक पारदर्शी तरीके से काम करे, जोखिम को समझे और जिम्मेदारी के साथ ऋण दे। क्योंकि मजबूत बैंकिंग व्यवस्था का संबंध केवल बैंकों से नहीं बल्कि जमाकर्ताओं, कारोबारियों, निवेशकों और पूरी अर्थव्यवस्था से है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम स्वच्छता ही

सेवा के तहत बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप पर विशेष प्रस्तुति सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। अब पेश है लम्हे की दूसरी कड़ी।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्याएं इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्याएं इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप की स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो ये दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्तवाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्तवाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये एक क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये है दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिर दर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन

महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खान पान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए, ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना, मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम संध्या 7:05 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। 7:15 पर प्रसारित होगा मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। संध्या 7:20 पर प्रस्तुत होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युवाणी के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत होगा हेलो फ्रेंड्स फोन इन प्रोग्राम, जिसमें चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और वन्य जीव सप्ताह। रात्रि 8 बजे आनंद लीजिए चित्रपट संगीत का। रोजगार समाचार व गौरव गान का समय रहेगा रात्रि 8:30। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर करंट अफेयर्स, जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी रात्रि 10 बजे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। वहीं विविध भारती मुंबई से प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। रात्रि 10:20 पर आपको कुछ फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा की शुरुआत होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स का समय रहेगा प्रातः 5:55। सवेरे 6:10 पर सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा सफ़र शीर्षक पर सवेरे 6:15 पर। सवेरे 6:30 पर रामचरितमानस गान, वतन के गीत सुनिए 6:40 पर। सवेरे 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। जन सूचनाएँ सवेरे 7 बजे। 7:15 पर विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वहीं प्राइमरी चैनल पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागनी। सवेरे 7:30 पर हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो डॉक्टर। विषय होगा बच्चों में संक्रमण पहचान और बचाव, तथा विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शाहीन कौरा। प्रस्तुतकर्ता होगी जयशीला। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर आप अनेक कलाकारों को सुनेंगे। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम का आनंद लीजिए सवेरे 9 बजे। सवेरे 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण के अवसर पर समाचार सेवा विभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। सवेरे 9:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। कशिश कार्यक्रम सुना जा सकता है सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रसारित किया जाएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। गीत अतीत कार्यक्रम का आनंद लीजिए दिन के 11:30। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12 बजे। दोपहर 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम। सुगम संगीत में दोपहर 1:10 पर आप अनुप जलोटा, तलत महमूद और शारदा को सुन पाएंगे। दोपहर 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर आप सुन पाएंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक और 3:30 पर कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी निकोबारी कार्यक्रम के साथ 4 बजे। शाम 4:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की तीसरी कड़ी। कार्यक्रम का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। शाम 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। शाम 5 बजे सुनिए तमिल कार्यक्रम। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30। किसानवाणी कार्यक्रम का में शाम 6 बजे गायों के पालन, दुग्ध उत्पादन, श्रीमती पी पांडेय अम्मा से की गई बातचीत आप सुन पाएंगे। आमने सामने कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:30। संध्या 6:45 पर आप वजन घटाओ विषय पर झलकी सुनेंगी। संध्या 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाओं का समय रहेगा 7:15। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7

7 बजे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, कल किसानवाणी कार्यक्रम में आप शाम 6 बजे गायों के पालन दुग्ध उत्पादन श्रीमती पी पंडई अम्मा से की गई बातचीत सुन पाएंगे। आमने सामने कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:30।

श्रोताओं, आज संध्या 7:20 पर आप युववाणी के तहत कार्यक्रम होगा हेलो फ्रेंड्स, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और वन्यजीव सप्ताह विषय पर आप जानकारी सुनेंगे। आज रात 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। कल सवेरे 5:55 पर एग्रीटिप्स में जानकारी का विषय रहेगा मिर्च की खेती। कल सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा सफर शीर्षक पर। कल सवेरे 7:30 पर हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो डॉक्टर। विषय होगा बच्चों में संक्रमण पहचान और बचाव। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शाहीन कौरा। प्रस्तुतकर्ता होंगी जय शीला। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल आप 8:30 पर अनेक कलाकारों को सुनेंगे। श्रोताओं, हम आपको बता दें कल सुबह 9:10 पर आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम सुन पाएंगे।

कल रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे चित्रपट संगीत, रात्रि 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के अलावा कल रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती आप सुन पाएंगे और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुना जा सकता है, जिसमें आप रफीक खान का बजाया सारंगी सुनेंगे।

0: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें 7:20 पर युवाणी के तहत कार्यक्रम होगा हेलो फ्रेंड्स, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और वन्य जीव सप्ताह विषय पर जानकारी आप सुन पाएंगे। आज रात 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। कल सवेरे 5:55 पर एग्री टिप्स की जानकारी का विषय होगा मिर्च की खेती। कल सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा सफर शीर्षक पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:05 होने वाले हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में मुक्केबाजी और तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने पर महिला खिलाड़ियों को बधाई दी। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मनाई गई। कला एवं संस्कृति विभाग द्वीप समूह के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से लोगों को परिचित कराने के उद्देश्य से नियमित हेरिटेज वॉक आयोजित करेगा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 सत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर सहित विभिन्न कार्यक्रमों में नए प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 अक्टूबर कर दी है। सांध्य समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 75 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि लवलीना की ताकत, सटीकता और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि अपने जन्मदिन पर स्वर्ण पदक जीतने से यह अवसर और भी खास हो गया है। राष्ट्रपति ने तीरंदाजी की रिकर्व महिला टीम स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने पर अंकिता भगत, कुमकुम अनिल महोद और कीर्ति को बधाई दी। उन्होंने रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर धीरज बोम्मा देवरा और कुमकुम अनिल महोद को भी बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि उनके शानदार प्रदर्शन से भारत ने इस स्पर्धा में पहली बार रजत पदक जीता है। भारत ने अब तक 15 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित कुल 75 पदक जीते हैं। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मनाई गई। मुख्य समारोह सुबह 8:14 पर गांधी पार्क में आयोजित हुआ, जहां उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा प्रार्थना और रामधुन का गायन हुआ। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी का जन्म उत्सव आज जन जन का आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि हम सत्य पर चलेंगे, हम मिलकर चलेंगे, हम जाति धर्म से ऊपर उठकर एक राष्ट्र धर्म पर चलेंगे।
1: मैंने आनंदित भाव को मैंने महसूस किया। ये बापू जी के आज श्री चरणों में हमारा उद्घोष है और यह उद्घोष एक संकल्पना के रूप में बदल जाए और हमारी कल्पना ये हो हम सत्य पर चलेंगे, हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलेंगे, हम मिलकर चलेंगे, हम जाति धर्म से ऊपर उठकर एक राष्ट्र धर्म के आधार पर चलेंगे। ये शपथ और संकल्प का आज का दिन बापू के जन्म दिवस के अवसर पर नैतिकता और सिद्धांत के आधार पर राष्ट्र के नेतृत्व करने के भाव का संकल्प आज लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म के अवसर पर हम सब मिलकर लेते हैं।
0: पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के तहत लाइव स्टॉक फार्म कॉम्प्लेक्स डॉलीगंज के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में निदेशक डॉ. के ए. नवीन ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इस तरह के जागरूकता और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। यह सत्र पोष अधिनियम शिक्षक एवं वरिष्ठ विषय विशेषज्ञ रुबीना सिद्दीकी द्वारा संचालित किया गया, जिन्होंने पोष अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, कार्यस्थल की गरिमा, यौन उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायतों की रिपोर्टिंग तथा निवारण के लिए उपलब्ध तंत्रों पर एक ज्ञानवर्धक और संवाददात्मक प्रस्तुति दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है हेरिटेज वॉक और इग्नो। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कला एवं संस्कृति विभाग द्वीप समूह के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत

से लोगों को परिचित कराने के उद्देश्य से नियमित हेरिटेज वॉक आयोजित करेगा। कल विश्व युद्ध द्वितीय पर आधारित हेरिटेज वॉक आयोजित की जाएगी। यह वॉक सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक होगी और सेलुलर जेल से शुरू होकर बैटल ऑफ अबरडीन मेमोरियल, बंकर, अंडमान क्लब, फरजंद अली मार्केट, नेताजी क्लब, जुल्फिकार अली स्मारक, क्लॉक टावर होते हुए गांधी पार्क के बंकर और शिंतो श्राइन तक जाएगी। इतिहासकार डॉ. प्रणब कुमार सरकार प्रतिभागियों को विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी देंगे। हेरिटेज वॉक में पर्यटकों, विद्यार्थियों, पर्यटक गाइडों, टूर ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों और अंडमान के विरासत में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भाग लेने का अवसर है। इच्छुक व्यक्ति कला एवं संस्कृति विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 सत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर सहित विभिन्न कार्यक्रमों में नए प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 अक्टूबर कर दी है। विद्यार्थी पीजी, यूजी, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सहित विभिन्न क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा कृषि, स्वास्थ्य विज्ञान, विदेशी भाषाओं, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन, जनसंचार एवं मीडिया, यात्रा एवं पर्यटन, अनुवाद अध्ययन तथा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। नियमित संस्थानों में यूजी या पीजी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी भी इग्नू की ड्यूअल डिग्री स्कीम के तहत अध्ययन कर सकते हैं। नए प्रवेश की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक विद्यार्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट के स्टूडेंट सर्विस एडमिशन सेक्शन के माध्यम से इग्नू सामर्थ पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने बम्बूफ्लाट टापू बस्ती निवासी मदेसी वेंकट स्वामी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उनका आज दोपहर 1:30 बजे निधन हो गया। राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र समाज कल्याण निदेशालय ने महिलाओं के ज्ञान, कौशल, उद्यमिता और आजीविका के अवसरों को मजबूत करने के उद्देश्य से सितंबर महीने के दौरान कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। इस श्रृंखला की शुरुआत 9 सितंबर को युवाओं के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के महत्व पर एक जागरूकता सत्र के साथ हुई। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को मिशन शक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 18 सितंबर को होप फाउंडेशन भातुबस्ती में बजट, वित्तीय नियोजन और वित्तीय स्वतंत्रता के रास्तों को कवर करते हुए वित्तीय साक्षरता पर एक जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया था। 23 से 25 सितंबर तक शहीद द्वीप में कृषक महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और युवा महिला उद्यमियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले फलों में मूल्य संवर्धन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में स्थानीय फल आधारित उत्पाद, कृषि अनुभव, स्थानीय रूप से तैयार खाद्य उत्पाद, आकर्षक उपहार पैक, फल आधारित स्मृति चिन्ह और अन्य उत्पाद विकसित करने के अवसरों पर प्रकाश डाला गया जो पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में मुक्केबाजी और तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने पर महिला खिलाड़ियों को बधाई दी। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मनाई गई। कला एवं संस्कृति विभाग द्वीप समूह के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से लोगों को परिचित कराने के उद्देश्य से नियमित हेरिटेज वॉक आयोजित करेगा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 सत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर सहित विभिन्न कार्यक्रमों में नई प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 अक्टूबर कर दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही।

0: संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलियाना को यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 3 अक्टूबर को सुबह 6 बजे MV नॉर्थ पैसेज श्रीविजयपुरम से रंगत के लिए रवाना होगा। यह जलयान स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत पहुंचेगा। इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत कल सुबह 6:15 पर श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। इस जलयान की वापसी उसी दिन सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। स्वराजदीप जाने के लिए MV बम्बुका कल सुबह 6:15 पर श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। सुबह 8:45 पर स्वराजदीप से यह जलयान श्रीविजयपुरम के लिए वापस लौटेगा। MV वंडूर कल सुबह 7 बजे श्रीविजयपुरम से रंगत के लिए प्रस्थान करेगा। रास्ते में ये शहीद द्वीप स्वराजदीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत पहुंचेगा। अगले दिन 4 अक्टूबर को सुबह 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए ये श्रीविजयपुरम वापस आएगा। कल सुबह 11 बजे की सेवा में MV रानीचंगा श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से ये स्वराजदीप के लिए प्रस्थान करेगा। इसके बाद दोपहर 2:30 पर स्वराजदीप से श्रीविजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। कल 11:30 पर MV बम्बुका श्रीविजयपुरम से स्वराजदीप के लिए रवाना होगा। दोपहर 2 बजे स्वराजदीप से ये शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। इसकी वापसी दोपहर 3:30 पर श्रीविजयपुरम से विजयपुरम के लिए होगी। कल दोपहर 2:30 पर MV जॉली बॉय श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से यह जलयान श्रीविजयपुरम अपनी वापसी यात्रा करेगा। MV स्ट्रेट आइलैंड शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से स्वराजदीप के लिए रवाना होगा। अगले दिन 4 अक्टूबर को सुबह 5:30 पर स्वराजदीप से शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। MV भारत सीमा कल रात्रि 8 बजे श्रीविजयपुरम से डिगलीपुर के लिए प्रस्थान करेगा। यह जलयान मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 4 तारीख को दोपहर 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। अब सुनिए जन सूचनाएं। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के विद्युत विभाग द्वारा सूचित किया जाता है, चाथम पावर हाउस में स्थापित ट्रांसफार्मर से संबंधित आवश्यक रखरखाव कार्य के कारण कल 3 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। इस दौरान बुनियादाबाद आकाशवाणी DDK कॉलोनी दिलानीपुर व प्रेमनगर के कुछ क्षेत्र कोस्ट गार्ड एनक्लेव कोस्ट गार्ड मुख्यालय कोस्ट गार्ड जट्टी पानीपत रोड तथा फॉरेस्ट्री मुख्यालय क्षेत्र प्रभावित रहेंगी। विद्युत विभाग उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधाओं के लिए खेद व्यक्त करता है। जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। श्रोताओं आइए

इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं मेरे सन सनम फिल्म के एक गीत के साथ, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने तथा इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: श्रोताओं, आपके लिए एक आवश्यक सूचना।
1: कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। रविवार 4 अक्टूबर से प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों में कुछ फेर बदल किया गया है। अब हर रोज सुबह 6:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न भाषाओं के भक्ति गीत। सोमवार बांग्ला, मंगलवार तेलुगु, बुधवार मलयालम, बृहस्पतिवार बांग्ला, शुक्रवार तमिल, शनिवार निकोबारी तथा रविवार तमिल भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। इसके अलावा अब इंद्रधनुष कार्यक्रम सुबह 6:15 की बजाय

0: सवेरे 7:15 पर प्रसारित होगा।
1: रविवार सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं,
0: और 7:45 पर सुनिए कुछ फिल्में गीत।
1: ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना।
2: श्रोताओं, दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं मेरे सनम फिल्म से। इस गीत को अपनी आवाज़ें दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। बोल मजरू सुल्तानपुरी के है तथा धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, मेरे सनम फिल्म के इस गीत के साथ ही दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाणी कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जिंदगी में हर दिन एक नया अवसर देती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए धैर्य और सकारात्मक दृष्टि की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत मानता है, वही आगे चलकर बड़ी सफलताओं का इतिहास रचता है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उससे प्रेरणा लेना सीखिए। अपने शब्दों में विनम्रता, व्यवहार में सादगी और कर्मों में ईमानदारी बनाए रखिए, क्योंकि यही गुण इंसान की सबसे बड़ी पहचान बनते हैं। याद रखिए, भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम आपके निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प ही करते हैं। इसलिए हर दिन मुस्कुराइए, सीखते रहिए और विश्वास रखिए कि आपका सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, गांधी जयंती हर वर्ष 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मनाई जाती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलते हुए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी का जीवन सादगी, अनुशासन, आत्मविश्वास और मानवता का संदेश देता है। वे मानते थे कि सच्चाई और अहिंसा के माध्यम से बड़े परिवर्तन लाया जा सकता है। गांधी जयंती हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने और समाज में प्रेम, शांति तथा सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जयंती हर वर्ष आज के दिन यानी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इसी दिन वर्ष 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी अपने सरल जीवन, विनम्र स्वभाव, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने देशवासियों को जय जवान जय किसान का प्रेरणादायक नारा दिया। उनका जीवन सादगी, अनुशासन और सेवा का उदाहरण रहा। वे कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते थे। उनकी जयंती हमें ईमानदारी, मेहनत, सादगी और देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की प्रेरणा देती है।

0: दोस्तों, आज गुरुवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का हमारा यह पहला कॉल। हेलो फ्रेंड्स
1: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते, मेरी किनसे बात हो रही है?
1: जी। मैडम संतोष कुमार राव बात कर रहा था, आदिवासी बहुल क्षेत्र उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी संतोष जी, कैसे हैं आप?
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आकाशवाणी श्री विजयपुर का प्रसारण सुनते हैं। स्थानीय प्रसारण के सेवा के साथ कार्यक्रम युवा वाणी का आनंद उठाते हैं मैडम। बहुत ही रोचक जानकारियों के साथ आपका प्रतिपूर्ण कार्यक्रम सुनते हैं मैडम।
0: जी संतोष जी, वैसे आप करते क्या हैं?
1: मैं वार्ताकार हूँ मैडम, आकाशवाणी स्टूडियो शहडोल पर मौजूद होता हूँ। मैं लेखन का काम करता हूँ, साथ में एंकरिंग का काम का भी मुझे मिलता है किसान वाणी कार्यक्रम के लिए।
0: जी, तो संतोष जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: बहुत ही प्यारा सा गाना है, मूवी का नाम है धड़कन। गाने के बोल हैं, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों से मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो यार आते हैं।
0: जी, और ये गीत आप अपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: ये गाना मैं पहुंचाना चाहूंगा सम्मानित श्रोता मित्र है मांगीलाल चंदेल जी, गुना सनौतिया मध्य प्रदेश के श्रोता, और इस गीत में सम्मिलित है गोविंद वैष्णव जी राजगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता, मेरी प्यारी दीदी है सप्तमी विष्णु कुंडम जी, और मेरी सिस्टर भारती राव, सभी समस्त लोगों के साथ ये कार्यक्रम में गाना सुनना चाहूंगा मैडम।
0: जी, तो संतोष जी, चलिए सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: अनिल कौचालिया इंडेक्स से बात कर रहे हैं
0: जी। अनिल जी, कैसे हैं आप?
1: इस समय हम बैंक में हैं, वहीं से आपसे बात कर रहे हैं। और यहाँ इंदौर में भीषण गर्मी पड़ रही है, 35 डिग्री तापमान है आज का
0: जी। तो अनिल जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है सपने साजन के, आवाज है अनका याग्नि, कुमार सानू और साथियों की, और गीत है मेरा पागल जियाना मानिए
0: जी। और ये गीत आप अपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: ये गीत हम आपके साथ और आकाशवाणी विजयपुरम की पूरी टीम के साथ सुनना चाहेंगे
0: जी। तो चलिए अनिल जी, ने सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: जी नमस्ते
0: जी, नमस्कार। मेरी किनसे बात हो रही है?
1: जी। मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
0: जी हारून जी, कैसे हैं आप?
1: बस बहुत अच्छे हैं। और आप कैसी हो?
0: जी मैं भी ठीक हूँ। तो हारून जी, आप करते क्या हैं?
1: हाँ, खेती बाड़ी करते हैं
0: जी, और आज का आपका दिन कैसा गया?
1: जी। अच्छा है, अच्छा गया। सोयाबीनों की कटाई चल रही है इस वक्त।
0: जी, तो हारून जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, ओके। फिल्म का नाम है तेरे नाम,
0: जी
1: गाने के बोल हैं तुमसे मिलना बातें करना, कितना अच्छा लगता है।
0: जी और ये गीत आप अपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी आप हैं
0: जी धन्यवाद।
1: प्रस्तुम कुमार हैं, गजरा रोधी हैं, रुकेत वर्मा हैं, भगवान सिंह परमार सिंह हैं, शारदा प्रसाद हैं, विजय पांडे हैं, राकेश शिमला हैं, मांगीलाल चंदेल गुना के हैं, आर भाई हैं, मुरादाबाद के हैं। जो श्रोता सुन रहे हैं सभी के लिए रहेगा।
0: तो चलिए हारून जी, सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

श्रोताओं, अभी आप युवाणी कार्यक्रम के तहत हेलो फ्रेंड्स फोन इन प्रोग्राम सुन रहे थे। चर्चा का विषय था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और वन्य जीव सप्ताह।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनते हैं घरौंदा फिल्म का एक गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ें दी है रूना लैला और भूपेंद्र ने, बोल गुलजार के हैं तथा धुन बनाई है जयदेव ने।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक

श्रोताओं, आइए अगला गीत सुनते हैं। एक फूल दो माली फिल्म से इस गीत को अपनी आवाज़ें दी है आशा भोसले और साथियों ने। बोल प्रेम ध्वनि के है तथा धुन बनाई है रवि ने।

0: कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। रविवार 4 अक्टूबर से प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों में कुछ फेर बदल किया गया है। अब हर रोज सुबह 6:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न भाषाओं के भक्ति गीत। सोमवार बांग्ला, मंगलवार तेलुगु, बुधवार मलयालम, बृहस्पतिवार बांग्ला, शुक्रवार तमिल, शनिवार निकोबारी तथा रविवार तमिल भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। इसके अलावा अब इंद्रधनुष कार्यक्रम सुबह 6:15 की बजाय सवेरे 7:15 पर प्रसारित होगा। रविवार सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं, और 7:45 पर सुनिए कुछ फिल्मी गीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना।
1: श्रोताओं, आइए चित्रपट संगीत में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हंसते जख्म फिल्म से अगला गीत। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत रचना के बोल लिखे हैं कैफ आजमी ने, इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: श्रोताओं, आइए अगला गीत सुनते हैं एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के एक गीत की। इस गीत को अपनी आवाज़ें दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। बोल राजा मेहदी अली खान का है तथा संगीत ओपी नैयर का है।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। रविवार 4 अक्टूबर से प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों में कुछ फेरबदल किया गया है। अब हर रोज सुबह 6:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न भाषाओं के भक्ति गीत। सोमवार बांग्ला, मंगलवार तेलुगु, बुधवार मलयालम, बृहस्पतिवार बांग्ला, शुक्रवार तमिल, शनिवार निकोबारी तथा रविवार तमिल भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। इसके अलावा अब इंद्रधनुष कार्यक्रम सुबह 6:15 की बजाय सवेरे 7:15 पर प्रसारित होगा। रविवार सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं, और 7:45 पर सुनिए कुछ फिल्मी गीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना।

श्रोताओं, आइए चित्रपट संगीत में अगला गीत सुनते हैं हर्जी फिल्म के एक गीत के साथ। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। बोल विताल भाई पटेल के हैं तथा धुन बनाई है राहुल देव परमन ने।

श्रोताओं आइए चित्रपट संगीत में अगला गीत सुनते हैं, गीता मेरा नाम फिल्म से। इस गीत को अपनी आवाज़ें दी है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल तैयार किए हैं राजेंद्र कृष्णन ने तथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

श्रोताओं, गीता मेरा नाम फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रोजगार समाचार। पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड अंडमान एवं निकोबार प्रशासन भर्ती सूचना। पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड अंडमान एवं निकोबार प्रशासन श्रीविजयपुरम में एक वर्ष की अनुबद्ध अवधि के लिए 90,000 प्रतिमाह के वेतन पर 2 इनलैंड वेसल सर्वेयर के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड अंडमान और निकोबार प्रशासन श्रीविजयपुरम के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होने वाले

वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो। उम्मीदवारों को अपने साथ शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज, बायोडाटा तथा स्व सत्यापित प्रतियों का एक सेट साथ लाना अनिवार्य है। विस्तृत पात्रता मापदंड के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.andaman.nic.gov.in के वैकेंसी अनाउंसमेंट सेक्शन से भर्ती नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सहायक निदेशालय प्रशासन पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड। फ़ोन नंबर है 03192233689। ईमेल है ad.pmb@and.nic। अब दूसरी रोजगार समाचार। ICDS प्रोजेक्ट फ्रारगंज दक्षिण अंडमान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कन्यापुरम के न्यायपुरम 2 में हेल्पर की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद की संख्या है 1। आंगनवाड़ी हेल्पर पद के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र होंगी, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। उम्मीदवार उसी गांव की निवासी होनी चाहिए जहां आंगनवाड़ी केंद्र स्थित है। प्री स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण या सामुदायिक कार्य में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी आधार पर होगी। प्रतिमाह मानदेय 8,000 दे होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र, आवश्यक स्वयं सत्यापित दस्तावेज के साथ 9 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे या उससे पहले बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO ICDS प्रोजेक्ट फ्रारगंज के कार्यालय में जमा करना होगा। संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज 12वीं कक्षा पास का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पहचान और पते का प्रमाण पत्र, उम्मीदवार गांव में अपने निवास की पुष्टि के लिए अपने स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों को चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना यथासमय दी जाएगी। आवेदन पत्र संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र और CDPO कार्यालय ICDS प्रोजेक्ट फ्रारगन से कार्य समय के दौरान प्राप्त किया जा सकता है। रोजगार समाचार अब यहीं समाप्त हुई। अब सुनिए गौरव गान।

श्रोताओं, अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी 8:45 पर आप समाचारों का प्रसारण सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में

0: लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुंचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
3: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
2: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
4: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। आप भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उसमें अमल करना चाहिए।
5: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गाँव के उन नौजवानों तक पहुँचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात वो कर रहे हैं।
2: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के

0: समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवम्बर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी

0: अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर एंगम पामे और नामपीबू मारिनमाई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
3: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया।
4: यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
2: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
5: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
2: महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेस ब्रेव पायलट स्मिथ मच्छर फॉर सेविंग हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स एंड फॉलिंग अटेम्प्ट टू क्रैश इजराइल बाउंड फ्लाइट। Asserts Indians are those who risk their lives to save others, not take lives. Commerce Minister Piyush Goyal says India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary. And in Asian Games, India win first women's hockey gold in 14.

0: Welcome to our daily highlights from the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya. I am Megha. October 2 turned into a truly golden day for India in every sense of the word. From the hockey field to the wrestling mat, the archery range to the boxing ring, there was plenty to celebrate. Let's begin with the big headlines. A 44-year wait comes to an end. India beat China 1-0 to win the women's hockey gold, their first at the Asian Games since 1982. History in archery as well. Ankita Bhakat, Kirti Sharma and Kumkum Mohod beat South Korea to win India's first ever women's recurve team gold at the Asian Games. A golden hat-trick in boxing. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Pangal all finish on the top of the podium. Sujit Kalkal produces a remarkable comeback to win India's first wrestling gold of these games in the men's 65-kilogram freestyle. First up, one of the biggest Indian stories of the day. That 1-0 triumph over China in women's hockey finals doesn't just end a four-decade drought. It also officially stamps India's ticket to the Los Angeles 2028 Olympic Games. Here's Anupam Pathak with the story of a historic final.
1: महिला हॉकी के फाइनल में आज भारत की लड़कियों ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया और उनके लिए तालियां ही तालियां, जितनी भी बजाइए कम है। चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और लॉस एंजलिस ओलंपिक में प्रतिभागिता पक्की कर ली कॉन्टिनेंटल चैंपियन होने के नाते। भारतीय हॉकी प्रेमियों के लिए एक बहुत तनाव भरा, खून जमाने वाला, रोमांच से भरा हुआ मैच था ये। पूल लेवल पे गोल दागने वाली लड़कियों ने मजबूत टीम के विरुद्ध रणनीति बिल्कुल बदल दी। थोड़ी रिस्की जरूर थी लेकिन पूरी तरह फिट और मुफीद रही। फर्स्ट क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत के दूसरे सीरियस मूव में ही मौका आ गया।

0: मिनट के भीतर मिले क्रॉस पर अपना 200वां मैच खेल रही लाल रंग सियामी ने रिवर्स शॉट उठता हुआ लगाया तेज और एकदम निशाने पर, आंखों में चस्पा हो जाने वाला गोल, शायद गोल ऑफ द टूर्नामेंट। भारत 1-0 से आगे हो गया और इसके बाद भारतीय रणनीति सिर्फ और सिर्फ रक्षण करने की रही। गाहे बगाहे मिले अवसरों को छोड़ दें तो खेल मध्य मैदान में ही होता रहा या फिर चीनी खिलाड़ी आक्रमण करते रहे। पूरे मैच में 62% गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास ही रही और दूसरे क्वार्टर में भी चीन हमला ही करता रहा, भारत बचाव करता रहा। खासतौर पर सुशीला चानू और नवनीत कौर ने बहुत शानदार तरीके से चीनी आक्रमण विफल किए। फिर आया एक और दिल थाम लेने वाला क्षण, चीन का अटैक बना। पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, वो बेकार गया। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक। किसी को भी लगेगा अब तो स्कोर बराबर। सविता पूनिया ने अकल्पनीय पूर्वानुमान के साथ अपने बाईं ओर गिरते हुए ग्लव्स से पेनल्टी स्ट्रोक का शॉट रोक दिया। हाफ टाइम स्कोर 1-0 और इसके बाद चीन ने चाहे जितना दबाव बनाया, भारतीय अंततः उसे बेकार ही करते रहे। डिफेंस पूरी तरह शबाब पर, चीन के विरुद्ध चीन की दीवार की तरह डट गया भारतीय रक्षण। चौथे क्वार्टर में भारत ने यही रणनीति अपनाए रखी। समय की सुई घूम रही थी, वैसे वैसे चीन की खींच भी बढ़ रही थी, लेकिन भारतीय लड़कियां गेंद को मध्य में रख समय बिताने की कोशिश में लगी थी। अंत में हुआ ये कि चीन ने अपने गोलकीपर को भी मैदान से बाहर कर दिया, यानी सभी 11 खिलाड़ी अटैक पर। लेकिन तब भी भारत गोल पोस्ट खाली देख कर भी प्रत्याक्रमण के मूड में नहीं आया, बस एक ही मूव बनाया चीनी डी तक पहुँचने का और जैसे ही हूटर बजा लड़कियां उछल पड़ी, देश उछल पड़ा, स्वर्ण पदक भारत को। अब इंतजार रहेगा कि भारत की पुरुष टीम भी कल फाइनल में मलेशिया को मात दे दे और स्वर्ण पदकों की जोड़ी पूरी करे और वो भी 2028 ओलंपिक में सीधे प्रवेश कर ले। इस जीत ने भारतीय हॉकी और नीति नियंताओं को भी अच्छा मौका दे दिया है। अब तैयारियां करने, प्रयोग करने, नई प्रतिभाओं को मौका दे, देश के लिए बेस्ट टीम तैयार करने के लिए 2 साल का समय मिल गया है, वरना अभी करीब 1 साल और इंतजार करना पड़ सकता था ओलंपिक कोटा के लिए। चलते चलते ये भी बता दूं कि इसके पहले 1982 में अंतिम बार भारत ने महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में।
1: Next on to the wrestling mat, and this was a day when India had plenty at stake across 4 weight categories, and one of those bouts produced a quite extraordinary comeback. Here's Shahid Azmi with a wrestling report.
2: 8 साल का इंतजार खत्म हुआ, वो भी ऐसे कमबैक के साथ जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत के सुजीत कलकल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या में न सिर्फ इजाफा किया बल्कि जकार्ता 2018 के बाद पहली बार भारत को एशियन गेम्स में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं रजत रुहाल, प्रिया मलिक और दीपांशी सहित 3 भारतीय पहलवान मैट पर उतरे थे, लेकिन वे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पहले बात गोल्डन बॉय सुजीत कलकल की। फाइनल मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को रोमांच के प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में 10-9 से शिकस्त देकर भारतीय खेमे को खुशी से भर दिया। सबसे खास बात यह रही कि पहले पीरियड के बाद सुजीत 2-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 8 अंक जुटाए और मुकाबले के आखिरी 10 सेकंड में निर्णायक टेकडाउन के साथ बाजी पलट दी। इससे पहले सुजीत ने राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के सैयद उमर जसाई को 13-3 से और क्वार्टर फाइनल में ईरान के अब्बास इब्राहिम को 10-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कोटारो कियोका को 3-3 के बराबरी के बाद पॉइंट क्राइटेरिया के आधार पर मात दी। आपको ये भी बताते चलें, सुजीत साल 2026 में अब तक अजेय हैं। एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड अंडर 23 खिताब जीतने के बाद अब एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनके नाम रहा। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी कांस्य पदक से चूक गई। कांस्य पदक मुकाबले में उन्हें कजाकिस्तान की जेने बयानोवा ने चित करके यानी बाईफॉल के जरिए शिकस्त दी, जबकि महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक को राउंड ऑफ 16 में किर्गिस्तान की एपेरेमेडिट काइजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरुषों के 125 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में रजत रुहाल राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान के एदगे कासिम बेग से 3-8 से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कल भारत के 5 पहलवान मैट पर उतरेंगे, जिनमें पुरुषों में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम और दीपक पुनिया 97 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम और मनीषा 57 किलोग्राम में मैट पर उतरेंगी।
1: Now to the boxing ring. 3 Indian boxers went into gold medal bouts today. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Panghal. And all 3 emerged as Asian Games champions. For a golden day for Indian boxing, here's Shahid Azmi.
2: मुक्केबाजी रिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने विरोधी बॉक्सरों पर ऐसा पंच जड़ा कि एक ही दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लग गई और इतिहास के पन्नों पर लिख दिया एक नया

0: गोल्डन अध्याय। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लवलीना बोरगोहेन, प्रवीण हुड्डा और अंकुश पंघाल ने अपने मुक्कों से बैक टू बैक 3 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। पहले बात लवलीना बोरगोहेन की, अपने जन्मदिन पर लवलीना ने खुद को और देश को शानदार तोहफा दिया। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही हांगझाऊ के रजत को स्वर्ण में बदलते हुए लवलीना ने इतिहास रच दिया। वे मैरी कॉम के 2014 के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। लेकिन भारत का स्वर्णिम पंच यही नहीं रुका। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में प्रवीण हुड्डा का मुकाबला चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन चेन नियन चीन से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन प्रवीण ने शानदार धैर्य दिखाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की और पहली बार एशियन गेम्स चैंपियन बन गई। इससे पहले प्रवीण ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की नवखोर खादी मोवा और सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। और फिर बारी आई तीसरे स्वर्ण की। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अंकुश पंघाल ने कोरिया के किम मिसियोंग को 4-0 से हराकर भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीता। अपने पहले ही एशियन गेम्स में अंकुश ने शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में 5-0 की जीत के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एरकिन बोए को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भी अंकुश ने कोई मौका नहीं दिया और भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण डाल दिया। इस तरह भारत ने बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पुरुषों ने जबकि 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज महिला बॉक्सरों ने जीते। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस इवेंट में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 4 पदक जीते थे।
1: Next to the archery range, and another memorable day for India. There was history in the women's recurve team event, while the mixed and men's team competitions also had Indian interest. Shahid Azmi has a complete story.
0: Nagoya में भारतीय तीरंदाजों ने आज निशाने पर ऐसा तीर चलाया कि पदकों से झोली भर गई। एक ही दिन में भारत ने तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए। महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि मिश्रित और पुरुष रिकर्व टीम ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। यानी आज धनुष की डोर से निकले हर तीर ने भारत के लिए इतिहास की नई इबारत लिखी। बात पहले महिलाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन की करते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और सिर्फ 17 साल की कुमकुम मोहोत की भारतीय तिकड़ी ने तेज हवाओं के बीच शानदार धैर्य और सटीक निशाने का प्रदर्शन किया। फाइनल के शुरुआती 2 सेट बेहद रोमांचक रहे। दोनों सेट 54-54 और 56-56 की बराबरी पर खत्म हुए, लेकिन तीसरे सेट में भारत ने बड़ा पलटवार किया। दक्षिण कोरिया की तीरंदाज लगातार 3 बार 8 अंक पर रुके, जबकि भारत ने 55 अंक जुटाकर सेट अपने नाम करने के साथ 4-2 की बढ़त बना ली। चौथे सेट में दोनों टीमों का स्कोर 54-54 रहा। कीर्ति शर्मा के एक तीर ने समीक्षा के बाद 8 के बजाय 9 अंक दिए और भारत ने इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार महिला रिकर्व टीम के फाइनल में जगह बनाई थी। 2023 इसमें कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम ने नागोया में पदक का रंग बदलकर सीधे स्वर्ण कर दिया। उधर रिकर्व मिश्रित टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए खेले गए फाइनल में धीरज बम्बा देवरा और कुमकुम मोहोत की भारतीय जोड़ी का सामना चीन से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन चीन के हाथों भारत को 3-5 से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने शुरुआती 2 सेट गंवाए, लेकिन तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत दर्ज की। चौथे सेट में दोनों टीमों के बीच 37-37 की बराबरी रही, लेकिन शुरुआती बढ़त के दम पर चीन ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। स्कोर लाइन की बात करें तो भारत को 34-38, 35-37, 37-36 और 37-37 से कांटे भरे मुकाबले में शिकस्त मिली। वहीं दिन के आखिरी फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम 56-56 की बराबरी पर खत्म हुआ। उसके बाद दूसरे गेम में भारत 50-57 और तीसरे गेम में 54-56 से पीछे रह गया। इस तरह दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के हिस्से रजत पदक आया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी में भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है।
1: On to Sepak Takraw, where both the men's and women's quadrant teams were in action today. Here's Anupam Pathak with the report.
2: Sepak Takraw में पुरुष क्वाड्रेंट में भारतीयों ने इतिहास रच दिया और इस स्पर्धा में पहला पदक कांस्य पदक हासिल कर लिया। आज भले ही सेमीफाइनल मुकाबले में जापान से उन्हें 12

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं दिल का रिश्ता फिल्म के एक गीत के साथ। इस गीत को अपनी आवाजें दी है अलका याग्निक, कुमार सानू ने, बोल समीर के है तथा धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, आइए कुमार सानू की आवाज में इस कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं। गीतकार हैं देव कोहली, फिल्म का नाम है हमको तुमसे प्यार है।

श्रोताओं, हमको तुमसे प्यार है इस गीत के साथ ही आज का हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। सुनिए मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आश्विन माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 3 अक्टूबर सन 2026। इस समय सवेरे के 5:28 हुए हैं। आज की इस प्रातकालीन सभा में मैं सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ।

0: श्रोताओं अब सुनिए अनमोल विचार।
1: जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा ये सब क्षणिक हैं, परंतु मेहनत और ईमानदारी ऐसी पूंजी है जो कभी नष्ट नहीं होती। मेहनत करने वाला व्यक्ति चाहे थोड़े साधनों से ही शुरुआत क्यों न करे, अंततः सफलता के शिखर तक पहुंच जाता है। ईमानदारी इंसान का सबसे बड़ा गहना है। यह विश्वास और सम्मान की वो नींव है जिस पर जीवन की पूरी इमारत टिकी रहती है। जिस व्यक्ति की मेहनत सच्ची हो और नीयत साफ हो, उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। कहावत है, मेहनत वह चाबी है जो हर सफलता का ताला खोल देती है।